0: आवाज गूंजेगी।
1: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बोले तो स्ट्रेट फ्रॉम हम, आप सभी के जहन में घुसने वाला हूं मैं। अभी से लेके 3 बजे तक हूं यहाँ पे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गपशप करेंगे। होम सिक रेमेडीज के लिए आप रेडी रहिए, कुछ मैसेजेस भेजिए मुझे 5599 पे, उसके बारे में बात होगी। और साथ में ऑफकोर्स देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात होने वाली है। सो यस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस जो भी काम कर रहे हैं बरकरार रखिए। बट साइड में अगर आपके पास कंसोल है रेडियो तो उसको ये वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और अगर आप फोन से सुन रहे हैं तो उसमें भी सेम टू सेम डिट्टो वॉल्यूम बढ़ा के आराम से अपना काम जो है कंटिन्यू करिए। बट यस, ड्राइव कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फोन ना यूज करें। आप फोन अगर यूज करना चाहते हैं तो आप कहीं पे पहले पार्क करिए और फिर अपना फोन से रोवा ऐप डाउनलोड करिए। अगर डाउनलोडेड है तो वहां से मुझे सुन सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपकी कार में नहीं चल रहा है तो। बट अगर कार में चल रहा है तो यार बेस्ट है यार। वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ कि रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज रोवा के जरिए तो आप इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, लाइक सारे पॉडकास्ट आपके लिए वहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में आपको बहुत सारे यू नो हमारे लाइव शोज तो मिलते ही हैं वहाँ पे, साथ में कुछ कॉम्पिटिशन है वो भी मिलते हैं, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए टिकट्स की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस गाने से, मिलते हैं होम सिक रेमेडीज के लिए थोड़ी देर में। 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे।
2: बचाओ क्या,

होम सिक रेमेडीज में आपका स्वागत है। वैसे तो आप लंच बॉक्स शो सुन रहे हो, लेकिन होम सिक रेमेडीज में बेसिकली हम बात करते हैं जो आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं, उनमें से कुछ मैसेजेस मैं चूज करता हूँ, उनमें से कुछ या फिर एक जो सबसे खास होता है और उसे मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे पढ़ के हमारी जो प्रक्रिया होती है उसे शेयर करते हैं, और आप भी मेरे साथ प्रक्रिया जो है आपकी टिप्पणी वो भी शेयर करते हैं। सो आज का जो मैसेज है वो मानव की तरफ से है। मानव कहते हैं, क्यूरा केतन, एट माय ऑफिस हियर इन ऑकलैंड अराउंड 10 AM एवरीवन साइलेंटली वॉक्स टू द कॉफी मशीन, ग्रैब अ क्विक एस्प्रेसो एंड हेड्स राइट बैक टू देयर डेस्क टू सिट इन साइलेंस। बैक होम इन फिजी मॉर्निंग टी ब्रेक्स वर फुल ऑन सोशल आवर्स वे

0: सो यस, ऑकलैंड कॉर्पोरेट लाइफ का तो एक ऐसा यू नो थोड़ा बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट सच पकड़ा है जो हम सभी को रोज हिट करता है. जो ऑब्वियसली मुझे पर्सनल अगर बताऊं तो शायद इतना नहीं है, बट स्टिल ये जो यहाँ मिनट टू मिनट स्केड्यूल कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं ना, जहाँ लोग बस सिप लेते हैं और लैपटॉप वापस खो जाते हैं, ये हमारे देसी चाय एंड गपशप कल्चर के बिल्कुल ही अपोजिट है. और फीजी हो या इंडिया, हमारे लिए टी ब्रेक सिर्फ कैफीन लेने का तरीका नहीं है, बल्कि दोस्तों से कनेक्ट करना भी और स्ट्रेस कम करने और थोड़ा थोड़ी सी बकबक करने का भी सबसे ज़रूरी टाइम होता है. वैसे यस, मैं पर्सनली काफ़ी एंजॉय करता हूँ. टचवुड, यहाँ पे रेडियो पे हम पे ये माहौल बहुत ही बढ़िया है. बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन आपके शो की. हाँ, बट बाकी तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट फन टू बी हियर और मज़ा तो आता है यहाँ पे. बट थैंक यू अगेन मानव भाई आपके मैसेजेस के लिए. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हाँ.
1: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बी, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health. Because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
11: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
12: अब हमारा क्या होगा?
13: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
11: तो क्या करें?
14: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
15: Non-stop Bollywood.
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
15: हम playing Bollywood's biggest hits.
1: Lunchbox with Ketan.
17: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हम
0: सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ 100 years of resilience, migration and identity. Well, मैं बात कर रहा हूँ, how did the Punjabi community help shape the fabric of modern New Zealand over

0: But last year, last century, actually not last year, but last century, एक एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड हुआ है बाय हरजोत सिंह, जो कि प्रेजेंटर और रिसर्चर भी हैं, और उनके साथ गगन संधू जो कि डायरेक्टर हैं. उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पंजाब टू ऑटेरोआ एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की है. मैंने पर्सनली देखी और मैंने तो तभी देखी थी जब किसी और ने शेयर नहीं की थी. सडनली मैं देख रहा था और सडनली मुझे ना पॉपअप किया बाहर कि यू नो एक क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एकदम यूट्यूब पे पॉपअप हुई. मैंने कहा ये क्या है, तो रैंडम मुझे लगा, बट मैंने कहा चलो एक बार देखते टाइम पास और कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने. और जब मैंने देखा तो लिटरली पूरी देखी है. स्टार्टिंग ऐसे हुई थी दैट यू नो हाउ the person who was the very first person who came to New Zealand and उसके बाद उसने क्या क्या किया, ये सारी स्टोरी जो है ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा. ऑनेस्टली बताओ ना, आजकल जो फिल्में बनी ना उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मुझे लगता है कि आपको ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए. वेल इस एपिसोड में बेसिकली आपको पता है क्या क्या देखने को मिलेगा. सबसे पहले तो ऑफकोर्स 100 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पियोनियर्स हु पेव्ड द वे. और उसके बाद काफ़ी अच्छे से पैशनेट के साथ पैशन के साथ इसे रिसर्च किया है और आप सभी के सामने स्क्रीन पर लेके आया है. एंड ऑफकोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी. आप इस पॉडकास्ट को सुनिए पहले तो, और 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए या फिर अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे रोवा पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अमेजिंग क्रिएशन हुई है हमारे यू नो अपनों के थ्रू, बहुत ही अमेजिंग है ऑनेस्टली.
1: Hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। आज के दिन, आज की तारीख है, आज है 26 और 1920 की ये बात है जब कैप्टन इयान डिक्सन ने न्यूजीलैंड की एविएशन हिस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अचीवमेंट को हासिल की थी। उन्होंने पहली बार कुक स्ट्रेट को प्लेन से क्रॉस किया। उनकी फ्लाइट क्रैशर से स्टार्ट हुई और ट्रेंथम अपर हट में एंड हुई। जर्नी के दौरान उन्हें फ्यूल की वजह से एक इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी, लेकिन वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच भी चुके थे। इस फ्लाइट के थ्रू ये प्रूव हुआ कि नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स के बीच एयर ट्रैवल पॉसिबल है। ये न्यूजीलैंड में फ्यूचर एयर मेल और पैसेंजर फ्लाइट्स के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। यानी कि आज जो आप वो सिंगल वे या राउंड ट्रिप जो भी मारते हैं आप नॉर्थ टू साउथ आइलैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पहली फ्लाइट थी, टेस्टिंग थी, वो 1920 में हुई थी आज के दिन। है ना, इंटरेस्टिंग क्या बात है।

0: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
1: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
2: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
3: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
2: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
3: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
2: Elite Bathroomware.
3: A reflection of you.
4: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
5: Jen didn't think she needed a DVS system.
6: Oh, I've got insulation in that.
5: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
6: Ah, yeah.
5: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: Right now, your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin-binning, and you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport, in your pocket, on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join the Tribe!
9: Lunchbox with Ketan.
10: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
11: चटनी शॉट्स. काफी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूँ आप सभी के बीच. मेरा नाम केतन है और न्यूजीलैंड में अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया बैन प्रपोज किया गया है. गवर्नमेंट का बिल जो है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम एज के यूजर्स को रोकने के लिए रीजनेबल स्टेप लेने को कहेंगे. लेबर पार्टी ने अब बिल ए के फर्स्ट रीडिंग को सपोर्ट करके करने का डिसीजन लिया है. क्रिस हिपकिंस का कहना है कि बिल परफेक्ट नहीं है लेकिन सेलेक्ट कमिटी प्रोसेस के थ्रू इसे इम्प्रूव किया जा सकता है. लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट के पास इनफ टाइम नहीं है, सिर्फ 3 सिटिंग वीक्स बचे हैं, इसीलिए बिल की फर्स्ट रीडिंग भी इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएगी. एक्ट ऑन न्यूजीलैंड फर्स्ट इस बैन के अगेंस्ट है और उनका मानना है कि प्रपोज बैन इफेक्टिव नहीं होगा और अनइंटेंडली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो यस, सिंपल शब्द में अगर कहूं तो लेबर सपोर्ट कर रही है बट गवर्नमेंट कह रही है टाइम नहीं है. सो बिल लाइकली इलेक्शन के बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंडर आगे बढ़ेगा. क्या लगता है ये डिसीजन जो होने वाला है इसके प्रति, डू यू थिंक इट शुड बी इन फेवर ऑफ हैविंग दिस यू नो सोशल मीडिया बैन या फिर नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे 5599 पे.
12: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Download from apnafm.com.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: Competition time. चलिए find out करिए आप ये dialogue सुनके कि किसके बीच ये dialogue की जो exchange हो रही है वो कौन है और ये एक्चुअली वही हैं जो कल भी थे. कल जो मैंने सवाल किया था वो भी सेम थे, सेम एक्टर्स थे, ये भी सेम है. बट यस, मूवी कौन सी है ये भी बताइएगा मुझे 5599 पे. तो ये रहा मेरा डायलॉग.
4: Nah, she's not my type.
5: Nah, she's not my type.
6: ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, समझे?
4: क्यों? तुम तो हो.
6: मैं?
3: Well, ये बैकग्राउंड में तो थोड़ा गाना थोड़ा अजीब सा था, बट गाना अच्छा है, बट doesn't suit the dialogue, but I'm pretty sure आपने figure out तो कर ही लिया होगा. तो आप मुझे भेजिए 5599.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 18 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस भी दिखा रहा है बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:57 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है और एक बज चुके हैं। आपसे सवाल किया था थोड़ी देर पहले, पर यस, एक चीज मैं सबसे पहले अनाउंस करूंगा थोड़ी देर में और उसके बाद होगी बाकी सारी बातें। अभी वैसे इस आर में भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा बॉलीवुड की खबर के साथ साथ लेटेस्ट खबर, और साथ में इस आर में आपको एक मौका भी मिलेगा ताकि आप कोड लेके बोर्डिंग वाला सीन जो है उसे क्लेम कर सकें। तो बस स्टे ट्यून रहिए और उसके अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे।
0: बचाओ क्या,

0: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप रेडी रहिए और मुझे भेज दीजिए टेक्स्ट, क्या फील करते हैं, क्या चीज है 5599 पे, ताकि आप वो बातें शेयर करें हमारे साथ जो सचमुच आपके लिए एक रेंट वाली बातें थी कल के दिन या आज के दिन, जो भी आपके साथ हुआ है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिस चीज़ ने आपको थोड़ा सा मायूस किया हो, गुस्सा दिलाया हो या फिर इरिटेट किया हो, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
1: Stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Lunchbox with Ketan.
4: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
5: इसके पीछे?
6: हम.
7: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
8: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
7: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
8: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
7: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट

0: को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर.
1: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
2: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
3: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Marugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेनुगाव. हैवल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland.gov.nz/where-it-goes पे. तमाकी तुरुकी, ओटुगेदर ऑकलैंड.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन. माय जॉब

0: பசந்தல இருக்கும்.
1: एक मैसेज मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, वो मैसेज आया है समीर भाई का। वो कह रहे हैं कि आज सुपरमार्केट में उनके पास सिर्फ 4 से 5 ही आइटम थे जो इन्होंने पिक किए शॉर्टेस्ट चेकआउट लाइन, यानी कि उनके बैग में सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ही आइटम थे। तो उस वजह से ऑफकोर्स यू नो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन अ क्यू जहाँ पे एक पर्सन होता है और वो आपकी हेल्प करता है, यहाँ पे सेल्फ चेकआउट में ही वो चले गए थे। लेकिन उसके आगे एक पर्सन हैड अ फुल ट्रॉली। समीर थॉट्स चलो 5 मिनट में हो जाएगा, बट देन द पर्सन स्टार्टेड लुकिंग फॉर देयर लॉयल्टी कार्ड, देन चेकिंग देयर वॉलेट। अच्छा नहीं, सॉरी माय बैड, ये कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट चेकआउट में गए, यानी कि जहाँ पे लाइन कम लगी हुई थी। ये गए तो सेल्फ चेकआउट में नहीं, दूसरे वाले मैनुअल वाले में जहाँ पे कोई खड़ा होता है, स्टाफ खड़ा होता है और वो करता है। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पास 4-5 ही, तो क्यों ना मैं छोटे में ही चला जाऊं। बट देन ही फाउंड दैट द पर्सन अहेड ऑफ हिम हैज़ अ फुल ट्रॉली, और वो सब स्कैन होने के बाद उन्होंने लॉयल्टी कार्ड ढूंढा, फिर अपना वॉलेट ढूंढ रहे थे, देन आस्किंग द कैशियर अबाउट 3 डिफरेंट प्राइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। समीर सेज बाय द टाइम ही फाइनली रीच द चेकआउट ही हैड ऑलरेडी स्पेंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स स्टैंडिंग हियर। ही जोक्ड, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब इट वॉज फुल ऑफ क्योस एंड टेंशन एज वेल दैट आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई नेक्स्ट मीटिंग। केतन, नेक्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ बास्केट विद 1 आइटम एंड स्टैंडिंग बिहाइंड समवंस विद अ फुल ट्रॉली। देर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग सम रिवेंज ब्रो, बट थैंक यू समीर भाई, आपके मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यार इसमें क्या बोलूँ, मतलब ये तो किस्मत की बात है। आई कांट इवन सजेस्ट यू एनीथिंग, और आई कांट इवन आई डोंट नो, अलग है यहाँ पे अगर कोई मुझे बताना चाहेगा इस पर कैसे हैंडल करें तो फील फ्री टू डू सो, बट मुझे लगता है ये तो किस्मत की बात है। आपके सामने हो सकता है आपकी ट्रॉली बहुत ज़्यादा हो और सामने वाला पर्सन का क्विकली हो जाए, यू नेवर नो, लाइक यू कांट सी अनलेस इफ़ यू कीप एन आई ऑन दैट कौन है ऑन, देन ऑफकोर्स यू हैव द मल्टी चेकआउट्स, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कम ट्रॉली वाले हैं, तो वहाँ पे उसी लाइन में आप लग सकते हैं।
2: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Well, एक sad news है ऑकलैंड के नॉर्थ शोर से एक serious crash की रिपोर्ट आ रही है. One News के अकॉर्डिंग सनीनुक में सनीनुक रोड और सिकेमोर ड्राइव का जो इंटरसेक्शन है उस पर एक कार और पेडेस्ट्रियन के बीच कलिजन हुआ और इमरजेंसी सर्विसेज सीन पर पहुंच गई है और पेडेस्ट्रियन को सीरियस इंजरीज रिपोर्ट की गई है. ये इंसिडेंट इवनिंग में हुआ था कल और ऑब्वियसली इस तरह के क्रैश एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर भी रोड्स पर ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस दोनों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहा गया है. स्पेशली बिजी इंटरसेक्शंस पर एक सेकंड की डिस्ट्रैक्शन भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है. ऑकलैंड में हम सब डेली रोड्स यूज करते हैं, चाहे कार से, बस से, साइकिल से या फिर वॉकिंग से. सो प्लीज स्पेशली इंटरसेक्शन और क्रॉसिंग के पास स्लो डाउन, स्टे अलर्ट एंड डोंट अज्यूम द अदर पर्सन हैज सीन यू. यस, दैट इज सो ट्रू. और सेम एक्चुअली आई वुड से कि कार के लिए भी होता है, लाइक यू डोंट सिंपली टेक लेफ्ट और राइट, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, लोग काफ़ी ऐसे ले लेते हैं एंड लास्ट मोमेंट पे भी लेते हैं और कितने लोग तो विदाउट इंडिकेशन भी टर्न लेते हैं. तो या दिस इज़ रियली सीन कि हो सकता है आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो लेकिन यू नेवर नो कि जो बाकी के जो ड्राइवर्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं या नहीं.

0: पहले काफी खास बात आपके बीच में लेके आया हूँ। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रही है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: Winger Motors are your home of Chery, jahan nahi

0: choice. Visit Winger Motors, West Auckland, Green Lane, Manukau or Pukekohe via winger.co.nz. Offer ends August 31st.
1: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
2: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
3: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
1: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
4: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of six, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: Well, Bollywood से खबर लेके आया हूँ. कृति सैनन की रक्षाबंधन ज्वेलरी एड को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है. एड में कृति एक ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज कैप और ड्रैप्ड स्कर्ट पहने नजर आती हैं. कुछ लोगों ने आउटफिट को फेस्टिवल के ट्रेडिशनल मूड के लिए इनअप्रोप्रिएट बताया है. एक्ट्रेस पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कृति के आउटफिट को क्रिटिसाइज किया. उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि व्हाई वुड यू टाई योर ब्रदर अ राखी इन योर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस और एड को इंटेंशनली क्रीपी भी कहा. एड में कृति अपने ब्रदर के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती हैं और बाद में अपने पेट डॉग को भी राखी बांधती हैं. कैंपेन का पर्पस रक्षाबंधन को मॉडर्न और पेट फ्रेंडली एंगल से प्रेजेंट करना था. कृति ने क्रिटिसिज्म को जवाब देते हुए कहा कि ट्रेडिशंस और कल्चर सिर्फ क्लोथ्स से डिसाइड नहीं होने चाहिए. उनके अकॉर्डिंग कल्चर हार्ट में होता है, नेकलाइन में नहीं. वेल ये कंट्रोवर्सी जो है अब बढ़ चुकी है. अब देखते हैं आगे बढ़ के क्या रुख लेती है ये. बट दिस इज व्हाट इट इज. क्या लगता है आपको, जो कंगना ने बोला है वो सही बोला या नहीं? 5599 इज द नंबर, यहाँ पे आप अपना रिव्यू रख सकते हैं.
6: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Ascundjeki.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Nah, she's not my type.
3: Nah, she's not my type.
4: Aise to tumhe koi nahi milne wala, samjhe?
2: Kyun? Tum to ho.
4: Main?
5: ये जो डायलॉग मैंने चलाया थोड़ी देर पहले अभी मैंने ये सवाल किया था आपको लास्ट आवर में कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और आपने सही जवाब दिया, ये है शाहरुख खान और काजोल की और रानी मुखर्जी की कुछ कुछ होता है, जिसमें ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग में कहूँगा कि जब मूवी शुरू होती तभी का सीन है। वन ऑफ अ काइंड मूवी यार, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। मतलब मैं आज भी अगर देखूंगा तो बोर नहीं होऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर। क्या लगता है आपको? आप वैसे आपने कितनी बार इस मूवी को देखा है, आप मुझे जवाब दे सकते हैं 5599 पे। बट यस, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट, बढ़िया कंपटीशन आप सभी के लेके आया हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने रक्षाबंधन की बात की है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब भी मौका दें आप हमें अपने सिबलिंग के बारे में रिव्यू दे सकते हैं। जी हाँ, आज कोई भी हमारे अनाउंसर्स आपको मौका दे सकते हैं कॉल पे कि कॉल करिए और हमें बताइए, रिव्यू दीजिए वेदर योर सिबलिंग इज बेस्ट और नॉट। अगर वो आपसे कुछ बोरो करते हैं, सो डू दे रिटर्न इट बैक और नॉट, एंड क्या वो ट्रबल मेकर हैं या नहीं, या फिर आप हैं, एंड ऑफ कोर्स बीइंग योर बिगेस्ट सपोर्टर अनॉइंग योर 24/7। सो यस, ये पॉइंट्स पे आप रिव्यू देंगे, बट यस जब भी आपको मौका मिलता है तब, और जैसे आप कॉल करेंगे उसके साथ ही दो ऐसे लकी विनर होंगे, मतलब एक कॉल नहीं, दो कॉल हम रिसीव करेंगे और दो लकी विनर विल गो इनटू द ड्रॉ फॉर $250 के कैश प्राइस के लिए। क्या बात है यार, 28 तारीख यानी कि परसों के दिन ये अनाउंसमेंट होने वाला है, तो अभी से कहता हूँ मैं लग जाइए और बस अपना जो कान है ना खुले रखिए और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है आप फट से कॉल कर दीजिए। उसके साथ एक और है, आप अपने सिबलिंग के साथ कोई भी ऐसी मेमोरी जो है, चाहे कैसेट्स हो, कुछ गेम्स हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके बहुत करीब हो और आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग से भी कनेक्टेड है, तो उस चीज़ की फ़ोटो लीजिए, और अगर फ़ोटो नहीं है तो आप AI से जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन पर फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर एक प्रीव्यू वाला डाल रखा है हमने फीचर्ड, उसके कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दीजिए। दो से तीन लाइन लिखिए अपने सिबलिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अपने उस सिबलिंग को टैग भी कर लीजिए, साथ में ऑफ कोर्स उसी के साथ आप $300 जीतने के होड़ में लग जाएंगे, यानी कि ड्रॉ में अगर आप जीतते हैं तो $300 घर लेके जाएंगे, जिसका भी डिस्क्लोज होने वाला है 28 अगस्त को।
1: Ladies and gentlemen, this is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Please proceed to Rover and enter board now.
6: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: 80s ke retro gaane.

नमस्ते, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है और इस आर में भी आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स से लेके कुछ यहाँ पे टिकटॉक की बातें और लेटेस्ट खबर भी बताऊंगा और कुछ ऐसी अपडेट भी जो आप अभी आने वाले फेस्टिवल में हिस्सा लेके अपना जो लक है वो चाम और बढ़ा सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं कैश प्राइज, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा. तो बस आज ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए मुझे मेरे इस लंच बॉक्स शो में. बचाओ क्या,

jacuzzi.

0: ये रही लेटेस्ट खबर इस आर की। जेटस्टार ने न्यूजीलैंड से श्रीलंका के लिए न्यू फ्लाइट कनेक्शंस लॉन्च की है। अब न्यूजीलैंडर्स क्राइस्टचर्च, मेलबर्न, कोलंबो ट्रैवल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड रूट का इनॉग्रल जो है वो फ्लाइट 25 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये सर्विस साल भर हफ्ते में 3 बार चलेगी। क्या बात है, पर वीक 3 फ्लाइट्स चलेगी टू श्रीलंका फ्रॉम क्राइस्टचर्च, मेलबर्न एंड कोलंबो। उसके साथ ही जेटस्टार ने फ्लाइट को इस तरह से स्केड्यूल किया है कि पैसेंजर्स क्राइस्टचर्च से मॉर्निंग में निकलकर सेम डे मॉर्निंग मेलबर्न के थ्रू कोलंबो पहुंच सकते हैं। अक्टूबर से ऑकलैंड मेलबर्न के बीच 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स पर वीक भी ऐड की जाएगी, जिससे ऑकलैंड से कोलंबो कनेक्शंस और कन्वीनियंस हो जाएगा। वेल यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है ये। अगर आप श्रीलंका घूमना चाहते हैं, जा रहे हैं या फिर आप वहाँ से हैं, तो यस दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। और जस्ट इन केस अगर आपके कोई दोस्त हैं जो श्रीलंका से हैं, एंड इफ दे वॉन्ट टू मेक इट, अगर ये न्यूज़ जो है उन्हें खुशी दे सकती है, तो डेफिनेटली आप ये खबर जो है उन तक पहुँचा दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे हम
2: वेल स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑल ब्लैक्स और ब्रिटिश एंड आयरिश लायंस के शोडाउंस से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन लॉक पोजीशन को लेकर है। दो प्लेयर्स एक वेकेंड टेस्ट स्पॉट के लिए कंपटीशन में हैं और उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकती है कि कौन स्टार्टिंग टीम में जगह बनाता है। ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लायंस के अगेंस्ट मैच बहुत हाई प्रेशर टेस्ट होगा। कोचेस को एक्सपीरियंस, फिजिकैलिटी और रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर डिसीजन लेना होगा। वेल यस, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑल ब्लैक्स के स्क्वाड में एक लॉक की जगह के लिए क्लोज कंपटीशन चल रहा है और लायंस के खिलाफ परफॉर्मेंस प्लेयर्स के लिए अपनी पोजीशन सिक्योर करने का बिग चांस माना जा रहा है।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स। और फादर्स डे आ रहा है पास, और उसके लिए सेलिब्रेशन भी बहुत जोरों शोरों से हो रही होगी। आपके बच्चे या फिर आप खुद अपने डैड को या डैड को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। वेल यस, मेरा सवाल पता है यहाँ पे क्या है? मेरा सवाल उन डैड्स के लिए है जिन्हें मुझे जवाब मिलते ही फट से भेज देना है 5599 पे, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें और जीत सकें $500 कैश। वाओ, दैट्स सो गुड। आई वेल यस, मेरा सवाल है वो ये है, ई सिम क्या होता है? जी हाँ, ई सिम जो है वो क्या होता है? आप इसका जवाब मुझे 5599 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ, और फादर्स डे भी लिख देना आप आगे, ताकि हमें पता पड़ जाए कि आपने किसके लिए मैसेज किया है। सो यस, वंस यू डू इट, आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और ड्रॉ में शामिल होते ही आपको वेट करना है अंटिल 4th। बट यस, मैं तो कहूँगा कि हर एक शो में आप ट्राई करते रहिए, जब जब आपको अनाउंसर अनाउंस करता है इस बारे में, तो यस, जितने बार करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे। सो यस, अमीर होने का बहुत ही बढ़िया मौका है, $500 कैश मिलेगा आपको अगर आप जीतते हैं तो। 4 सितंबर को इसका डिस्क्लोजर होगा। बट यस, एट द सेम टाइम वी हैव अनदर ऑन फेसबुक एज वेल, ये बच्चों के लिए है, डैड भी ट्राई कर सकते हैं। बट यस, बच्चों के लिए ये है कि उन्हें अपने पापा की मस्त सी फोटो खींच के उसे AI जनरेटेड सुपर हीरो बनाना है और उसे अपलोड कर देना है हमारे फेसबुक पेज पे, फीचर्ड उसमें फीचर फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप बस कमेंट में जाके कर दीजिए। आई नो दैट इट इज़ गोइंग ऑन दैट सोशल मीडिया माइट बी बैन इफ़ यू आर अंडर 16, बट एट द सेम टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अंडर ऑफकोर्स योर पेरेंट्स की निगरानी में। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे वहाँ पे, और एक मस्त सा क्यूट सा मैसेज भी डाल देना अपने पापा को, और पापा को टैग भी कर देना। एंड यस, उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जहाँ पे आप जीत सकते हैं $300 कैश। टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई। डिस्क्लोजर होगा सेम डे 4 सितंबर को।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं. और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw. Emotions होते हैं real. और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: Moisture और ventilation का problem लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Score more SMIG with SMIG bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online.
12: Bunnings Warehouse.
13: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
14: Join the Tribe!
13: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
14: join the Tribe!
0: Non-stop Bollywood.
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
16: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
15: हम.
0: TikTok.
17: TikTok के सेगमेंट में ये रही खबर. ऑस्ट्रेलिया में Google, Meta और TikTok जैसे टेक जायंट को, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को उनके कंटेंट के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके लिए न्यू लॉज ले रही है जिसमें जिनका एम लोकल जर्नलिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है. गवर्नमेंट का कहना है कि क्वालिटी जर्नलिज्म डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जर्नलिस्ट और न्यूज़ रूम को मेंटेन करना कॉस्टली है. इसीलिए बिग टेक कंपनीज को न्यूज़ कॉन्टेंट से होने वाले बेनिफिट में फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए. न्यू रूल्स के अंदर टेक कंपनीज अगर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमर्शियल डील नहीं करती तो उन्हें हायर शेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देना पड़ सकता है. एटलीस्ट 8 डील्स करने पर गवर्नमेंट पेमेंट को ऑफसेट कर सकती है. AAP यानी कि ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस को गवर्नमेंट से कलेक्ट होने वाली रेवेन्यू पर 5% शेयर मिलेगा.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: नहीं आवाज गूंजेगी।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: And that's all for today, guys. आज का दिन बहुत ही सही रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। कुछ information जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से दी है। And I hope आपने show जो है बहुत ही अच्छे से enjoy किया होगा। आप बस कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज सैंडी विल बी जॉइनिंग फॉर द कॉफी ब्रेक शॉर्टली एंड उसके बाद रुज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। बट यस, एज आई ऑलवेज टेल यू, आप जल्दी से जितना हो सके आप एआई से सीखते रहें, बिकॉज हर दिन एआई इतना ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, जिसकी सही में कोई भी सीमा नहीं है। सो आप जितना लेट करेंगे उतना पीछे होते जाएंगे। सो मेक श्योर आप जितना हो सके जल्दी सीखें, बिकॉज पहले तो चैट जीपीटी था, अब फिर जेमिनी आया, अब तो क्लॉड भी आ गया जो मार्केट को कर रहा है, और क्लॉड भी अब पीछे रहते जा रहा है, और भी नए नए ऐप्स आ रहे हैं। सो यस, अगर कुछ भी सवाल जवाब हो आपको ऐप से रिलेटेड तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं 5599 पे टेक्स्ट करके। यस, बट दिस, आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक लीबो, बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: I thought you did.
5: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
9: हे नेहा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था ये घर कैसे
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया
9: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
12: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग स्प्रिंटिंग पिचिंग किकिंग सिन बिनिंग And you need to know about it.
13: Join the Tribe!
12: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join the Tribe!
1: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A sudden death in Wellington this morning. A police spokesperson said they were investigating after being informed of the incident on the terrace at around 8 o'clock. Motorists have been advised to avoid the southern end of the road and to expect delays. Inland Revenue says it has identified a coordinated scheme of people claiming bogus expenses in their tax returns. It says it stopped nearly 3,000 fraudulent amended returns. Action is being taken to recover the money. Weather warnings have been updated on the west coast as it braces for a complex low. Heavy rain is expected to batter Grey and Buller south of Westport from 6 tonight. Westland's 54-hour orange warning has already begun. And the legendary Dolly Parton, singer, songwriter, actress, philanthropist and businesswoman, has died at the age of 80 after a brief battle with cancer. Mel Logan looks back on her career.
15: Dolly's performances were deeply personal, and some will remember her signature warmth from 80s TV show Dolly, which she'd finish up with a slow I Will Always Love You before blowing a kiss and bidding bye-bye. Born in Tennessee, she was one of 12 children and went on to a career spanning 7 decades, capturing hearts, 10 Grammys and selling more than 100 million records worldwide.
14: To sport, Ethan Blackadder's performance against the Lions this morning has put him in contention for the second test against the Box on Sunday morning. Coach Dave Rennie might be tempted to move Tupou Vahi from the blindside flanker to lock. Blackadder then becomes a contender for the number 6 jersey. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the Football Ferns preparations for next year's World Cup in Brazil continue in October with 2 away games in Panama.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross. Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इसमें टेम्परेचर बाहर का 16 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनी एंड ब्राइट गुड वेदर टुडे एंड सनसेट आज का 5:57 पर.
1: The beat of Bollywood.
17: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee Break with Sandy.
16: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. सो कैसे है आप? आपका डे आज का कैसा गया है सो फार? हाउ इज इट गोइंग? हम्प डे पे ऑलरेडी हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड मेरे साथ यहाँ पे रुजबे भी शामिल हो चुका है. हाय गुड आफ्टरनून रुजबे.
18: हाय सैंडी गुड आफ्टरनून.
16: हाउ आर यू.
18: आई एम गुड हाउ आर यू डूइंग.
16: गुड गुड. तुम्हारा डे आज का सो फार हम्प डे लाइक वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द वीक.
18: हाँ बढ़िया जा रहा है यार.
16: बढ़िया जा रहा है.
18: मिडल ऑफ द वीक
16: या Like progressive जा रहा है कि
18: आपका कैसे जा रहा है सैंडी आप बताइए पहले.
16: हम पे आके तुम्हें क्या लग रहा है कि इसके बाद ऐसे एकदम नीचे गिरोगे या फिर आराम से नीचे जाओगे. Is it a smooth sail after that?
18: अभी कैसे पता चलेगा हमको फ्यूचर. अगर इतना मैं प्रेडिक्ट कर पाता तो मैं लॉटो के नंबर्स ही ना प्रेडिक्ट कर लेता.
16: आज ऐसा बहुत बड़ी $20 million
18: 20 million है आज. ये पता नहीं ना हमें कि ये 20 का 22 23 होने वाला है या आज 20 किसी को मिलने वाला है
16: या तो ये पता चलेगा.
18: कभी कभार मैं सोचता हूँ यार अगर ऐसा मिल जाए ना तो क्या ही हो जाएगा ना.
16: यू नो देयर इज अ एक मैंने सवाल भी देखा और ये मैं लिसनर से भी पूछना चाहूंगी. अगर आपकी लॉटो निकलती है क्या आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताओगे या नहीं बताओगे. फैमिली जो आपकी क्लोज फैमिली है उसको तो आप बताते हो. चलो उनको उनकी बात.
18: क्लोज फैमिली मतलब क्या होता है. क्लोज फैमिली में भी किसको किसको बताओगे.
16: जो आपके घर में रहते हैं.
18: अच्छा.
16: एंड आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए मे बी योर सम कजन्स मे बी ग्रैंड
18: मुझे नहीं लगता है लोग कजिन्स को भी बताएंगे.
16: ये वही ना. तो मुझे आपसे जानना है कि अगर आपके लोटो निकलती है तो आप क्या अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को बताओगे क्या. रिलेटिव्स इज द राइट वर्ड ना.
18: मेरा बस चले तो मैं अपने बीवी को भी ना बताऊं.
16: क्या बात कर रहे हो. तुम्हारे रंग ढंग से पता चल जाएगा ना कि लोटो जीती है तुमने.
18: नहीं मैं तो बहुत प्रॉपर कवर में रह सकता हूँ.
16: अरे जो बोलता है कि इतना खर्चा क्या करना है एकदम से खर्चा करना शुरू कर
18: आपको
16: देगा.
18: क्यों लगता है कि मैं ऐसा खर्चा करना शुरू कर दूंगा.
16: तुम्हारा ऐसा मन नहीं करेगा कि इतना पैसा आया है मेरे पास $20 million है मैं कहीं भी खर्च करूं मैं कुछ करूं.
18: क्योंकि जो
16: पड़े रहेंगे वो
18: जो सबसे ज्यादा जो लॉटरी जीतते हैं वो ही बैंकक्रप्ट होते हैं.
16: लेकिन साथ थोड़ा लेके जगह हमेशा थोड़ा रखोगे ना 20 million कुछ तो करोगे उसका.
18: मतलब धीरे धीरे ना. इमीडिएटली नहीं पता चलेगा.
16: इमीडिएटली
18: नहीं पता चलेगा.
16: व्हाट अबाउट यू गाइस. अगर आप लोटो जीतते हैं क्या आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों के बताओगे. मतलब समझ लो आज आपने जीत ली.
18: 0800-004-866 वी आर गिविंग यू अ चांस टू मैनिफेस्ट ओवर हियर राइट नाउ.
16: यू नेवर नो.
18: अगर आप जितना मैनिफेस्ट करोगे जितना आप सही सोचोगे तो मेरी
16: अगर आपकी निकलती है तो प्लीज हमें जरूर बता दे.
18: क्यों बताएंगे वो यार.
16: तो अगर अगर आपकी लॉटरी
18: यार प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है सैंडी. जब ऐसे जब अगर समझो 1-2 million की भी रही ना तो भी बताना बहुत इजी रहेगा सेफ रहेगा क्योंकि लोग अंडरस्टैंड करते कि हाँ चल ठीक है.
16: 1-2 million भी बहुत बड़ा होता है यार.
18: हाँ बट ठीक है ना 1-2 million में लोगों का 1-2 mortgage ही जाएगा या फिर यू नो उनका खुद का रीपे करना. जब 20 million लगेगा तुम्हारा तो आप किसी और को नहीं बोलना चाहोगे क्योंकि फिर लोग बोलेंगे यार 20 million का तू क्या करेगा यार एक हाथ दे देना हमको भी.
16: ये भी है.
18: तो मुझे लग रहा है जितना
16: मेरे सर पे भी लोन है.
18: हाँ के सबका लोन निपटा देना.
16: या दैट्स व्हाट आई वंडर कि कितने लोग बताते होंगे डिटेल में.
18: लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉटो जीता सैंडी
16: तो हाँ.
18: और मैं आपको बोला कि सैंडी आपका एक काम करता हूँ जो आपका लोन है मैं आपका रीपे करता हूँ आप मेरे को इंस्टॉलमेंट पे करो आपके कम पे करो चाहिए तो
16: कम पे करो. ये नहीं बोलता है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा. इंटरेस्ट फ्री पे करो.
18: नहीं इंटरेस्ट फ्री नहीं. हाँ चलो इंटरेस्ट फ्री. हाँ बट आप करोगे क्या पे. आप बोलोगे छोड़ना यार क्या फायदा इसको तो फ्री में मिला वैसे भी ना.
16: नहीं इफ यू आर बैंक की जगह अगर तुम मुझे ऑफर कर रहे हो बैंक में से इंटरेस्ट ले रही है तुम उसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो. आई विल एनीवे पे बैक बोथ ऑफ बैंक या तुम्हें ना.
18: अच्छा ऐसा
16: सही है.
18: बट नहीं मेरे को नहीं लगता वो इट विल वर्क. आई डोंट थिंक सो. क्योंकि आपका अंदर से
16: नहीं बताना तुम कोई बात नहीं.
18: आपका अंदर से मन नहीं करेगा पे करने का.
16: या एक ने बोला है ना ना कदे भी नहीं किसी को नहीं. नहीं बोला
18: किसी को नहीं बताएंगे. 0800-004-866 पे कॉल करके भी आप बता सकते हो या फिर 5599 पे मैसेज करके बता सकते हो. यहाँ पे
16: राहुल पांडे कहते हैं कि किसी को भी नहीं बताऊंगा एक्सेप्ट वाइफ.
18: वो वाइफ को बताएंगे
16: तो पता चलेगा ना. अगर स्पेशली अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट है तो कैसे.
18: वो भी है.
16: या मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में भी पता चल ही जाता है. सो आप भी बताओ यहाँ पे कॉल करके 0800-004-866 हम पर या मैसेज करके. लोटो निकलती है तो किसी को बताओगे क्या. मतलब घर वालों के अलावा रिश्तेदारों को दोस्तों को. बी ऑनेस्ट.

0: टेल टू का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। सवाल आपको पूछा है आज कॉफी ब्रेक में, अगर आप लॉटो जीतो तो फिर आप उसका क्या करोगे, आप आपके घर वालों को बताओगे इसके बारे में या आप किसको बताओगे इज द क्वेश्चन,
1: या रिश्तेदारों को बताओगे कि नहीं। तो हमारे साथ हमारे लिसनर शामिल हो चुके हैं। हाय
2: हाय सनी
1: जी, आपका क्या नाम है?
2: माय नेम इज सनी।
1: सनी, सो यस सनी, बताइए क्या करेंगे आप?
2: अगर मैं जीता आज तो आप दोनों को दूंगा एक
0: क्या देंगे एक
1: एक एक मिलियन भी एक एक डॉलर के एक एक मिलियन भी स्पेसिफिक
0: नहीं नहीं एक क्या नहीं कुछ और ही देने की बात कर रहे हो एक एक दूंगा तुम दोनों को
2: एक एक मिलियन दूंगा आपको पहले।
0: अच्छा एक एक मिलियन दोगे पक्का?
1: देख लो रिकॉर्ड हो रहा है ये,
2: मैं सैंडी से मिला हूँ इसलिए मुझे पता है।
0: तो सैंडी को तो दोगे आप, उसको तो दो दोगे मेरे को लग रहा है, मेरे को भी दोगे क्या? लेकिन
2: होना यार आप साथ में ही तो।
0: अच्छा
1: ठीक है ठीक है, तो एक एक मिलियन
0: साथ में हम शो करते हैं लेकिन मॉर्गेज हमारा अलग अलग
1: अलग अलग जा रहा है वो
2: नहीं पहले अगर मैं जीता तो फैमिली को बताऊंगा पहले, तो
0: फैमिली को बताओगे आप?
1: ओके, और आपकी फैमिली में कौन कौन है, वाइफ के अलावा बच्चे है?
2: एक बच्चा है छोटा है 5 साल का।
1: ठीक है तो चलो ठीक है उनको बता दोगे, और रिश्तेदारों को बताओगे?
2: रिश्तेदार में तो खास कोई है नहीं मेरा, एक कजन है उसको बताऊंगा।
0: सबको बता दोगे तो सबको दोगे क्या भाई, मतलब
2: जिसको चाहिए 20 मिलियन है क्या करेंगे उसका?
0: अरे क्या बात है यार,
1: सही है।
2: कितना खर्च करोगे तुम पे?
1: वही ना, रुस्बे को देखो वो बीवी तक को नहीं बताना चाहता है।
0: मिल बात के
2: खाएंगे तो अच्छा है,
0: पॉइंट बोल रहे हो आप ऐसे तो
1: ठीक है।
0: नहीं सही है यार, तो याद रखना अभी कल परसों कॉल करना फिर यार।
2: आज मैं लॉटरी लगाऊंगा, जीत गया यही फोन पे फोन करूंगा
1: इसी टाइम पे ना,
0: ये फोन पे, हाँ ये फोन पे फोन करना लेकिन हमसे ही बात करना, किसी और से मत बात करना।
1: मिले नहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
2: मुझे रुस्बेन से मिलना है एक बार।
1: अरे रुस्बेन से नहीं मिले,
0: आप लॉटो जीतो उसके बाद आपके साथ ही रहूंगा मैं।
2: थैंक यू बोलने को अरे बोला ना सैंडी और रुस्बे।
0: अच्छा
1: तुमने सुना नहीं रुस्बे,
0: 10 बार सैंडी का नाम लिया, मेरा एक बार नाम लिया सनी।
2: 3 बार बोला, क्या बोल रहा है?
0: अच्छा चल 3 बार बोल रहा, ठीक है, लेकिन सैंडी का तो 10 बार नाम लिया ना,
1: फोमो हो जाता है इसको।
0: चलो ठीक है,
2: बीबी आती है फिर भाई आता है, ऐसा होता है।
1: नहीं नहीं भाई, ये बीबी भाई नहीं है।
0: नहीं आपके केस में, आपके केस में पहले सैंडी आ रही है।
2: अरे
0: जीत कैसे? चलो थैंक्स,
1: ओह गॉड,
2: चलो रुस्बे और सैंडी बाय,
1: थैंक यू सनी, बाय बाय
0: बाय बाय। अच्छा तो अभी गाना सुनते हैं सैंडी। क्या होता क्या है आपके कॉफी ब्रेक में यार, थोड़ा बताओ हमें भी थोड़ा।
1: तुम जैसे पहली बार आए हो कॉफी ब्रेक में

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आप यहाँ पे कॉफी ब्रेक सुन रहे हैं. कॉफी तो ले लिया सैंडी ने, लेकिन अभी आज सैंडी का मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का. लेकिन अभी
1: I don't think so कि खानी चाहिए. अभी अभी तबीयत खराब थी, ठीक हुई है.
0: ये exactly मैं आपको कहने वाला था, लेकिन just because मैंने on air आपके मन की बात कह दी यहाँ पे, अब आप खुद कवर अप कर रहे हो. क्या आपको लगता है कि कोल्ड किल्स कोल्ड, ये फंडे में बिलीफ रखते हैं आप?
1: जहर ही जहर को मारता है.
0: हाँ, क्योंकि सैंडी यही बिलीफ से चलती है और इसलिए उसका मन कर रहा है भी आज आइसक्रीम खाने का. बट मैंने अक्सर देखा है जैसे आप बीमारी से बाहर निकल रहे हो ना, आपको आइसक्रीम खाने का मन करता है.
1: हाँ, ऐसा होता है बिकॉज यू आर अवॉइडिंग पर्टिकुलर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम.
0: आज हो रहा है ना आपको ऐसा?
1: या लेट्स देखते हैं क्या. लेकिन उससे याद आया, फ्लू वैक्सीन्स टू बी फ्री फॉर ऑल अंडर फाइव्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर.
0: नेक्स्ट ईयर से होगा ये?
1: नेक्स्ट ईयर से. डॉक्टर ने बोला है कि डॉक्टर हैड बीन कॉलिंग फॉर द वैक्सीन टू बी फुली फंडेड. सो चिल्ड्रन अंडर फाइव हैड बाय फार द बिगेस्ट रेट्स ऑफ हॉस्पिटल के चक्कर सबसे ज़्यादा उनके ही लग रहे हैं. सो इसीलिए ये जो स्टेप है ये लिया गया है. जो फ्लू वैक्सीन है विल बी फ्री फॉर ऑल अंडर फाइव्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. दो
0: अगले साल से फ्री होगा. वेल एनीवे, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का मौका आपको मिलेगा, जैसे कि रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन इसी वीकेंड, आई मीन इसी फ्राइडे ड्रॉ होने वाला है.
1: या इसी फ्राइडे को रक्षाबंधन का ड्रॉ होने वाला है. और इसी फ्राइडे को रक्षाबंधन है गाइज, जस्ट इन केस आप भूल गए तो आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने राखी नहीं खरीदी है रक्षाबंधन के लिए तो आप जाके खरीद लीजिएगा, बिकॉज दिस Friday is रक्षाबंधन. And if your siblings are overseas, make sure कि आप उनको call करके wish ज़रूर कर रहे हैं. आजकल तो online facilities भी हो चुकी है जहाँ पे online आप same day delivery भी करवा सकते हो राखी के लिए. तो even you can do that as well. पहले होता था ना कि आपको post करनी है time पे राखी, बट नाउ एक्चुअली में आप डिलीवरी भी करवा सकते हो.
0: और इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं ना जहाँ पे, अगर इंडिया में करनी है तो. बट काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्रीज में ये है ऐसा सिस्टम, मुझे लग रहा है डिलीवरी का. आई डोंट नो फिजी में क्या सीन है. इफ यू वांट टू
1: सेंड, आई वुड लव टू नो दैट,
0: सेंड राखी टू योर सिबलिंग इन फिजी, आप कैसे करते हो?
1: तो वहाँ पे क्या ऑनलाइन सर्विसेज है या फिर आप पोस्ट करते हो यहाँ से? कोई है अगर फिजी से हमें सुन रहा है, मतलब नॉट फिजी से
0: यार, बट मैं ऑनेस्टली बोलू ना, पोस्ट करने में जो है ना फील, वो वहां से ऑनलाइन भेजने में नहीं है यार मेरे हिसाब से.
1: आई हैव डन दैट.
0: आपने पोस्ट की है?
1: मैंने पोस्ट भी की हुई है. मैंने कजन को पोस्ट की हुई है.
0: अच्छा,
1: एंड भाई को
0: पोस्ट की आपने?
1: हाँ, मैंने भाई को इंडिया से भी की हुई है.
0: कम्स आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव देन एक्चुअली सेंडिंग इट फ्रॉम देयर ना.
1: या 100%. सो या अगर आपने, आप फिजी से हैं एंड आप वहाँ पे राखी यहाँ से भेजते हैं, तो कैसे भेजते हैं? आप पोस्ट करते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विसेज है वहाँ पे भी?
0: या हाउ डू यू, या हाउ डू यू सेंड, लाइक हाउ डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन लॉन्ग डिस्टेंस?
1: या लॉन्ग
0: डिस्टेंस ये जानना चाह रहे हैं आज हम. लेकिन पार्टिसिपेट करने का भी मौका आपको यहाँ पे देंगे. आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करना है आपके सिबलिंग का, और उसके लिए $250
1: या $250
0: के दो विनर रहने वाले हैं.
1: या स्टे ट्यून्ड.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
5: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयं पाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
6: हेलो डैडी
5: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
7: इट्स टाइम आई एम कमिंग
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
8: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
9: TradeStaff, industrial employment solution. TradeStaff.
10: डॉक्टर ने क्या बोला
11: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
10: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
12: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ श्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
13: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashurevan.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as a Sure One is a licensed financial advice provider
14: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.

0: हार्डी संधू ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आप सुन रहे थे बिजली बिजली ये गाना. वेल सैंडी कॉफी ब्रेक आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं.
1: 15 मिनट बाकी है 4 बजने में. 4 बजे के बाद हम बोर्डिंग कॉल के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो कि 5 बजे के बाद प्ले होगी.
0: क्या बात है, मतलब फुल ये क्या वो क्या था वो यार, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना,
1: इंसेप्शन
0: वाइब्स सैंडी क्रिएट कर रही है रेडियो पे. एनीवे इंपॉर्टेंट मैसेजेस वी वांट टू रीड एंड वी वांट टू रीड इट ऑन एयर. राहुल पांडे ने भी कहा है कि आज लग गया तो आप दोनों को 1 मिलियन ईच,
1: मतलब वो लॉटो की बात कर रहे हैं. आज उनके अगर लॉटो लग गया तो हम दोनों को 1-1 मिलियन मिलने वाला है.
0: दो लोगों ने ये हमें बोला है और हम उनके लिए दुआ करेंगे. अगर आपको भी आपका चांस,
1: दोनों 10-10 मिलियन जीत जाए ताकि हमें दोनों दो मिलियन दे दे.
0: ये गलत है सैंडी, ये क्यों आपने अभी कहा?
1: यहाँ पे मेरी मैथ पता नहीं कैसे अच्छी हो गई.
0: नहीं मत बोलो ये सारी चीजें. नहीं नहीं
1: okay.
0: अगर आपको भी विश लिस्ट में आपका नाम यहाँ पे शामिल करना है, लेकिन वी आर विशिंग फॉर यू टू विन क्योंकि हमें 1-1 मिल रहा है. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस विश लिस्ट देन यू ऑल्सो कैन मैसेज अस 5599 पे.
1: 5599 इज अ नंबर.
0: ऑल यू हैव टू से दैट हम भी 1-1 मिलियन देंगे.
1: For some reason ये काम कर रहा है.
0: No, but if you give only then you get. ना ऐसा ही होता है.
1: Yeah, 100%.
0: Sharing is caring. Sharing is caring. ये best है, मेरे को लग रहा है अपना धंधा best है. टिकट खरीदो मत, लोगों को टिकट खरीदने दो. हम बस manifest करेंगे, manifest की दुकान चलाएंगे.
1: ये आजकल वो चलती है दुकान वैसे. पर या ये मैंने न्यूज पढ़ी, इस बंदी ने ना अपनी रोलेक्स की घड़ी खोई थी 3 साल पहले, $90,000 की रुजबे. एंड उसको वापस मिली है आफ्टर 3 years. सो इट वॉज ओरिजिनली स्टोलन ऑकलैंड में ही, एक्चुअली में इसने खोई थी एंड इवेंचुअली रिकवर की आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन. डिस्पाइट लॉन्ग डिले द ओनर वॉज एबल टू गेट द वैल्यूएबल टाइम पीस बैक. सो नेवर गिव अप द होप बेसिकली. इस सम अगर कुछ आपने कभी खोया होता है तो या नेवर गिव अप द होप.
0: तो किधर मिला उनको ये,
1: मतलब वापस उनको घड़ी उनकी मिल गई है. अच्छा, $90,000 की.
0: बट किधर मिली है?
1: सो जो सर्च थी ये थी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग में.
0: ओह वाओ.
1: या सो आफ्टर 5 मंथ्स जो ओनर थी वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया में थी. द वॉच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गिफ्ट टू, मतलब उसको पहला गिफ्ट मिला था. अच्छा, ये फ्रॉम द हस्बैंड.
0: लेकिन आपको एक बात बोलूँ क्या, मैं को इससे ना एक टॉपिक सूझा है. या ऐसी कोई चीज़ है आपकी जो आपकी घूम गई थी लेकिन आपको बहुत सालों के बाद वो मिली कहीं और, ये काफी बार होता है.
1: हाँ ये होता है
0: कि एक कोई चीज़
1: ज्वेलरी के साथ तो बहुत होता है.
0: ज्वेलरी के साथ तो काफी बार होता है ये कि कोई चीज़ आपकी घूम गई है एंड देन आपको काफी टाइम के बाद वो मिलती है. काफी बार मेरे साथ लॉटो टिकट्स को लेकर भी हुआ है ये कि मैं याद ही नहीं आ रहा कि किधर रखी टिकट, किधर रखी, चेक करना.
1: क्या बात कर रहे हो.
0: हाँ, और फिर बाद में मुझे काफी टाइम के बाद.
1: लेकिन तुम्हारा वो लक काम नहीं किया ना, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है जिनको लोटो टिकट नहीं मिलती है, इवेंचुअली मिलती है, जाके चेक करते हैं उनकी लगी होती है लोटो. तो तुमने जाके चेक करवाई कभी?
0: बेटर लक नेक्स्ट टाइम. थ्रोबैक
2: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Kumar Sanu aur Alka Yagnik na shayad se. Alka Yagnik. Kya beautiful gana hai ye. Aapka na la la. Very nice song. Well, anyway.
1: कोशिश की
0: मैं यार ये गाना जब भी सुनता हूँ ना मुझे वो रियली याद आता है. ला ला ला ला ला.
1: Yeah.
0: Anyway, यहाँ पे एक और मैसेज आया. Guys, मेरी तरफ से 1 million each जैसे मैं आज का पावरबॉल जीतू. इन्होंने भी मैसेज भेजा.
1: लॉटो आज की हम वैसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको बता दूं. वैसे भी गैम्बलिंग अच्छी नहीं होती है. रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी देखा है एंड वी विल गोना टॉक मे बी 4 बजे के बाद. इसके बारे में हम बात भी करेंगे यहाँ पे,
0: ठीक
1: है? तो 4 बजे के बाद बात करेंगे. अभी नया आने वाला है
0: टीजर दे रहे हो और फिर बोल रहे हो यार
1: 4 बजे के बाद. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज अबाउट
0: 5 बजे के बाद करेंगे, 6 बजे के बाद करेंगे.
1: तो सारी बात अभी थोड़ा कर लेंगे,
0: ठीक है?
1: टाइम नहीं है अभी ना. तो दिस इज अबाउट सोशल मीडिया बैन.
0: सोशल मीडिया बैन के ऊपर बात होने वाली है. चलो ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन आज हम बस पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं उन लोगों को जो अपने विनिंग में से हमारे साथ 1% शेयर करना चाहते हैं. 1% ही हो गया, नहीं 10% हो गया. ओह गॉड, 10% शेयर हो गया. 10% शेयर अगर आप कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है. लेकिन यार 10% ऑफ 20 इज क्वाइट नाइस.
1: क्वाइट नाइस
0: मतलब द रिमेनिंग 90% इज क्वाइट गुड एक्चुअली. बट हाँ, इसलिए हम ये मतलब लोग ही कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आप
1: हमने तो कुछ नहीं बोला.
0: ऐसा लग रहा है कि हमारे पास आप यहाँ पे शेयर करोगे.
1: लग रहा है कि बहुत गरीब है ये.
0: नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो उनको मिलेगा. बिकॉज वी आर पॉजिटिव पीपल एंड वी ओनली डू पॉजिटिव वाइब्स. कितनी गलत फहमी है आपको.
2: हम Accurate traffic.
3: ThePropertyDirectory.com. Cloudy overnight for Auckland, a low of 11 on the northern from town to Silverdale, 44 minutes. It's heavy from Esmond to the Harbour Bridge. The northwest into Massey, 23 minutes. Just a bit slow heading west through Rosebank. On the southern to Manukau, 38 minutes. Drury, an hour. It's heavy northbound Mount Wellington to Green Lane and heading south, some slow patches, Newmarket to Highbrook Drive. Southwest and slow, Puhunui Road to the southern.
4: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
7: Oh, hey. If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
8: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
10: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
10: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800 722 462. फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
14: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है. टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक ताला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी.
15: हेलो डैडी.
14: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास.
16: इट्स टाइम, आई एम कमिंग.
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC.
17: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
18: Hum News, brought to you by
11: Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. Senior public servants have been found in contempt of Parliament for deliberately misleading MPs about a bungled multi-million dollar IT project. In March, the head of MB, Nick Blakely, and the former Immigration New Zealand chief, Alison MacDonald, were quizzed by MPs about an IT upgrade at Immigration New Zealand. They failed to disclose it had already been scrapped. The flu vaccine will be fully funded for young children by next April. Pharmac is changing brands so all kids aged from 6 months to 5 years can get it for free. It estimates more than 260,000 will be eligible by the 2027 flu season. The winter storm has made landfall with rain falling steadily on the west coast and lower third of the South Island. Met Services' Heather Keats says they have issued new rain warnings.
19: We've added Grey and Buller south of Westport to the list, joining Westland with an orange heavy rain warning. Westland's warning is active now with up to 450 millimetres of rain expected near the ranges before 3 p.m. Friday.
18: Dolly Parton's publicist says she died after bravely facing a brief battle with cancer. Parton, who rose from humble beginnings to become one of America's most beloved stars, died at her home in Nashville. She was 80. A family statement says a small private service will be held for close family. To sport, who will replace Josh Lord for the second test against the Box on Sunday morning? After playing this morning, Patrick Tuipulotu sees no problem in being able to back up in 4 days. And to motorsport, with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, Ferrari F1 driver Lewis Hamilton has pulled back on sarcastic radio messages he made during the Dutch Grand Prix, saying he had not presented the best version of himself.
11: Sports News, brought to you by

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 16 degrees, 15.9 actual temperature, and partly cloudy, isolated showers, westerlies ka saath. 5:57 ko aaj hoga sunset. It's almost getting to 6 o'clock sunset, yeah? So days are getting longer, it's good news. Overnight temperature is going to be as low as 10 degrees tonight.
2: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Phuket Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Phuket Koi.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
1: 4:03. Super Se Upar mein aapka swagat hai. Hi Sandy.
5: Hi Rusbe. Good afternoon. Kaise ho tum?
1: 26/8/26 aaj ki date hai. Aur kya hai aaj ke special din pe? Bahut sari cheeze aap bol rahe ho, lekin trend makers mein kya hone wala hai? Pehle aap wo batao.
5: ट्रेंड मेकर्स में आज एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसे डायरेक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन्होंने ऐसी मूवीज बनाई है जहाँ पे इन्होंने, लेट्स सी, कैरेक्टर गेस तो नहीं है, लेकिन इफ यू कैन गेस द नेम, इन्होंने ऐसी मूवीज बनाई है जो अपनी ही इंडस्ट्री की कहानी बताता है.
1: मेरे को पता ये कौन है.
5: सो अपनी मूवीज के जरिए इन्होंने अपनी ही इंडस्ट्री की डिफरेंट
1: पोल खोल की है.
5: हाँ, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की कहानियां बताई है, चाहे फिर वो मतलब यू नो एंटरटेनमेंट, आई विल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कहानियां बताई है.
1: ज्यादा मत बोलो अभी. 5599 पे आप यहाँ पे मैसेज करके गेस कीजिए ड्राइव कीवर्ड के साथ
5: डायरेक्टर जिसने. और ऐसा होता है रुजबे कि कईयों को मूवी का नाम पता होगा, मे भी, लेकिन डायरेक्टर का नाम नहीं पता होगा. बिकॉज ये डायरेक्टर का नाम उस समय पर जब मूवीज आ रही थी तो ट्रेंडिंग था.
1: ये इस डायरेक्टर का नाम काफी स्वीट है.
5: स्वीट इज द हिंट, मतलब यू नो कन्वर्ट, मतलब अरे यार मैं वैसे कह रही हूँ ना.
1: बिना गूगल किए आप बताइए आपको क्या लगता है.
5: जिन्होंने अपने ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर जिन्होंने मूवीज बनाई है बॉलीवुड में, वो डायरेक्टर का आज बर्थडे है. तो उनकी मूवीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद. एंड बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज है. गाने अवल से कि लाइक सारे गाने इज नॉट सुपर टूपर हिट गाने, मतलब उनके मूवीज के, बट नाइस सॉन्ग्स.
1: ठीक है, आज सुनने मिलेंगे आपको. थोड़ी देर में आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे,
5: एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. अभी रिसेंटली अंडर 16 सोशल मीडिया बैन चल रहा है ना,
1: तो
5: इसके बारे में बात हो रही है. सो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन एंड नेशनल पार्टी हैव इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन दैट वुड स्टॉप चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम यूजिंग मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लेकिन जो प्रपोजल है इससे काफ़ी बड़ा मेजर डिसएग्रीमेंट हुआ है. कोलिशन जो होती है वहाँ पे विद बोथ एक्ट एंड न्यूजीलैंड फर्स्ट अपोजिंग इट.
1: वो लोग अपोज कर रहे थे एक्ट भी, अपोज कर, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है यहाँ पे.
5: सो प्रपोज्ड बैन क्या है कि जो ऑनलाइन सेफ्टी है, मिनिमम एज एंड चाइल्ड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट बिल वुड रिक्वायर सोशल मीडिया कंपनी सच एज इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक टू टेक एक रीजनेबल स्टेप उनको लेने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि जो यूजर्स है आर एटलीस्ट 16. सो जिसमें एग्जिस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगा, डिजिटल आईडी होगी, ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन होगा और फेशियल एज एस्टिमेशन भी हो सकता है. सिंपली एंट्रिंग DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि हमने पहले भी बात की है यू नो कि डेट ऑफ बर्थ तो कोई किसी भी ईयर की डाल सकता है.
1: हमने हमारे ईमेल आईडी वैसे ही बनाए थे ना, कोई भी ईयर के डेट ऑफ बर्थ.
5: तो उन्होंने यही तो पॉइंट है कि सिंपली एडिंग डेट ऑफ बर्थ वुड नॉट बी इनफ.
1: बट वो तो अभी भी है ना डेट ऑफ बर्थ, उसमें नया क्या है, एडिंग थोड़ी है वो, मतलब
5: नहीं. तो ये जो करने वाले हैं उसमें सिंपली एडिंग डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी इनफ. द कंपनीज दैट फेल टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस कुड फेस पेनल्टीज ऑफ अप टू 10% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू. तो अगर इंस्टा ये सब फेल होते इस चीज में, 10% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू जो है इसकी पेनल्टीज हो सकती है. इम्पॉर्टेंटली तो ये चीज़ है एक्चुअली में, ये जो प्रपोज्ड बैन है इसमें कि प्लेटफॉर्म्स को बहुत और चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, डिजिटल आईडी. या इट इज़ गुड ओनली.
1: और मैं तो बोलता हूँ ऑनेस्टली ये अंडर 16 के लिए कर रहे ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो भी सोशल मीडिया पे जाए उनका आप KYC करो.
5: या वो भी है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है. आई वॉज लिसनिंग टू हमारे रोवा ऐप पे वन ऑफ द पर्सन जो कि यू नो डिबेट्स करते हैं, पोलिटिकल डिबेट्स वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें उनका भी सुन रही थी. उन्होंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं बच्चों के अंडर 16 के.
1: अच्छा.
5: हार्मफुल कंटेंट की वजह से जो जो चीज़ें हुई हैं एंड जो जो उन्होंने कंज्यूम किया है एंड जो मतलब अंडर 16 एक ऐसी एज होती है जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती है. सो वो चीज़ें भी उन्होंने शेयर की. मे बी सारे डाटा हमें नहीं पता होते कई बार तो उस हिसाब से बात करते हैं.
1: या एग्जैक्टली चीज़ें बकवास होती है.
5: या सो
1: डोंट माइंड बट हाँ
5: या बट या सो अंडर 16 के काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मेंटल हेल्थ, फैमिली लाइफ, स्लीप एंड एजुकेशन, दीज आर फ्यू फैक्टर्स, फोर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट हो रहे हैं. मेंटल हेल्थ, फैमिली लाइफ, स्लीप एंड एजुकेशन. सो उन्होंने बोला है कि सिस्टम वुड नॉट स्टॉप एवरी चाइल्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द सोशल मीडिया बट सेज द गवर्नमेंट शुड स्टिल ट्राई टू रिड्यूस द हार्म. तो इसके ऊपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसके ऊपर खैर अपोज भी हो रहा है. कि विंस्टर पीटर का कहना है कि पार्टी वुड नेवर सपोर्ट द लेजिस्लेशन. उन्होंने ये बोला है, ही आर्ग्यूड कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट लेकिन इन्फोर्सिंग सच अ बैन जो है एक बिगर इशू क्रिएट कर सकता है. ही सेड दैट. सो एक्ट लीडर जो है डेविड सेवर, ही सेड कि पार्टी वुड वोट अगेंस्ट द बैन यूजिंग द कोलिजन्स एग्री टू डिसएग्री प्रोविजन.
1: तो अभी यहाँ पे एक्ट और न्यूजीलैंड फर्स्ट साथ में आ रहा है. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को ये बार यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि
5: इट्स लाइक गोइंग इधर उधर सब. तो एनीवे आपका क्या टेक है इसके बारे में? गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड सर्विसेज सच एज डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, रॉब्लॉक्स, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन एंड चैट जीपीटी,
1: इन सब के ऊपर वो लगा है चैट जीपीटी,
5: इनको एक्सक्लूड किया है इन सर्विसेज.
1: डिस्कॉर्ड को भी एक्सक्लूड कर दिया.
5: डिस्कॉर्ड इज एक्सक्लूडेड.
1: ओह वाओ,
5: बिकॉज़ इट्स मोर ऑफ गिविंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
1: उधर भी होता है ये काफी कुछ यार.
5: तो व्हाट्सएप, रॉब्लॉक्स, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन इनको एक्सक्लूड किया, इन सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है. द सर्विसेज इंक्लूडेड आर जो मेनली
1: फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक,
5: स्नैपचैट.
1: स्नैपचैट
5: या
1: ओ स्नैपचैट बॉय, बहुत बच्चे ना खुश होने वाले यार स्नैपचैट के ऊपर आ गया बैन.
5: या

0: depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
3: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: Naya hybrid dhoon rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Marugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Marugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: Are you ready to go home?
8: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
9: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
10: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. 4:22 हुए हैं अभी और आज हम आपके साथ भी कुछ ही देर में एक गेम खेलने वाले हैं इधर.
11: Yeah, game. लाइफ तो बहुत खेल रही है लेकिन
10: साइंटिफिक खेल रही है
11: अलग अलग गेम खेलने वाले हैं जिसमें यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट ओवर हियर एंड हैव सम फन बिकॉज़ अगर आज आपका डे बहुत ऐसा भारी गया है दूसरा वाला भारी
10: एंड रीविजिट सम ट्रॉमा
11: तो जस्ट इस गेम में पार्टिसिपेट करके थोड़ा हल्का फील कर सकते हो आप और मे बी नॉट
10: ट्रॉमा से याद आया मुसाफिर कैफे मैंने कंटिन्यू किया देखना
11: ओह कैसा था
10: थैंक्स टू रोनिता
11: या
10: सही
11: How
10: है
11: is it going?
10: चल रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे अच्छा ओके
11: कमेंट्री भी चल रही है क्या तुम्हारी वहाँ पे
10: गोइंग ऑन
11: दैट्स अ पॉइंट ना
10: या या
11: कोई भी चीज देखते समय उसके ऊपर कमेंट्री नहीं करनी चाहिए जितनी कमेंट्री करोगे उतने तुम उसमें फंसते जाओगे
10: नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं बस उसको इंटरेक्टिव रख रहा हूँ
11: आप
10: समझाओ यार मेरे को लग रहा है आप ही एक हो जो अच्छे से समझा रही है बोर्डिंग कॉल
11: आज तुम क्यों नहीं समझाते
10: नहीं, नहीं मुझे लग रहा है यू विल डू गुड
11: बेटर जॉब
10: मतलब मैं समझा सकता हूँ
11: हाँ समझाओ समझाओ
10: हाँ, मैं समझाता हूँ
11: आज तुम बताओ
10: क्योंकि एक ही इंसान को क्यों हेट मिले ना सब
11: आई
10: विल शेयर इट तो मोर इम्पोर्टेंटली आपको दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विथ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका मिल रहा है सिंपल होने वाला है आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ पहले तो रोवा ऐप आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए ठीक है रोवा ऐप वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रोवा ऐप पे हम जब आपको बताएंगे ना वो बताता हूँ मैं क्या बताएंगे बट हम जब आपको बताएंगे तब आपको रोवा ऐप पे जाके वहाँ पे बोर्ड नाउ टाइप करना है कहाँ पे करना है अगर ये आपको जानना है तो उसके लिए आप BC लिखकर 5599 पे भेजिए वी विल सेंड यू द लिंक ऑफ वेर यू कैन गो एंड टाइप बोर्ड नाउ ठीक है ये हो गया अब ये बोर्ड नाउ कब लिखना है आपने वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे चार टाइमिंग्स है 8 AM 11 AM 1 PM 5 PM इन टाइम

0: के अराउंड कभी भी एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल का क्यू बच सकता है, जिसमें हमारी प्यारी काशिका जी का आवाज़ आएगा कि ये एयरलाइन अब खुल चुकी है, बोर्डिंग नाउ, ऐसा करके आएगा। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि प्रोमो भी सिमिलर साउंड कर रहा है और क्यू भी सिमिलर साउंड कर रहा है, लेकिन क्यू जो है वो थोड़ा छोटा है कंपेयर टू प्रोमो।
1: और उसने बोला है कि अब जाके रुवा पे आप लिखो बोर्ड नाउ।
0: हाँ, ऐसा ये भी बोला, तो ध्यान से सुनना भी है आपने। देखो, अगर जीतना है इतना सब कुछ तो उसके लिए सुनना भी जरूरी है ना। आप जैसे अभी मेरे को इग्नोर कर रहे हो, वैसे आप इग्नोर नहीं कर पाओगे तभी। तो ये सब होने के बाद आप ये जब बजेगा, सुनाओ क्या मैं उनको क्या बजेगा?
1: सुना सकता हूँ
0: अभी मैं सुना रहा हूँ आपको क्या बजेगा। ये बजा नहीं अभी, ये आपको डेमो दे रहा हूँ मैं। एक मिनट।

0: थैंक्स टू सोलोमन एरर।
1: देखा, आप समझ गए ना क्या हो रहा है ये? तो बेसिकली वो बोल रहे हैं साहब को क्लियर क्लियर कि अभी आप जाइए रोवा पे और वहाँ पे बोर्ड नाउ लिखिए। तो जैसे ही आप ये सुनते हो आपके पास 60 मिनट्स है टू गो ऑन दैट लिंक ऑन दैट रोवा ऐप और वहाँ पे बोर्ड नाउ लिखना है। तो अब इसमें से आपको क्या नहीं समझ आया मेरे को आप बताइए यहाँ पे मैसेज करके।
2: अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप रुजबे को कॉल करो, वो आपकी कंफ्यूजन को दूर ही करने की कोशिश करेगा या फिर बढ़ाएगा नहीं,
1: या फिर सैंडी यहाँ पे है जो
2: हेल्प कर सकती है थोड़ी बहुत
1: सकती है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर वे में आपको कोई ये समझा पाएगा। सो अभी 5 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे बजने वाला है ये क्यू टू कॉल, और जैसे ये बजता है 60 मिनट है आपके पास जाके आप ऐप पे बोर्ड नाउ लिख सकते हैं वो बजने के बाद। सो हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू। विजिट flysolomons.com। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: डायरेक्ट लिंक कैसे आपको मिलेगा इस रोवा ऐप के लिए, तो आपको BC लिखकर भेजना है यहाँ पे, टू फेवरेट लेटर्स सैंडी के, BC 555
1: सी कीवर्ड है, कीवर्ड है BC, स्पेस नहीं है बीच में,
0: यस नो स्पेस ओनली BC।

0: माहौल बनाने वाले हैं हम अभी आपके साथ गेम खेलकर. 0800 004866 इज द नंबर वेयर यू कैन गिव अस अ कॉल एंड पार्टिसिपेट इन दिस गेम. सैंडी आर यू रेडी?
1: Yes, एकदम रेडी.
0: बताइए गेम क्या है आज का?
1: आज ये गेम है कि जो मैं स्टेटमेंट्स बोलने वाली हूँ आपको दोनों ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बैक और नेवर रिप्लाई. तो बेसिकली आपको एक टेक्स्ट आता है, ये टेक्स्ट का आप रिप्लाई करोगे, टेक्स्ट बैक करोगे या फिर रिप्लाई नहीं करोगे.
0: ओके
1: ओके सो कॉल कीजिए गाइस.
0: 0800 004866 इज द नंबर अगर आपको भी खेलना है. बहुत सिंपल होगा ये,
1: बहुत सिंपल सा. तो रुजबे के साथ ट्रायल करते हैं, ठीक है?
0: ट्रायल करते हैं, लेट्स डू इट.
1: ओके सो रुजबे
0: बताइए,
1: समवन गोस टू यू फॉर 2 weeks एंड देन सेज सॉरी आई बीन बिजी,
0: टेक्स्ट बैक.
1: टेक्स्ट बैक ओके.
0: मैं भी करता हूं ऐसा यार, होता है.
1: Like, who is the person?
0: No, because honestly, if it is important, you will give me a call. If you are texting and I'm not replying and you are okay with it, then that means it's not important. It's a group message, like a broadcast.
1: So, okay, the next one.
0: आप क्या करोगे? आप नहीं करोगे? आप never reply करोगे?
1: I will take some time and
0: you
1: reply.
0: You are also that only, Baba. You also don't reply right away, na? Always. हर किसी को थोड़ी आप reply करते हो.
1: Yeah.
0: बोलते हो ना, छोड़ मैं इसको बाद में करती हूँ.
1: Yeah.
0: कितने बार किया है आपने मेरे सामने ये? और फिर
1: ये झूठ है. Anyway, so old school friend suddenly messages.
0: Oh, I just did that recently. I just did that recently.
1: मैसेज आया तुम्हें?
0: मैंने randomly मेरे एक दोस्त को मैसेज किया इंडिया में, जो मेरा मतलब एकदम बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, लेकिन हम लोग बचपन में लाइक यू नो काफी क्लोज थे साथ में. एंड मैंने रैंडमली उसको मैसेज किया एंड आई एम लाइक लिसन ब्रो आई एम सॉरी फॉर दिस रैंडम मैसेज बट. और मेरे एक्चुअली मेरे सपने में आया था वो एंड इट आई डिडंट नो हाउ टू पुट दैट अक्रॉस बिकॉज इट डिडंट साउंड राइट इन माई हेड. बिकॉज लाइक उसकी भी शादी हुई है, मेरी भी शादी हुई है, तो मुझे ऐसा डाउट था कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम हिटिंग ऑन हिम. बट इट वॉज अ वेरी जेन्युइन लाइक अ फ्रेंड वो थिंग. यू नो आपको ऐसा होता है ना कि बचपन के दोस्त याद आ जाते हैं सडनली.
1: अनदर क्वेश्चन, एक फॉर्मर कोलीग तुम्हें मैसेज करे, आई हर्ड यू आर हायरिंग.
0: Oh wow! No, I appreciate those messages. I'll text back.
1: You text back.
0: Yeah, 100%.
1: And that former colleague not been in a good terms with you.
0: Former colleague है.
1: Former colleague है, लेकिन not in a good terms with you.
0: हाँ हाँ, तो क्या हुआ यार?
1: You will still reply.
0: 100%.
1: Okay. So call पे है हमारे साथ कोई?
0: Yeah, let's see. Hi.
2: Hi, कैसे हो रुजबे?
0: बढ़िया.
2: Hi, Sandy, how are you?
1: I'm good. कैसे हो आप?
2: मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ.
1: ठीक है, तो आपको गेम खेलनी है?
2: खेलने के लिए सिर्फ.
1: कि आपको सवाल पूछने के गेम खेलनी है?
2: गेम खेलनी है.
0: अच्छा, सही है. क्या बात है.
1: आप भी पूछ सकती है सपना, ठीक है?
2: नहीं नहीं, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव.
1: ओके ठीक है.
0: सैंडी भी नहीं है ये, तो एआई का.
1: कुछ भी हो, आइडिया कहाँ से आता है?
0: सैंडी से आया है. यस यस, देखो इसलिए द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन more time you spend on Instagram, more ideas you'll get.
1: Whatever.
2: नहीं but Sandy एक बात बताऊँ, आपका और मेरा algo same है.
1: क्या बात कर रहे हो?
2: Sandy आपने कुछ आपने कौन सा वो बताया? On okay please वाला आपने बोला था ना, truck पे okay लिखा रहता है.
1: हाँ हाँ हाँ, वो सबके algo में आया है. वो रुजबे के algo में भी आया था.
0: हाँ.
2: अच्छा.
0: On kerosene.
1: हाँ. ओके चलो, आपके लिए सवाल ये है कि आपके बॉस ने आपको टेक्स्ट किया है एट 10 PM और लिखा है क्विक क्वेश्चन, नो रिप्लाई या इंस्टेंट रिप्लाई?
2: इंस्टेंट रिप्लाई.
1: जॉब का
0: मैं भी इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा.
1: Are you sure? करती हूँ मैं 10 बजे मैसेज. विजय को बोलती हूँ 10 बजे मैसेज करने के लिए.
0: विजय को इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ मैं 10.
1: वो बातें लगेगी वो खुद ही नहीं करते. ओके.
2: सो मॉर्निंग शो करना रहता है.
1: या ये भी बात है. सो आप बताइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि.
0: और मैंने किए बहुत बार ऐसे, मैंने तो 11-12 बजे भी रिप्लाई किया है, सुबह शो किया फिर आके ऑन शॉर्ट नोटिस.
1: एक्चुअली मैं किया है इसने.
0: एग्जैक्टली. ओके सॉरी सपना, बैक टू यू.
1: ओके सो आप यू नो लाइफ में थोड़ा पहले अगर आप जाती हैं तो आपको मैसेज आता है अ पर्सन यू वेंट ऑन अ वन डेट एंड सेंड्स योर मैसेज आई थिंक यू आर द वन पहली डेट के बाद ही
2: इग्नोर
1: कि पहली डेट में नहीं पता चलता
0: ये गलत है यार ये क्यों नहीं पता चलता पहली डेट में सपना ये तो
2: बट सही बच्चे साथ में नहीं है सो इट्स गुड
0: अच्छा बट मेरे को एक बात बताओ पहली डेट में क्यों ऐसा आप क्यों बोलते हो इग्नोर
2: नहीं पहली डेट में कैसे पता चलेगा
0: नहीं पता चलता
2: वो अलग बात है कि अरेंज मैरिज में पहली मीटिंग में ही आई सेड यस कि हाँ यही
0: हाँ तो
1: वही ना यू आर द वन तो हो गया
2: क्योंकि वो पेरेंट्स का वो पेरेंट्स का वो होता है ना पूरा
1: यू नो
2: सेटअप बाय पेरेंट्स है तो
0: उन्होंने ऑलरेडी अपना फिल्टरिंग करके रखा है
2: हाँ
1: व्हाट अबाउट यू रुज़बे कोई ऐसा बोले तुम्हें
0: बोला है मैंने बहुत बार
1: और इग्नोर हुए हो
0: नहीं भाई आपको लगता है
1: हमें क्या पता रुज़बे
0: क्या सैंडी यार
1: एनीवे थैंक यू सो मच सपना पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू रियली अप्रिशिएट बाय तो गाइज ऐसे ही थोड़ा चिल आउट करने के लिए हम थोड़ी ऐसी गेम्स लेके आते हैं आपके लिए
0: पिछली यादें याद दिलाने के लिए पिछली बातें
1: पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कॉल करके सवाल नहीं पूछ सकते आप भी कर सकते हैं हम बस आपको आइडियाज दे रहे हैं
0: हाँ आप सवाल पूछे यहाँ पे सैंडी के लिए सवाल पूछिए लेकिन
1: अब तुम जिस दिन गेम लेके आओगे तो उस दिन मुझसे सवाल पूछ सकते हो
0: अच्छा ऐसा बोलते हो क्या
1: हाँ
0: ठीक है अभी देखता हूँ इंस्टाग्राम में अभी जाके रात भर

0: Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe.
1: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
5: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11 on the northern from town to Silverdale, 54 minutes. It's heavy from Oniwa Road to Northcote Road. The northwestern slow to Massey now, 28 minutes. On the southern to Manukau, 48, Drury an hour 10. Southwestern, we've got reports of delays heading south through the Waterview Tunnel. From town to the airport, 35 minutes.
4: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, egged and bowled.
6: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just $2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: My Care from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
12: Show us your crack.
13: Ah, Novus!

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Tinseltown
1: में हम आपके लिए बॉलीवुड की एक खबर लेकर आते हैं. यहाँ पे वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. कुणाल खेमू की एक मूवी आने वाली है. नहीं वाइब नाम है उस मूवी का. और एकदम ही सीरियस मूवी स्टार्ट होती है ये कि देश पर खतरा आ गया है ये वैसे ऐसे करके. एंड देन द ट्रेलर जस्ट मूव्स ऑन टू जस्ट मस्ती.
2: और अभी तक सिर्फ टीजर आया है उस पे.
1: मैं टीजर में ही दीवाना हो गया हूं.
2: डायरेक्टर एंड राइटर इज कुणाल खेमू.
1: सो इसका मतलब आल्सो
2: एन एक्टर आल्सो ऑफ कोर्स. इसमें प्रीति जेंटा भी है.
1: प्रीति जेंटा इज लुकिंग सो गुड इन दैट. यार
2: उसके पे सूट भी कर रहा है.
1: बहुत अच्छा है यार.
2: स्पर्श श्रीवास्तव जो है वो भी है इसमें. उनको हमने कुछ एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स में हमने उनको देखा है. सो इस स्टोरी में दो ऑर्डिनरी अनट्रेन्ड बेस्ट फ्रेंड्स है, हार्दिक एंड बग्स.
1: हमेशा हार्दिक यूज करता है वर्ड.
2: सो एक्सीडेंटली एक मैसिव नेशनल कॉन्स्पिरेसी में दोनों फंस जाते हैं. तो वहां से ये कहानी बनती है. सो दिस इज रिलीजिंग ऑन 18 सितंबर इन सिनेमाज.
1: इमेजिन करो 18 सितंबर को ये मूवी आने वाली है और इसका ट्रेलर अब तक नहीं आया बाहर. यार
2: टीजर आया है. जस्ट
1: टीजर आया है और मैं टीजर में ही फैन हो गया हूं. आई जस्ट होप कि न्यूजीलैंड में ये मूवी रिलीज हो. इट्स अ वर्थ थिएटर वॉच. जस्ट एंड मुझे ना कुणाल खेमू
2: वाज गुड कॉमेडी मूवी इन थिएटर.
1: एंड कुणाल खेमू यार मुझे पसंद है.
2: वैसे अवारापन 2 भी देखी हमने.
1: कौन सी
2: अवारापन 2?
1: वो कॉमेडी मूवी नहीं थी वो.
2: कॉमेडी मतलब
1: फनी.
2: हंसे थे हम काफी.
1: हंसे तो बहुत एक्चुअली उस मूवी में.
2: वो मूवी अभी इस साल की थर्ड बिगेस्ट हिट हो चुकी है.
1: आई नो यार क्या मालूम अपने को नहीं समझ में आता है. सैंडी आई थिंक वी हैव लॉस्ट इट.
2: मुझे भी ऐसा लग रहा है.
1: वी डोंट अंडरस्टैंड मूवीज.
2: आपने अवारापन 2 देखी? आपको कैसी लगी प्लीज बताइए यहाँ पे.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Megan Turbo stores nationwide.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 on the northern town to Constellation Drive, 28 minutes to Silverdale, 47 on the northwest, and a bit slow from St Luke's to Rosebank. The southern to Manukau, 43 minutes, Drury an hour. It's heavy northbound to Ellerslie Panmure to Green Lane, and south from Newmarket to Mount Wellington. The southwestern slow heading north through Mangere Bridge and heading south from Pukenui Road to the southern.
2: Megan Turbo, home of the 80k tyre kilometre warranty nationwide.
4: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
5: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
6: Not new, Greg's made it before.
7: Yeah, Noah's made it.
8: Sam's made it too.
5: Oh, new for us, but you've been adding the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
9: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
10: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
11: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
12: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
11: Perfect blend of spices, tender meat aur fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
12: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
11: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
12: 100% authentic and pure as mother's love.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
14: पांच बज चुके हैं, टाइम फॉर न्यूज.
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The winter storm has begun in earnest on the west coast of the South Island. Steady rain is falling with multiple rain and snow warnings and watches in place. Met Services' Heather Keats says travellers are highly likely to be impacted by snow in the coming days.
16: Lewis, Arthurs, Porters, Lindis Passes and the Crown Range Road are all under road snowfall warnings.
15: Fire and Emergency is treating a fire that caused 22 homes near Albert Town in central Otago to be evacuated on Saturday night as suspicious. Specialist fire investigators have been on the fire ground this week. New analysis suggests smokers wanting to quit their habit have a better chance if they use nicotine vapes rather than patches or gums. A review by an international group of experts also found the use of e-cigarettes was more successful than support programs. The family of Dolly Parton has described her as a rhinestone that shone bright enough for the world to see. The music icon has died peacefully in Tennessee, aged 80, after a brief battle with cancer. Her passing announced by her nephew in a family statement.
17: Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
15: To sport, All Blacks coach Dave Rennie says several new players, including debutante prop Soala Ma'u, will benefit from the experience this morning against the Lions. The second test team to play in Cape Town on Sunday morning is named at 10 tomorrow night, our time. And to football updates brought to you by Hisense, the Football Ferns preparations for next year's World Cup in Brazil will continue in October with two away games against world number 56, Panama.
0: Sports.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: Wonderful weather in our super city. 2 layers of clothing is recommended. Isolated showers ho sakte hai kuch jagahon pe. Westerlies ka saath rahega. 5:57 ko hoga sunset. And overnight temperature is going to be as low as 10 degrees. Kal ka overnight rehne wala hai 12 degrees ka. Aur kal ka during the day temperature will be almost similar. 18 degrees ka high.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe. Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
18: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
8: आज बजकर 3 मिनट पावर ड्राइव एट 5 गुड इवनिंग आप सुन रहे हैं अभी और आज इस घंटे गुड इवनिंग सैंडी
19: गुड इवनिंग रुज़बे
8: आपको मौका मिलेगा टू पार्टिसिपेट फॉर रक्षाबंधन कंपटीशन एंड फादर्स डे कंपटीशन
19: यस
8: पहले क्या खेलना है आपको
19: फादर्स डे कंपटीशन पहले खेलते हैं
8: ठीक है फादर्स डे कंपटीशन में $500 जीतने का मौका मिल रहा है डैड्स को
19: सो दो कॉम्पिटिशन्स हैं पहला कॉम्पिटिशन है जो कि सोशल मीडिया पे है तो जो ऑन एयर यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है इसका थोड़ा आपको बता देते हैं उसके बाद सोशल मीडिया का बताते हैं यहाँ पे आपको कॉल करना है कुछ स्लैंग वर्ड्स आपसे हम पूछेंगे जो आज की जनरेशन यूज़ करती है ब्लेस यू एंड ये स्लैंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर कॉल करके बताना है डैड्स को आउट देयर जो फादर हैं जो डैड हैं उनको यहाँ पर कॉल करना है 0800-004-866 is a number. It's 0800-004-866. And आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा आप जीत सकते हैं $500 cash. And Friday 4th September को ये ड्रॉ होने वाला है.
8: Next
19: Friday को होने वाला है ये ड्रॉ. So $500 richer आप हो सकते हैं. तो जब तक आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया के कॉम्पिटिशन के बारे में भी बता देती हूँ.
8: Sorry, too late. Our fathers are very quick today. Hi.
19: Oh, nice.
20: हेलो
8: जी yes. नमस्कार क्या नाम है आपका
20: नमस्कार मैं गौरव
8: गौरव आप डैडी हो या
20: हाँ जी
19: अच्छा आप हो फादर
20: मैं डैडी हूँ
8: आप हो
20: यू
8: हैव अ सन क्या बात है नहीं हमको कल एक गौरव का कॉल आया
19: जो अपनी बीवी के लिए कॉल कर रहे थे
8: जो अपने बीवी के डैडी थे
20: नहीं नहीं नहीं आई एम अ फादर
8: अच्छा ठीक है बताइए क्या क्या कितने बच्चे आपके
20: मेरा भी एक बेटा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर बाय द
8: कांग्रेचुलेशंस और कितने साल का है आपका बेटा
20: अभी वो 5 साल का है
8: 5 साल का है आपका बेटा मतलब बातें तो कर रहा होगा मतलब भी थोड़ी बहुत
20: हाँ जी हाँ जी हम इंडिया से 2 साल पहले आए थे एंड अब तो प्रॉपर कीवी एक्सेंट बोलने
19: लगा टफ टाइम आउट देयर
8: अभी तो वो आपको थोड़े टाइम में आपको बताएगा कि इट्स नॉट दिस इट्स दिस
19: या
8: ऐसे भाई
20: वो लिटरली मेरा एक्सेंट ठीक करता है वो मतलब ऐसे नहीं बोलते ऐसे बोलते हैं
19: एक्सेंट क्या वर्ड हर चीज अभी ठीक होगी देखना अच्छी बात है
8: क्या बात है बट उसको फिर याद दिलाना कि बाप कौन है बाप बाप बाप बाप होता
19: है
8: एनीवे
19: गौरव ठीक है आपसे सवाल अभी
8: आपसे अभी हम सवाल यहाँ पे टेस्ट लेंगे ठीक है अभी आपको आपके बेटे ने वैसे भी सिखा लिया रहेगा काफी सारी चीजें
20: हाँ जी
8: आपको क्या लगता है ये इसका मतलब क्या है कैप नो कैप
20: कैप नो कैप
8: हाँ
19: क्या लगता है क्या आपको
8: मतलब झूठ फेक नो कैप मींस टोटल ट्रूथ नो लाइ
20: नॉट रियल
19: ओह नाइस
8: गूगल कर दिया क्या सब इमीडिएट
20: नहीं नहीं नहीं मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ड्राइव कर रहा हूँ
8: अच्छा अच्छा नहीं नहीं ठीक है
19: वेरी गुड ओके फिर नेक्स्ट
8: भाई इसका मतलब क्या मालूम है एनपीसी
20: एनपीसी
8: हाँ NPC का मतलब मैं बताता हूँ आपको NPC का मतलब है someone who acts like background video game character बोरिंग नॉन-प्रोफाइल
19: कैरेक्टर, मतलब नो
8: नॉन-प्लेयर कैरेक्टर,
19: नॉन-प्लेयर कैरेक्टर, या नॉन-प्लेयर
8: कैरेक्टर, मतलब इसका मतलब है अगर आपको किसी ने एनपीसी अगर बोल दिया
19: तो आप मतलब स्पेशल पर्सन नहीं हो,
8: तो वो मतलब आपको बोरिंग, प्रेडिक्टेबल और रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस, मतलब
19: तो ये पता है कौन से कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी गेम्स खेली हो, गेम में एक मेन कैरेक्टर होता है जो आगे बढ़ रहा है, आसपास कई बार और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो ऐसे सीन में है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, बेसिकली उनको एनपीसी बोला जाता है।
8: माय गॉड,
19: सीन में हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो,
8: इससे बेटर है कि गाली दे दो भाई। ऐसा एनपीसी एनपीसी बोलने से अत्यंत अच्छा है। बट या एक और लास्ट आपको पूछता हूँ वर्ड, ठीक है गौरव?
20: हाँ जी।
8: बजिंग मतलब क्या है? बजिंग
19: नॉट बम्बल बी।
20: मैंने सुना है लाइक बजिंग मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड।
8: Very close.
19: All good, but लेकिन हम ये दे सकते हैं इनको।
8: ये दे सकते हैं हम आपको, सही। मतलब ये it's not buzzing, मतलब extremely good, delicious, top tier. ये usually food के लिए use होता है कि this paratha is buzzing.
20: Buzzing
8: वो। बट गौरव कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपका नाम हमने शामिल कर दिया ड्रॉ में, ठीक है?
19: थैंक यू सो मच।
8: $500 आपके नाम हो सकते हैं, आपको उसके लिए सुनते रहना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट फ्राइडे को ये ड्रॉ होगा, ठीक है?
20: ओके, फोर्थ ऑफ सितंबर मैंने सुना था रेडियो पे।
8: जी जी जी, सही है। ओके,
19: थैंक यू,
8: थैंक यू
20: सो मच,
8: बाय बाय।
19: थैंक यू भाई।
8: हाय, आपका स्वागत है।
3: हाय
8: अमित, आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो?
3: जी, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
8: आपके कितने बच्चे हैं?
3: मेरे एक डॉटर है, 16 इयर्स ओल्ड।
8: 16 इयर्स ओल्ड डॉटर, अरे बाप रे, आप तो एकदम चैंपियन रहेंगे। मतलब
19: आपके लिए तो
3: चैंपियन का तो नहीं पता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं।
8: अच्छा, तो अमित फटाफट बताइए, म्यूइंग MEWING को कैसे बोलते हैं?
19: म्यूइंग
3: म्यूइंग बोलते
8: हैं। उसका मतलब क्या पता है आपको?
3: उसका मतलब क्या हो सकता है, मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ। म्यूइंग का मतलब ये हो सकता है कि समवन इज मे बी कुछ यहाँ पे उसका जॉलाइन।
8: ये आपको कैसे पता चला यार?
3: मेरी डॉटर से कभी कभी बैठ के मैं उसे लेसन्स लेता हूँ।
19: और ये आजकल उसमें भी है ना, प्रोडक्ट्स में भी होता है कि
3: क्या हुआ था।
19: Yeah.
8: That's so cool, yeah.
19: ये मैंने वीडियो भी देखी है।
8: ये म्यूइंग का मतलब होता है कि वो बेसिकली अब जॉलाइन, आपकी शार्पर जॉलाइन के लिए ये करते हो।
19: बट
8: इट्स आल्सो यूज्ड टू टेल समवन टू बी क्वाइट।
19: ओह
8: यार, ये लोग बहुत ही, ये लोग डेंजर है।
3: थोड़ा सा याद है कि जॉलाइन से रिलेटेड है, एग्जैक्टली क्या था ये नहीं पता।
8: यार सही है यार। सिग्मा का मतलब क्या पता है? सिग्मा
19: मेल,
3: अल्फा पता था, सिग्मा मेरे ख्याल से उससे भी ऊपर होता होगा ऐसा कुछ।
8: या सिग्मा इज लोन वुल्फ, कूल, इंडिपेंडेंट।
19: सो इट्स अल्फा सिग्मा, देन बाद में आता है
8: सिग्मा मेल।
19: सिग्मा बाद में हुआ ना,
8: अल्फा का जमाना गया भाई, अब यू कांट बी अल्फा नाउ।
19: या
8: अभी सिग्मा का टाइम आ गया। और भी खेलना है आपको?
19: बट ऑल गुड अमित, यू आर इन द ड्रॉ। चलो ठीक है।
8: अच्छा तो ये बताइए, ये तो सिंपल है, बट व्हाट इज ऑरा पॉइंट्स?
3: ऑरा पॉइंट्स आई थिंक जो मतलब बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको जो पॉइंट्स ज्यादा है तो मतलब दे माइट बी लाइक रियली ग्रेट इन समथिंग।
19: दो होते हैं, एक ऑरा फार्मिंग होती है, ऑरा पॉइंट्स होते हैं।
3: ऑरा फार्मिंग होती है।
8: तो ऑरा
3: फार्मिंग करता हूं मैं तो पॉइंट्स मिलते होंगे जब बहुत ज्यादा कूल हो जाता होगा कोई पर्सन, आई गेस।
8: हां हां, तो बेसिकली ऑरा पॉइंट्स ये है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो आपको रिटर्न में ऑरा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि पैसे तो ये दे नहीं पाएंगे, ये तो खुद कंगाल है। ये मेरे को बहुत हीट मिलेगा यार। बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू आपके कॉल के लिए अमित, आपका भी नाम ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं यार। थैंक यू।
19: So, guys, फेसबुक पे जाके भी पार्टिसिपेट कीजिएगा. अपने डैड को अगर आप एज अ सुपर हीरो देखते हैं, नाउ इज़ द टाइम टू क्रिएट, मेक हिम एज अ सुपर हीरो. एआई के ज़रिए उनको सुपर हीरो बनाओ. एंड फेसबुक पे हमने एक एआई से ही क्रिएटेड एक सुपर हीरो क्रिएट किया है, डैड का एक नो अवतार हम कह सकते हैं कि हमने पोस्ट किया है. उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना सुपर हीरो पोस्ट करो. यू आर इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम Accurate Traffic.
6: The ultimate Father's Day fresh boxes on sale tomorrow. Father's Day sorted.
7: Cloudy overnight for Auckland with a low of 11. On the northern, just heavy from the Harbour Bridge to Northcote Road. Upper Harbour is slow heading west through Greenhithe. Northwestern slow from St Luke's to Rosebank. On the southern, slow traffic heading north from Ellerslie Panmure to just past Green Lane. South from Newmarket to Mount Wellington. Southwestern slow heading north through Mangere Bridge and Mount Roskill.
6: Order at freshbox.co.nz.
8: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favourite Mazda. Mazda.
9: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today. At Bunnings Trade.
10: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
12: डिब्बा खुल गया।
13: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
14: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
15: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
16: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
19: Power Drive at 5, aapke liye yahan pe ja rahi hai, 5:24 right now on the clock. And अभी टाइम आ गया है कि हम आपको यहाँ पे कॉल करने बोले. इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन रक्षाबंधन कंपटीशन, जिसका ड्रॉ इसी फ्राइडे होने वाला है, दो दिनों में इसका ड्रॉ होगा, तो आप उसके लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हो 0800-004-866 इस नंबर पे अभी के अभी.
20: यस yes, आपको परफॉर्मेंस रिव्यू देना है अपने भाई या बहन का
19: जी, उनके बारे में आपको यहाँ पे किससे शेयर करने. काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉल करके बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी एंड इमोशनल किससे शेयर की अपने भाई बहन को लेकर. आप भी यहाँ पे कर सकते हो, कॉल कीजिए 0800 जीरो

0: 800-480-4866 और ये करने के लिए आपको मिलेंगे $250 दो लोगों को मिलने वाले हैं,
1: दो लोगों को, दो विनर्स एक्चुअली में इसमें रहने वाले हैं. सो $250 आपके नाम हो सकते हैं यहाँ पे.
0: हाय, अरे चलेगा ये तो, आप कॉल करें.
1: हाँ, परफॉर्मेंस रिव्यू. यहाँ सो 0800 हम इज अ नंबर, 0800-4866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है. सोशल मीडिया पे भी कंपटीशन है, वहाँ पे जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको कॉल करना है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो डालनी है दैट कनेक्ट्स यू एंड योर सिबलिंग. उसके बारे में कुछ लिखना है, मेमोरी अटैच टू इट एंड टैग योर सिबलिंग.
0: हाय, क्या नाम है आपका? हेलो. अरे यार क्या हो गया यार, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या?
1: हो सकता है, मुझे लगता है.
0: हाँ चलो ठीक है,
1: नेटवर्क का इशू हो सकता है,
0: कोई बात नहीं.
1: लेकिन ये तब तक जब तक आप कॉल कर रहे हैं, आपको अपने पॉडकास्ट के बारे में बता दे.
0: बताओ पॉडकास्ट के बारे में.
1: या पॉडकास्ट जो है ये हमारा जो है नया रिलीज हो चुका है, सो इसको भी जाके आप ज़रूर सुनिएगा. दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट कि हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे जब 100 years अगो आए थे तो कैसे सेटल हुए थे. मोर अबाउट दिस वेरी सून.
2: Ladies and gentlemen,

0: आवारा पन टू का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए यहां पे जा रही है और कंज्यूमर एनजेड ने ऐसा उनको लगता है कि गलत हो रहा है न्यूजीलैंडर्स के साथ क्यों ऐसा उनको लग रहा है सैंडी पता है आपको क्योंकि वुलवर्थ्स ने रिसेंटली अनाउंस किया उनका 163 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट
1: ओके
0: और ये है 400 मिलियन डॉलर्स स्पेंड करने के बाद जहाँ पे उन्होंने स्टोर रिफ्रेशेस किया ना वो सारे करने के बावजूद 163 मिलियन उन्होंने प्रॉफिट ये किया है रिकॉर्ड किया है और उसमें कंज्यूमर न्यूजीलैंड के जो चीफ है एग्जीक्यूटिव जॉन डफी वो बोलते हैं यार ये सही नहीं है जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोसरीज के लिए पे करने के लिए सुपरमार्केट्स इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो है 163 मिलियन डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट्स क्या ठीक है आपका इसके ऊपर
1: well, वो प्रॉफिट बना रहे एक बिजनेस है जो कि प्रॉफिट बना रहा है एंड you know it's not just this supermarket who is making a profit is samay par there are many supermarkets ya kehlo many shoppers out there like shopping retails out there jo profit bana rahe hain
0: aur वैसे देखा
1: जाए like business agar profit nahi banayega to kaise chalega
0: aur agar aisa dekha jaye to ye log ne to sirf 163 million ka profit kiya hai kuch banks hai unhone billion dollars ke profit kiye
1: hain yeah to wo kyun nahi count ho raha hai
0: wo kaise tumhe usse dikkat nahi hai
1: yeah
0: and अगर सुपरमार्केट्स प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो दूसरे सुपरमार्केट्स कैसे एंटाइस होंगे आने के लिए ना कि भाई स्कोप
1: है ज़्यादा कंपटीशन कैसे होगा
0: अब मुझे बताओ ये 163 मिलियन का प्रॉफिट है अब इसमें इतना छोटा मार्केट है कहाँ से अभी और सुपरमार्केट्स कहाँ से कंपटीशन भी आएगा ना न्यूजीलैंड में अगर पैसा है ही नहीं तो
1: वुलवर्थ ने वैसे बोला है कि टू डिलीवर वैल्यू फॉर न्यूजीलैंड शॉपर्स इट हैड टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस तो अगर वो प्रॉफिट करेंगे तभी उनका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा अदरवाइज इट कैन नॉट बी तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्रॉफिट के ऊपर टारगेट करना चाहिए सो या अभी स्पेशल्स उनके कितने होते हैं वो सब सारी चीजें
0: मुझे लग रहा है चीफ है जो कंज्यूमर इंजर के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग ने ब्रेक इवन करना चाहिए क्योंकि वो लोग नहीं पैसे कमा रहे हैं तो और किसी ने भी नहीं कमाने चाहिए
1: या आई नो कि ग्रोसरीज के यू नो दिस इज एवर गोइंग स्टार लाइक पिछले साल से हम सब चीज़ें सुन रहे हैं कि ग्रॉसरी के रेट्स बढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें हो चुकी है बट इट्स नॉट जस्ट वन सुपर मार्केट इट्स एवरीवेयर हर कोई कर रहा है तो और इसकी तो मेन ब्रांच यहाँ पे भी नहीं है ना न्यूजीलैंड में नहीं है द हेड ऑफिस
0: ऑस्ट्रेलियन
1: है वो एनीवे
0: इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है ना उनको
1: बट एनीवे आपका टेक गाइस इसमें डिफरेंट हो सकता है हम कई बार व्यू शेयर करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका क्या टेक है इसके ऊपर आप भी कॉल करके बताइए यू नो जो कंज्यूमर्स होते हैं हम भी कंज्यूमर है दो बट कई बार डिफरेंट टेक्स भी होते हैं सो आप भी कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 00 हम डू यू थिंक कि वूलवर्थ ने इतना बड़ा प्रॉफिट जो कमाया है कि ये आपकी सेविंग्स में से गया है पैसा
0: 163 मिलियन डॉलर्स
1: चुभ रहा है आपको इस समय भी कि नहीं चुभ
0: रहा है गलत लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत है प्लीज आप व्हाट
1: इज योर टेक या और डू यू थिंक कि नहीं इट्स ओके दे आर डूइंग देयर जॉब उनका बिजनेस है तो वो कर रहे हैं इस चीज को लेके
0: हाय
2: हाय कैसे आप लोग
0: बढ़िया भाई कैसे हो आप बताइए क्या है आपका टेक इसके ऊपर
2: मुझे लगता है देखो अभी वो बिजनेस है तो प्रॉफिट करने के लिए ही बैठा है क्योंकि कल जाके जब लॉस होगा तो कोई आके उनको पैसा तो देने वाला है बट ये मैटर करता है कि अगर वो अभी के सिचुएशन में अगर अच्छा कर रहे हैं तो दे कैन माइट बी लाइक सम ऑफर्स वो रख सकते हैं जिसमें लोगों को भी हेल्प हो और जैसे अगर आप प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है तो आप बंदों की पे भी बढ़ाओ फिर स्टाफ की तो वो हिसाब से फिर वो सही हो जाता है बट प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और लोगों की पे उतनी नहीं करती
1: या फिर आपने वो स्टाफ वाला पॉइंट भी सही बोला कि या फिर अगर आपने वो स्टाफ को सही पे नहीं कर रहे अगर प्रॉफिट अकेले ही वो बना रहे लेकिन स्टाफ को नहीं पे कर रहे उतना तो या वहाँ पे पंगा है
0: ये तो
2: और ये ज्यादा डिसएडवांटेज भी ले रहे हैं मार्केट का कोई कोई एम्प्लॉयर जैसे अभी अगर जॉब उसमें नहीं है मार्केट में तो फिर वो उतना टोल मोड़ के एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं तो वो सब चीजें भी हो रही है तो या एंड ऑफ सभी जगह पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है
1: ओके
0: बढ़िया थैंक्स यार अरफाज थैंक्स फॉर कॉलिंग
1: थैंक यू अरफाज
0: आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो आपके थॉट्स, व्यूज, ओपिनियंस,
1: या कोई भी आपका व्यू हो सकता है. सो इसके वैसे इन्होंने वूलवर्थ ने स्पेंड किए हैं 400 मिलियन डॉलर्स स्टोर के ऊपर. अच्छा बोला तुमने वो.
0: आप सुनते नहीं हो ना यार सैंडी. हाय
3: हाय हाय हाउ आर यू गाइस.
1: गुड.
0: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम एमजे है.
0: पांच बार पता चल गया हमें एमजे. आपको रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा.
3: कर दिया.
0: थैंक यू. बताइए.
3: मैंने संडे को ही बोला था वो अकाउंटेंट की जो स्टाफ है ना, मैं सुबह में गया कुछ $90 करके, ज्यादा कुछ दिया नहीं, 4-5 आइटम. फिर रात में फिर से गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनिक वगैरह दिया और उसका अलग $100 का लगा. तो मैं उसको बोला कि लगता है कि मैं सिर्फ कमा रहा हूँ अकाउंटेंट को देने के लिए. तो आई थिंक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक सपोर्ट अदर.
0: उनका पूरा उसमें जा रहा है.
1: तो आप किसको उसकी जगह किसको सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब कि लोकल बिजनेस को उसकी जगह सपोर्ट करना चाहते हो या क्या?
3: Investing in equipment like freezer, etc. Ho gaya, and you know staff and stuff, but still it's not aisa nahi ki break even ho raha hai, kaafi zyada profit mil raha hai unko, you know.
1: जो मार्केट होती है क्या कहते हैं,
0: फार्मर्स मार्केट.
3: हाँ करेक्ट, फार्मर्स मार्केट भी है. बट इट्स जस्ट दैट काउंसिल या जो भी है ना, दे नीड टू सपोर्ट देम, इनको तो अगर इनके वेजिटेबल्स नहीं बिकेंगे तो इनका GST तो माफ हो जाएगा. हम तो GST कैसे देंगे जब हम फ्रूट वेजेस खरीदेंगे.
1: ना हमने सही पॉइंट, और आप ऑस्ट्रेलिया पैसा नहीं भेजना चाहते बेसिकली. तो लोकल को सपोर्ट करना है तो या आई थिंक देयर आर मेनी ऑप्शंस आउट हियर एज वेल.
3: करेक्ट. आई मीन नॉट जस्ट दिस, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन लाइक दिस, बोइंग को भी ले लो आप, उसके बारे में भी ऐसा ही है.
0: अरे बट यार ये तो इस कंट्री का सीन है ना कि यहाँ पे मोस्टली मोनोपोली या फिर डुओपोली में काम चल रहा है ना. अब दूध का भी देख लो आप, मैक्सिमम तो दूध एक ही कंपनी बना रही है मेजॉरिटी.
3: मीडिया में देख लो,
0: मीडिया में भी एक हाथ
3: धोई है, निकल गया उसमें चीज, निकल गया उसमें कुछ बचा ही नहीं. उसके बाद आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाओगे और उसके बाद वो नया निकालेगा लैक्टोज इंटॉलरेंट, अभी नया आया है मार्केट में,
0: लैक्टोज फ्री आया ना. हाँ
3: हाँ, तो देखो ऐसा है मामला, अगर दूध जैसा है वैसा पीना चाहिए.
0: ऐसा बोलते हो आप?
3: आप उसमें से सब कुछ निकाल देंगे, बटर मक्खन ये सब बनाने के लिए, और फिर पानी बेचोगे तो फिर क्या? ये तो हमारा हम वहाँ पे पुराने, जब हम थे दूध वाला रोज आता था, आके दूध देता था तो बोलते थे कि आज पानी मिला है, बोलता है नहीं वो पानी मिलाना बेहतर था देन दिस गाइ टेकिंग ऑल द फैक्ट आउट.
1: पर ये है ना कि यहाँ पे अब क्या है कि बहुत सारी इंटॉलरेंस भी होती है कईयों की बॉडी में ना, तो उसकी वजह से लाइक एक ही टाइप का मिल्क हर कोई यूज नहीं कर सकता है.
3: Intolerance comes with time. And when you start consuming it again and again and again, it builds up because it doesn't have the fats to digest it anymore. That's the problem. So that's where the intolerance comes in. Even all with the water and the heavy metals in the environment, all the autism that is happening now with all the kids. It's a lot of exposure to all heavy metals, Wi-Fi, radiation.
0: MJ is a medical professional, Sandy. आपको नहीं पता, ये आपने पढ़ा है क्या science और medical medicine और ये सब?
1: नहीं.
0: तो फिर?
3: नहीं, मेरा बेटा autistic है, तो मुझे मैंने काफी कुछ सीखा है इसके बारे में. तो वो healthy बच्चा था. बट ऐसा है तो
0: अच्छा,
3: हम लोग उसी ऑर्गेनिक वगैरह खाते हैं.
1: तो
3: इट मेक्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंस.
1: या
0: राइट. थैंक यू एमजे, थैंक्स फॉर शेयरिंग.
1: थैंक यू सो मच एमजे फॉर कॉलिंग.
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग मैन. यहाँ पे मैसेज आया कि मे बी ब्रिंग एमआरपी इंस्टेड ऑफ आरआरपी. ये भी अच्छा पॉइंट है कि एमआरपी अगर आ जाए, दैट इज एमआरपी बताना आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस.
1: तो उससे क्या फर्क पड़ेगा?
0: तो उससे मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम कोको कोला बाय कर रहे हैं, फैंटा बाय कर रहे हैं, हर जगह मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर ही हम लोग बाय कर रहे हैं, वन प्राइस एवरीवेयर,
1: वन प्राइस।
0: पेट्रोल भी हम जब बाय करते हैं हम एक ही प्राइस का पेट्रोल बाय करते हैं हर जगह, यहाँ पे नहीं है जैसे एक जगह पे कम है ज्यादा।
1: सो दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस, या तो बिल्कुल ही ऊपर जाएंगे या बिल्कुल ही नीचे जाएंगे,
0: मतलब सब लोग एक ही रेट पे बेच रहे हैं ना, फिर उनका देखना पड़ेगा कि सर्विस किसकी अच्छी मिल रही है उसके हिसाब से कौन एमआरपी से कम बेच रहा है शायद, तो शायद वहाँ पे लोग प्रेफर करेंगे जाना।
1: ये
0: सर्विस अच्छी मिल रही तो वहाँ पे जाएंगे। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट पॉइंट यार। एनीवे ऐसे आपके आइडियाज यहाँ पे भेजते रहिए 5599 पे। होपफुली हमारे पास जब यहाँ पे पॉलिटिशियंस आएंगे हम उनको ये सब सवाल पूछेंगे।
1: We're trying to do that.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: अरे राम मसाला इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे.
0: हम Throwback brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Chris Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Milwaukee Packout Redemptions.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11. On the northern, it's snow from the Harbour Bridge to Northcote Road. Upper Harbour is heavy heading west through Greenhithe. The northwestern slow from St Luke's to Rosebank. On the southern, it's heavy southbound Green Lane to Mount Wellington. Southwestern is slow heading north through Mangere Bridge and Mount Roskill, and slow southbound from Puhanui Road to the southern.
2: Don't miss the Milwaukee Packout Redemption offers. Available until the end of August. T's and C's apply.
4: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
6: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
10: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: And award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Local country music star Kayleigh Bell has reflected on the influence of Dolly Parton. Bell says she admires her as a boss woman of the industry.
15: A really big thing of hers that stands out to me is with her song I Will Always Love You, and Elvis wanted to record that, but he wanted half the rights to the song and she wanted him to record it, but she said no from a business standpoint.
14: Dolly Parton has passed away at the age of 80 after a brief battle with cancer. Free flu jabs for children are on their way. Pharmac is changing the brands of multiple vaccines. From April next year, two types will be fully funded for kids aged between 6 months and 5 years. Plunkett has welcomed the move, calling it a significant step towards reducing healthcare barriers. A sudden death in Wellington this morning. A police spokesperson said they are investigating after being informed of the incident on the terrace at around 8 o'clock. The winter storm is making itself felt on the west coast of the South Island. Steady rain is falling with multiple heavy rain warnings in place. Met Services' Heather Keats says there is a heavy snow watch in place for now. To sport, Ethan Blackadder's performance against the Lions this morning has him in contention for the second test against the Box on Sunday morning. Coach Dave Rennie might be tempted to move Tupou Vahi from the blindside flanker to lock. Blackadder then becomes a contender for the number 6 jersey. And to football updates brought to you by Hisense, the Wellington Phoenix has signed 24-year-old Football Ferns forward India Paige Riley on a 2-year deal.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
17: चित किया जाता है। स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता, मंजिला लाल की पति, भूतपूर्व नवा निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुडा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी के लिए कविनय लाल को 0210534317 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता, मंजिला लाल के पति, भूतपूर्व नेताता नवा निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुड्ढा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए कविनय लाल को 0210534317 पे।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
19: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers, The Drive Show with Sandy and Rusbe.
18: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
17: 6:03, good evening. Drive Show में अब Trend Makers की बारी आ गई है, जहाँ पे हम आपके लिए एक थीम लेकर आते हैं रोज।
20: या थीम लेके आते हैं और उसके अराउंड आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते हैं। सवाल भी आपसे हम पूछेंगे इस आवर में।
17: अभी हम ये सवाल पूछते हैं जो आपने 4 बजे भी पूछा था और कुछ आंसर्स आए थे वो टाइम पे। तो आज हम एक व्यक्ति को शाउट आउट दे रहे हैं जो
20: कॉल करके बताओ अगर आप बता सकते हो।
17: हाँ, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। एंड बेसिकली क्या बोला था ये अपने इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने मूवीज बनाई है, मतलब एंटरटेनमेंट
20: इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने मूवीज बनाई हैं। और मेरे को नहीं लगता कि कोई और डायरेक्टर है जिसने बनाई है। दिस इज द ओनली वन अगर देखा जाए।
17: उतना नहीं पता, लेकिन मेरा हिंट था इनका नाम बड़ा मीठा है।
20: स्वीट है
17: इनका नाम।
20: कॉल तो नहीं आएगी रुजवे मुझे लगता है।
17: 0800-004-866
20: अब शायद आ जाए या इस नंबर पे 0800-004-866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है। एंड खैर इसके बारे में आपको बताना है कि कौन है ये।
17: हमने यार ये बार हमारा पॉडकास्ट प्ले नहीं किया यार बिल्कुल भी।
20: या पॉडकास्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट फिलहाल इस डायरेक्टर का नाम बताने का वक्त आ चुका है।
17: हाय, आप हिंट दीजिए इस डायरेक्टर के बारे में। गुड मॉर्निंग बोला
21: आपने। हिंट बताना नहीं है नाम का।
20: क्यों हिंट क्यों मांग रहे हो?
17: हिंट मांगो ना, क्योंकि एक और कॉल आ रहा है ना।
20: ओके, हाँ बताइए।
17: हिंट दो ना। हिंट
21: हिंट इन ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर।
17: नेशनल अवार्ड विनर
21: आल्सो। मैं जिसको सोच रही हूँ, आई एम जस्ट गेसिंग।
17: हाँ हाँ।
21: एंड आल्सो ना एक सिग्नल वाली एक मूवी का नाम सिग्नल कुछ था।
20: अरे वाह, पकड़ लिया आपने।
17: वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका?
22: रमी।
17: अच्छा।
20: उसको दाकी से पहले ये बोले अभी ना बताओ, ये लो।
17: ये लो।
20: अरे नहीं, इट इज ओके।
22: मिली नहीं
20: इसलिए हम कर रहे हैं। एंड मधुर भंडारकर का करियर देखो तो यार, मतलब एक स्ट्रगलिंग आउटसाइडर टू वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिल्म मेकर। व्हाट अ जर्नी।
17: ये एक्चुअली सेल्फ टॉट फिल्म मेकर और स्कूल ड्रॉप आउट रहे हैं। तो मिडिल क्लास मराठी कोंकणी फैमिली इन मुंबई, और फिर वो स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर लिए जल्दी क्योंकि फाइनेंशियल हार्डशिप्स थे। एंड देन ही गॉट इनटू फिल्म्स। क्रेजी यार।
20: और आज जिन मूवीज का नाम आप सुनने वाले हैं ना, क्लासिक मूवीज, उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज बनाई है। बट ही यूज्ड टू बी अ वीडियो कैसेट डिलीवरी बॉय.
17: ये ऐसा जॉब भी होता था?
20: या मतलब वीडियो कैसेट डिलीवर करना. सो ही विल ट्रैवल अराउंड मुंबई ऑन अ बाईसाइकिल डिलीवरिंग मूवीज डोर टू डोर. मूवीज ऑर्डर होती होंगी फोन पे, डोर टू डोर जो है मूवीज को डिलीवर करना. वहां से जर्नी यू नो ऑफ एक्चुअली मेकिंग अ मूवी.
17: एक्चुअली द अदर थिंग, अभी हमको एक कॉलर ने बोला ना कि उन्होंने सिग्नल के ऊपर एक मूवी बनाई थी.
20: इज अ ट्रैफिक सिग्नल.
17: वो एक्चुअली में च्युइंगम बेचते थे ट्रैफिक सिग्नल्स पर.
20: वाओ,
17: अर्ली डेज में.
20: सो बेसिकली उन्होंने अपने लाइफ में जो देखा ना उसके ऊपर उन्होंने मूवीज बनाई है. ट्रैफिक सिग्नल पे उन्होंने काम किया, तो ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है उसके ऊपर मूवी बनाई. उसमें कुणाल खेमू थे उस मूवी में.
17: ओ, उस बहुत यंग कुणाल खेमू.
20: यंग कुणाल खेमू, या वेरी नाइस मूवी गाइस.
17: कुणाल खेमू वो टाइम पे ना बहुत सीरियस रोल्स करते थे यार.
20: या ही वाज नॉट अ कॉमेडी एक्टर.
17: ही वाज नॉट एट ऑल, बहुत ही सीरियस एक्टर. एंड देन बाद में वो जो निखरे हैं, ओहो
20: अलग ही लेवल. बट यस, मधुर भंडारकर की मूवीज के गाने प्ले कर रहे हैं आज हम. एंड कुछ गाने कुछ मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं. सो दिस आइकॉनिक मूवी का गाना भी आप सुनने वाले हैं, जिसके वजह से मधुर भंडारकर मेरे को लगता है कि बड़ा नाम कमाया इन्होंने.
17: काफी जाने गए ये. मूवी का नाम है फैशन.
20: फैशन
17: बेस्ड ऑन पेज थ्री ना, मतलब
20: नहीं, हाँ वो पेज थ्री एक और मूवी है.
17: पेज थ्री अलग मूवी है.
20: पेज थ्री इज अ डिफरेंट मूवी.
17: ओह दैट्स राइट. यस यस.
20: या
17: सो मधुर भंडारकर है क्या?
20: वो भी मधुर भंडारकर है.
17: ओह माय गॉड.
20: सो इफ यू थिंक अबाउट दोस काइंड ऑफ मूवीज जो बॉलीवुड में बनी है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रियलिटीज के बेस्ड के ऊपर है, वो सारी की सारी मधुर भंडारकर ने बनाई है. सो आपसे सवाल ये है, सोलो फैशन का तो अभी आप यहाँ पे गाना सुनने वाले हैं. फैशन मूवी में किन दो एक्ट्रेसेस ने काम किया था जिसके बाद उन्होंने साथ में कभी काम नहीं किया है? ये दो एक्ट्रेसेस ने बाद में कभी साथ में काम नहीं किया.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज मधुर भंडारकर को हम shout out दे रहे हैं क्योंकि उनका आज birthday है.
1: Yes, मधुर भंडारकर का birthday आज हम celebrate कर रहे हैं. बहुत ही distinctive director का tag इनके ऊपर है. You know, his family wanted him to get a secure job. किसी भी family की तरह. उनको होता था कि भाई तुम एक अच्छी सी job कर लो तो तुम पस जाओगे. इतनी struggle तुमने कर ली है. But he wanted to be a filmmaker. उन्हें life में था देखा था उनका real passion जो था कि जो उनकी निगाहों ने देखा है वो डायरेक्ट करके लोगों को दिखाएं तो इस वजह से वो करना चाहते थे.
0: ये एक्चुअली में स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी काफी मानते हैं. ये डिवोट फॉलोअर है लॉर्ड सिद्धिविनायक के और एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है उनका. ये वॉक करके जाते हैं सिद्धिविनायक टेम्पल इन मुंबई एवरी ट्यूजडे. तो आपको पता है ना ट्यूजडे को काफी लोग चलकर जाते हैं सिद्धिविनायक टेम्पल जहाँ पे भी वो रहते हैं. काफी लोग दूर दूर से वॉकिंग जाएंगे.
1: ये मैंने सुना है. आई थिंक इवन अमिताभ बच्चन डिड दैट. कितनी बार किया मुझे नहीं पता बट अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं.
0: बहुत ही मतलब इट्स अ ट्रेडिशन बेसिकली जो काफी लोग फॉलो करते हैं. ये इन्होंने खुद तो ये स्कूल ड्रॉप आउट है लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेक्चर्स भी दिए हैं. इनकी एक मूवी रिलीज हुई थी कॉर्पोरेट. बिपाशा बासु थी इसमें 2006 में. एंड उस टाइम पे हाई स्टेक बिजनेस राइवलरी के बारे में इन्होंने बात की थी वहाँ पे. तो उनको इन्वाइट किया था एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ने उनको बुलाया था. क्या क्या लेक्चर दीजिए इसके बारे में. सो इट्स क्वाइट कूल. वेल यहाँ पे काफी मैसेजेस भी आए. हमने सवाल पूछा था सैंडी ने कि फैशन इस मूवी में कौन सी दो एक्ट्रेसेस ने काम किया जो उनके बाद उन्होंने कभी काम नहीं किया साथ में.
1: द राइट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा एंड कंगना. मतलब बाद में कभी दोनों ने काम किया ही नहीं लेकिन साथ में काम किया होता है इस मूवी में.
0: साथ किसी ने काम नहीं किया उसके बाद.
1: वो बात अलग है.
0: बट एनीवे गीता विनी सपना थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए यहाँ पे.
1: एंड अभी जो गाना सुनने वाले हैं अनदर इंटरेस्टिंग मूवी रुजबे हीरोइन मूवी का गाना भी हम सुनने वाले हैं
0: करीना कपूर.
1: लेकिन इसमें पहले ऐश्वर्या को लिया था.

0: पेज थ्री में देखे तो कोंकण असीन शर्मा ने काम किया था,
1: यू
0: राइट, चांदनी बार में टब्बू थी, फिर बिपाशा बासु कॉर्पोरेट में थी, प्रियंका चोपड़ा और कंगना वर इन फैशन, एंड देन करीना कपूर इन हीरोइन. सो हमेशा मोस्टली इन्होंने फीमेल लेड रोल्स काफी किए हैं.
1: चांदनी बार के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है.
0: वाओ, तो अभी सुनते हैं हीरोइन मूवी का ये बढ़िया सा गाना.

0: thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
1: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
3: Get the Skinny!
4: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. cbp.co.nz/rewardsrush.
7: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: है क्या? एक घंटे से खड़ी हूँ।
1: घंटा?
0: हाँ।
1: मिलने जुलने का वादा सब सिग्नल पे करते हैं, अपनी लापरवाही से कुछ लोग यहाँ मरते

0: पैसे दे। क्या रे टाई सूट लगा के एक रुपए का कॉइन दिखाता है, 5 रुपए दे जट में चल लुखा।
1: कोई कहता है हाय हाय, कोई कहता है वाय, कोई कहता है।

0: पे सिग्नल पे, अरे बच के रहना
1: सिग्नल पे।
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
3: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
5: 104.2 FM पे और रोवा ऐप के जरिए यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज ट्रेंड मेकर्स में मधुर भंडारकर को आज हम शाउट आउट दे रहे हैं, उनका बर्थडे है आज, एंड उनके लवली मूवीज को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ गानों के बारे में बात कर रहे हैं। सैंडी, आपको पता है कि मधुर भंडारकर ने काफी और जॉब्स तो किए ही, जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने थे एक स्मॉल बजट फिल्म मेकर्स के लिए, एंड रफली 1000 रुपीज उनको मिलते थे उसके लिए। फिर उसके बाद उन्होंने असिस्ट किया राम गोपाल वर्मा को, तो राम गोपाल वर्मा को असिस्ट करने से पहले काफी दूसरे स्मॉल टाइम फिल्म मेकर्स को भी असिस्ट करते थे वो।
6: वेले, इन्होंने हमेशा अनकंफर्टेबल रियलिटीज को दिखाने की कोशिश की है। सो हिज फिल्म जो थी, उन्होंने एक्सप्लोर किया डार्क साइड ऑफ ग्लैमरस साइड, जो हम सामने से ग्लैमरस साइड देखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी कल्चर है, फैशन है, कॉर्पोरेट लाइफ है, नाइट लाइफ है, एनीथिंग।
5: उनके मूवीज के बाद ही हमारे माँ बाप हमको बोलते थे कि अरे वो दुनिया बहुत खराब दुनिया है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे सब नशे करते हैं।
6: या
5: वो ये सब
6: इवन पेज थ्री, यार तुम्हें पता है ना पेज थ्री कॉन्सेप्ट क्या था, पेज थ्री नाम कैसे था वो
5: मतलब पेज थ्री पार्टीज के ऊपर था ना वो।
6: हाँ, लेकिन तो पेज थ्री वॉज की न्यूज़पेपर में जो पेज थ्री होता है,
5: हाँ,
6: ना थर्ड पेज होता है, उसमें एंटरटेनमेंट
5: आती थी। हाँ,
6: एंटरटेनमेंट न्यूज होती थी,
5: बॉलीवुड पार्टीज की न्यूज होती थी।
6: हाँ, पार्टीज की न्यूज होती थी बेसिकली। तो उसमें उन्होंने दिखाया था इस मूवी में कि पेज थ्री में होता क्या है, आप तो सिर्फ वो न्यूज़पेपर देखते हो कि ये फोटो छपी है, ये सब कुछ हुआ है,
5: बट एक्चुअली में उसके पीछे क्या हुआ है,
6: इनसाइड क्या होता है। सो या सो बॉलीवुड इज सेलिब्रिटीज, रिच कल्चर, फैशन पार्टीज, हाई प्रोफाइल इवेंट्स बेसिकली उसमें दिखाए गए थे। तो यार कोंकणा सेन शर्मा ने बड़ा अच्छा रोल किया था यार इस मूवी में, माधवी शर्मा का रोल किया था उसने, जर्नलिस्ट का उसने रोल प्ले किया था इस मूवी में, दैट वाज कमाल का रोल।
5: आज के ज़माने में व्हाट डू यू थिंक पेज थ्री इज?
6: आज के ज़माने में पेज थ्री इज जहाँ पे वो और ही ऐसा पोज बना रहा है,
5: हाँ, इंस्टाग्राम रील्स
6: इंस्टाग्राम रील्स में, मतलब आजकल मेरे को लगता है पेज थ्री कवर करने के लिए ज्यादा लोगों को जाना पड़ता ही नहीं है, दे आर ऑल पोस्टिंग ऑन देयर सोशल्स।
5: दैट्स राइट,
6: टाइम हैज चेंज्ड।
5: एक टाइम था, आपको पता है सैंडी, करण जोहर के घर की पार्टी की वीडियो वायरल हो गई थी।
6: या, और उसके बारे में था कि सबने, या वो हुआ था आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत।
5: अच्छा,
6: या उस समय पर हुआ था जब वो एक कहते ना कि ट्रेंड था कि नेपोटिज्म के ऊपर, वो सारी चीज़ों के ऊपर जब वो सब बवाल हो रहा था, उस समय पर वो वीडियो बाहर आई थी, बिकॉज उस समय पर ड्रग्स के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी, तो उस समय पर वो वीडियो बाहर आई थी कि वहाँ पे पार्टी में सबने ऐसे ड्रग्स लेके रखे थे।
5: हाँ,
6: तो वो ऐसा वीडियो था उसके ऊपर, ये वायरल हुआ था।
5: या वेल एनीवे, करण जौहर की अगर बात करें तो उनका कॉफी विद करण सीजन 9 आ रहा है।
6: सीजन 9 आने वाला है, पता नहीं कंफर्मेशन है कि नहीं है, ऐसा हमने पोस्टर देखा है,
5: एक पोस्टर देखा, पता
6: नहीं, वी आर नॉट श्योर, एंड अपेरेंटली द फर्स्ट गेस्ट इज सलमान खान, मतलब पहले उनको बुलाया था करण जौहर ने उसको रोस्ट करने के लिए, लेकिन खुद वो कोई जवाब नहीं दे पाया वहां पे। तो वो दोबारा से शायद कुछ ऐसा ट्राई करना चाहता है, लेट्स सी।
5: लेट्स सी, सैंडी को डिटेल्स मिल जाएंगे इसके बहुत जल्द।

0: TVNZ. Offer ends August 31st.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. फिर ये घर कैसे?
3: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
2: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: First home buyer बनना है या investment property लेनी है तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.

0: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
1: Your property manager shouldn't disappear after 5pm. Nesto offers evening and weekend viewings, proactive management and real support. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
2: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe.
2: Let's go! 3, 2, 1.
4: Trend Makers.
5: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स, जहाँ पे आज मधुर भंडारकर की मूवी के सॉन्ग्स आपको हम सुना रहे हैं एंड उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे हैं. यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है मधुर भंडारकर के बारे में. यहाँ पे एक्चुअली मैं सैंडी ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं मधुर भंडारकर और आशुतोष गोवारिकर में बहुत कंफ्यूज होता हूँ हमेशा.
6: वैसे क्यों
5: पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को हमेशा मैं मधुर भंडारकर सुनता हूँ ना तो मेरे सामने आशुतोष गोवारिकर ही आते हैं. बट एक्चुअली मधुर भंडारकर अलग दिखते हैं.
6: बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं वो.
5: दैट्स राइट या.
6: सो अभी जाते जाते एक मूवी का जो हम गाना सुनने वाले हैं, 57
5: इयर्स ओल्ड है वो.
6: या 57 ईयर ओल्ड.
5: एक्चुअली अभी 58 हो गए हैं वो.
6: टुडे
5: 58. यस यस, ही इज 58 और उनकी वाइफ का नाम है रेनू नंबूदरी.
6: तो हीरोइन मूवी की बात कर रहे थे रुजबे. ये मूवी भी यू नो बोल्ड कंटेंट इस मूवी में एक्चुअली में दिखाया गया था अबाउट रिलेशनशिप, डार्कर साइड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो रिपोर्ट्स एंड स्पेकुलेशन थी करीना के रोल के ऊपर, हाउ फार शी वाज विलिंग टू गो फॉर अ सर्टन सीन्स इस मूवी में. सो द कंट्रोवर्सी एक्चुअली बिकेम पार्ट ऑफ ह्यूज क्यूरियोसिटी सराउंडिंग द मूवी एज वेल. तो जिसके बाद लोगों ने, बिकॉज उस समय पर ट्रेलर्स भी इतने बड़े नहीं होते थे कि सब कुछ पता चल जाए कि मूवी में क्या ही हो रहा है. आज के ट्रेलर्स हम देखते हैं तो मतलब मूवी पता चल जाती है कि मूवी का क्लाइमेक्स क्या है.
5: कौन सी ट्रेलर, मतलब या सम मूवी के ट्रेलर्स अभी भी ऐसे. बट अभी जो रिसेंटली, आई नो इट्स नॉट अबाउट मधुर भंडारकर, बट रिसेंटली जो कुणाल खेमू की मूवी आ रही है वाइब, उसका टीजर बहुत बढ़िया है यार. मतलब वो बहुत छोटा रखा है वो लोग ने.
6: दैट्स अ टीजर,
5: दैट्स अ टीजर,
6: रियल टीजर.
5: आई होप उसका ट्रेलर ना आए.
6: अभी उल्टा हो चुका है, टीजर लेंथ हो चुकी है ट्रेलर की और ट्रेलर की लेंथ हो चुकी है हाफ ऑफ मूवी की.
5: एनीवे, अवार्ड्स की अगर बात करें, मधुर भंडारकर ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं सैंडी. सो पद्मश्री उन्होंने जीता 2016 में. ये है इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनको ये किया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा.
6: वाओ.
5: फिर एक गंगा शरण सिंह अवार्ड 2009 में इन्होंने जीता. ये प्रेसिडेंशियल ऑनर अवार्ड होता है बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर हिज नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर एंड सिनेमा. फिर इन्हें मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज 2002 चांदनी बार के लिए. जैसे आपने कहा 49th नेशनल फिल्म अवार्ड यहाँ पे उन्होंने जीता था वो टाइम पे. एंड बेस्ट फीचर फिल्म 2005 में उन्हें पेज 3 के लिए मिला था.
6: Oh, wow.
5: एंड देन अगेन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन 2007 में ट्रैफिक सिग्नल के लिए उनको मिला था. सो आई थिंक 2000 का जो अर्ली टाइम था, ही वाज ऑन अ रोल यार.
6: अभी भी ऑन रोल होने वाले हैं वो.
5: उन्होंने एक्चुअली में 2008 में फैशन के लिए भी जीता था फिर.
6: वाओ, नाइस मैन.
5: या
6: अभी जो उनका प्रोजेक्ट आने वाला है ना इस साल में रुजबे, उसका नाम है द वाइव्स. वाइफ का द वाइव्स एंड ही सेड कि दिस इज अ स्टेरॉइड टू पेज 3.
5: Oh, wow.
6: So, and also,
5: Bollywood vibes के ऊपर होगा ये
6: शायद से. And क्योंकि जो हमेशा reality दिखाते हैं वो इस project में क्या दिखाने वाले हैं, उनका comment है कि this time I would say industry is little apprehensive about what I'm going to show.
5: Right.
6: And he said, but I don't care. Only thing I care about is audience. मैं सिर्फ answerable audience को हूँ, तो audience देखेगी, खुद decide करेगी. लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इंडस्ट्री में ऑलरेडी हलचल मच चुकी है कि ये क्या दिखाने वाले हैं.
5: Fabulous lives of Bollywood wives.
6: Reality of Bollywood wives शायद दिखाने वाले हैं, not just fabulous wives. तो मेरे को लगता है बहुत ही सही मूवी रहेगी ये इनकी.
5: सैंडी एक करेक्शन आया है यहाँ पे. नहीं एक्चुअली नहीं, ये गलत है. यहाँ पे शिवा का मैसेज आया अभी मैं पढ़ रहा हूँ. प्रियंका चोपड़ा और कंगना ने साथ में क्रिश में काम किया था क्या? मेरे को नहीं लगता है. क्रिश में नहीं थी कंगना, कंगना वाज इन काइट्स.
6: नहीं क्रिश में भी थी, तभी तो ऋतिक रोशन के साथ वो. काइट्स में नहीं थी,
5: काइट्स में कंगना थी.
6: काइट्स में कंगना नहीं थी, काइट्स में वो एक्ट्रेस थी.
5: क्रिश में कंगना कहाँ पे थी?
6: आई थिंक क्रिश मूवी में कंगना थी.
5: हैं?
6: या या या. ही इज राइट एक्चुअली. शिवा इज राइट. लेट मी डबल चेक दो.
5: अच्छा मुझे नहीं लगता.
6: क्रिश किस ईयर में आई थी? 2006 में आई थी राइट. प्रियंका चोपड़ा थी ना उसमें.
5: प्रियंका चोपड़ा थी यार, कंगना नहीं थी उसमें मुझे नहीं लगता.
6: उसमें
5: अरे वो काइट्स में थी यार, वहां पे तो बवाल हुआ था पूरा.
6: और नहीं उसमें कंगना नहीं थी.
5: नहीं थी कंगना उसमें.
6: यू आर राइट.
5: एनीवे सो इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय. एनीवे
6: इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अब आपसे मुलाकात हमारी होगी कल.
5: कल मिलेंगे. थर्सडे का दिन है कल. लॉन्ग नाइट क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग नाइट ना.
6: या कईयों के लिए मूवी नाइट.
5: मूवी नाइट भी होती है कई लोगों के. मूवी नाइट की होती है थर्सडे नाइट.
6: काफी मूवीज रिलीज होती है ना थर्सडे को.
5: नहीं फ्राइडे को होती है मूवी रिलीज.
6: यहाँ पे काफी मूवीज थर्सडे को रिलीज होती है
5: यार. वो ही गलत है ना. क्यों फ्राइडे होता है हमेशा ना. फ्राइडे को होना चाहिए रिलीज. एनीवे हम लोग बातें करते रहेंगे. आप एंजॉय कीजिए एंड हैव अ गुड इवनिंग. बाय.

0: sara mera. Oops.
1: Happy hour on Hum.
2: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में है और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
3: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
7: Here you go.
8: Thank you.
9: I reckon we should do some advertising.
8: Great. I like doing advertising.
9: I love doing advertising.
8: What about?
9: Thomason Does Advertising.
8: And what should it say?
9: Thomason Does Advertising.
8: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
9: Nah, keep it simple, I reckon.
10: Thomason Does Advertising.
11: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, slick grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
10: Trade

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
13: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
14: 1 in 3 New Zealanders will get cancer. Support the Cancer Society this Daffodil Day. All money raised helps provide care services and supports research. Daffodil Day supported by the Doctors Medical Centres. Enroll at thedoctors.co.nz.
15: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Good evening with the latest at 8. I'm Alexander Goldsmith. Health Coalition Aotearoa believes to have found common ground between parties at a political panel act. The Greens, Te Pāti Māori and Labour signalled interest in lobbying regulation. Professor Boyd Swinburne says the Opportunity Party is also keen.
17: We're really pleased to see that this is potentially a cross-party set of policies that could be supported.
16: Safety messages are being reiterated after a battery fire at an Auckland recycling truck. Auckland Council says the driver was put at risk and more than 3,000 litres of water was needed to extinguish the flames. It has issued a PSA that batteries should be disposed at a transfer station where possible. Origin Air is on a wing and a prayer that an application for funding will revive its Wellington-Westport route. The last services will fly on Friday before a cabinet meeting on essential air route funding on Monday. It's one of several Origin Air routes between the South Island and Lower North. In sport, All Blacks coach Dave Rennie says several new players will benefit from the experience this morning against the Lions. The second test team to play in Cape Town on Sunday morning is named at 10 o'clock tomorrow night our time.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
15: से ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
18: A very good evening, everyone. Welcome to the show. Night Cafe लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए. Midweek आज है और आज Wednesday है, 26th August है, और ऐसे में अभी से लेकर midnight तक, 8 to midnight, मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और interesting program लेकर आने का पूरा वादा करता हूँ. आज Wednesday है तो आज Bollywood गपशप, Bollywood की मसालेदार खबरें आपके लिए हम लेकर आने के लिए बिल्कुल तैयार है. स्वागत है आपका midweek मसाला में.

बॉलीवुड में मिडवीक मसाला में आपका स्वागत है, जिसमें मसालेदार खबरें आप तक हम लेकर आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम बॉलीवुड। और आपके लिए बॉलीवुड गपशप रहेगा, आपके फेवरेट सितारे इन दिनों क्या कर रहे हैं, कौन से फिल्मों में नजर आएंगे, कौन कौन से फिल्मों को आप आगे चलकर देख पाएंगे, जो बॉक्स ऑफिस अपडेट्स है वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। अजय देवगन ने अनाउंस किया है दृश्यम 3 पर कुछ जानकारी, अवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है, अजीत कुमार ने एक रेसिंग क्रैश को सर्वाइव किया, करीना कपूर रिस्पॉन्स टू प्रेगनेंसी रूमर्स, और साथ में सलमान खान 7 डॉग्स रीचेज इंडिया, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ और समय रहा तो पंकज त्रिपाठी के बारे में जानकारी हमारे पास है, सभी कुछ आपके लिए रहेगा। फिलहाल बैक टू बैक सॉन्ग दो गाने आपको सुनाते हैं, हमारा जो जानकारी का सिलसिला है वो शुरू होगा।

0: मिडवीक मसाला
1: मिडवीक मसाला अब मैं आपका स्वागत है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और म्यूजिक के साथ साथ जानकारी भी आपके लिए रहेगा। बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स हम पेश करते हैं आपके लिए, तो बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। अजय देवगन ने अनाउंस किया है कि दृश्यम 3 कब रिलीज होगा। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि थर्ड एंड फाइनल दृश्यम फिल्म ये बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है दृश्यम द कंक्लूजन। और ही रिटर्न्स एज ए क्लेवर फैमिली मैन, विजय सालगोंकर और तब्बू श्रियान शरण रजत कपूर और प्रकाश राज इस फिल्म में भी रिटर्न होंगे। फिल्म को रिलीज करने का तारीख 2 अक्टूबर 2026 रखा गया है, मतलब अक्टूबर ऑफ दिस ईयर, व्हिच इज अनदर मंथ टू गो, मंथ एंड हाफ टू गो जब हम इस फिल्म को देख पाएंगे। अवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा, इस पर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा।

0: Midweek Masala.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बॉलीवुड की मसालेदार खबरें मिडवीक मसाला में जारी है और स्वागत है आपका. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अवारपन 2 क्रॉसेस 136 करोड़ ऑन बॉक्स ऑफिस. इमरान हाशमी की ये फिल्म है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल रन इनका रहा है और ये सीक्वल ने लगभग 8.75 करोड़ कमाया ऑन इट्स सेकेंड डे और इंडिया का नेट टोटल रीच अप्रॉक्सीमेटली 136.25 करोड़ आफ्टर 10 डेज. और इस फिल्म को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला from steady audiences or positive word of mouth. और 2026 का ये नोटेबल थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में से एक माना गया है. आपको याद होगा कि इमरान हाशमी के पहले के फिल्म भी काफ़ी अच्छे कमाल करते थे. म्यूज़िक अच्छा होता था तो ऑब्वियसली व्हेन ही इज़ मेकिंग हिज कम बैक ऑन अ बिग वे तो इनके जो फैंस है लौट रहे हैं इनको देखने के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम

0: design.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest.

0: वेडनेसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब।
1: बॉलीवुड की मसालेदार खबरें हमारे साथ आज जारी है, जबकि आज वेंसडे है, मिडवीक मसाला लेकर हम आपके लिए ले आते हैं। अजित कुमार जो एक्टर है, ये सीरियस क्रैश में इन्वॉल्व हो चुके थे ड्यूरिंग ए हाई स्पीड एंड्योरेंस रेस जो यूरोप में हो रहा था, और कहा गया कि गाड़ी का नियंत्रण खोने के कारण से ये कोलाइड हुआ विद अनदर व्हीकल, और अजित वॉज कम्पीटिंग इन इंटरनेशनल एंड्योरेंस रेसिंग इवेंट्स, और डिस्पाइट द ड्रामेटिक इवेंट्स इनको सीरियस इंजरीज नहीं हुई है, लेकिन इंसिडेंट से ये हाईलाइट होता है कि रियल रिस्क्स होते हैं बिहाइंड इस प्रोफेशनल पैशन फॉर मोटर स्पोर्ट। अजित सिंह अभी फिलहाल ट्रीटमेंट इनका हो रहा है। करीना कपूर का रिस्पॉन्स क्या रहा है टू प्रेगनेंसी र्यूमर्स, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं दूंगा। क्रिश के साथ है मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है, जिसमें बॉलीवुड खबरें आप तक हम लेकर आते हैं।

मसाला नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सलमान खान इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर सेवन डॉग्स को अब रिलीज कर दिया गया है इन इंडियन थिएटर्स। मोरक्कन बेल्जियन डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म मेकर्स ने सलमान खान के इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा को बहुत प्रेज किया है और दे डिस्क्राइब्ड वर्किंग विद हिम एज बीइंग सिमिलर टू अटेंडिंग ए फिल्म स्कूल। और संजय दत्त का भी एक स्पेशल अपीयरेंस इस एक्शन प्रोजेक्ट में रहा है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और आज मिडवीक मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले घंटे पर मिलते हैं नाइट कैफे में और भी आगे बढ़ते हुए आपके लिए गाने और इन्फॉर्मेशन रहेंगे। क्रिश के साथ है।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट K 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
6: Imagine winning $20 million this Wednesday. Play in store or online.
8: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
1: हम टाइम चेक, हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
12: गुड इवनिंग, फॉर लेटेस्ट एट 9 आई एम अलेक्जेंडर गोल्डस्मिथ। Fire in Emergency is treating a fire that caused 22 homes near Albert Town in central Otago to be evacuated on Saturday night as suspicious. Specialist fire investigators have been on the fire ground this week. Labor's pledge to restore smoke-free generation policies has been described as an extremely welcome development. It was announced at a Health Coalition Aotearoa panel about prevention. Co-chair and Professor Boyd Swinburne is on board.
13: Not only the smoke-free generation, but also the licensing plans for nicotine outlets. I think that'll really be a platform for getting a tobacco endgame.
12: Kiwi country music star Kaylee Bell has been reflecting on the death of icon Dolly Parton, saying she has had a huge influence on her career.
14: Obviously, as a songwriter, I love words, and I've had a lot of her quotes printed off or handwritten in my life, just in my world. You know, like I'll write something down and put it on my mirror.
12: And you can hear the full interview on Rover. In sport, another All Black has been freshly minted in this morning's 41-35 win over the Lions. Prop Sol Mao made his debut off the bench in the come-from-behind victory. An emotional Mao thanked the All Blacks coaches.
15: Giving me a chance to represent my family and my friends in my village back home. Yeah, just hopefully I make them proud.
12: Rugby with All Blacks, travel and hospitality.com.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
16: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका नाइट कैफे में और रात 12 तक ये आपके लिए चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं हमारे पास है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 29th अगस्त टू 4th सितंबर एट द केव 5x57 केवेंडिश ड्राइव मनुकाउ ऑपोजिट वेयर हाउस फ्रॉम 7:30 PM. इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue मनुकाउ सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं श्री जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो 29th to 4th September रहेगा एट रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Avenue मनुकाउ फ्रॉम 7:30 PM. साथ ही में न्यूजीलैंड संगम NZ संगम इज प्लीज टू इनवाइट कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सारी डिवोटीज को जो 28 अगस्त टू 4 सितंबर रहेगा डेको ऑफ एलिगेंस में 16 Lambie Drive मनुकाउ 7:30 PM से ये पूजा शुरू होगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. साथ ही में श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन द्वारा सादर आमंत्रण है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो 29 अगस्त से शुरू होगा और ख़त्म होगा फ्राइडे 4 सितंबर. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशाचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas hai. Very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे? एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाएं और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 FM पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कंपटीशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कंपटीशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रो होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप ज़रूर बनाएं, द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो
4: ये गलत बोल दिया यार
3: और पहनता भी नहीं है उसको
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उससे
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Coca-Cola 330ml cans 30-pack, just $23.99 a pack. And Purina One Dry Cat Food 1.4 to 1.5 kg, just $18.79 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
10: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
11: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits, Raksha Bandhan. के दौरान आप $300 कैश जीत पाएंगे हमारे फेसबुक पेज पर जाए सिबलिंग बॉन्ड्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं देखा जाता है या तोला जाता है इनफैक्ट ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेमोरीज ही हमारे लिए काफ़ी होता है जैसे ओल्ड कैसेट टेप हो या एक शेड की हो स्टोलन टी शर्ट हो शायद रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है हम फेसबुक पेज पर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन दो तीन सेंटेंसेस आप ज़रूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है और टैग योर सिबलिंग ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: If you're doing a rebrand and have multiple stores or offices around the country, you don't have to juggle different signage companies. At Speedy Signs, you deal with one project manager, one point of contact who coordinates everything nationwide. Nearly 30 locally owned Speedy Signs teams handle all the details, from site checks to installation. So you get brand consistency backed by local knowledge. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
2: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening. With the latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. Senior public servants have been found in contempt of Parliament for deliberately misleading MPs about a bungled multi-million dollar IT project. In March, the head of MBIE, Nick Blakely, and the former Immigration NZ chief, Alison MacDonald, were quizzed by MPs about an IT upgrade at Immigration NZ. They failed to disclose it had already been scrapped. Free flu jabs for children are on their way. Pharmac is changing the brands of multiple vaccines. From April next year, two types will be fully funded for kids aged between 6 months and 5 years. Health Coalition Aotearoa is disappointed that two parties were missing from a political panel. Boyd Swinburne says National and New Zealand First chose not to attend. He had been hoping for a robust discussion about prevention.
5: Polls had come out around public support for prevention measures to take the pressure off the hospitals is really strong, and so for parties to ignore that is crazy.
4: In sport, Aaron Routliffe has lost to two of the biggest names in world tennis at the US Open. The New Zealander and her British partner lost in straight sets to Serena Williams and Carlos Alcaraz in the first round of the mixed doubles. Routliffe's focus now shifts to next week's women's doubles.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Playing Bollywood's biggest hits.
6: Put your head to Gandhi.
3: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
7: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है। डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट। हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज किबरी, या फिर वॉट एग्जैक्टली इज एन ईसिम। इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे। डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर दी क्वेश्चंस। अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। 4 सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे। इमेजिन कीजिए, $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है। सो वी वांट टू नो, इज़ योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स, या फिर इज ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं। डैड को कहिए कि वो हम सुनते रहे और गेट हिम टू आंसर क्वेश्चन और वो $500 रिचा हो सकते हैं दिस फादर्स डे। ड्रॉ 4 सितंबर को होगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
7: Night Cafe. You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Unfiltered Drive podcast sunna na bhule, kyunki bahut interesting conversation yahan par hoga. Yuvraj Singh ke saath mein, from classroom to company, young entrepreneurs exploring New Zealand. Ye topic par baatein hogi. Kya hota hai jab a group of secondary school students decide karte hain to turn an idea into a real business? वो मैजिक होता है और यही युवराज सिंह, अ मेंबर ऑफ एक्सप्लोर, ये बताएंगे. एक स्टूडेंट रन बिजनेस है, टेकिंग पार्ट इन न्यूजीलैंड यंग एंटरप्राइज स्कीम, यस इनको कहा जाता है. एक्सप्लोर को क्रिएट किया गया था एज एन इनोवेटिव कार्ड गेम जो इनकरेज करेंगे टूरिस्ट और लोकल्स को कि वे डिस्कवर करें न्यूजीलैंड हिडन जेम और लेसन नोवन डेस्टिनेशन. थ्रू द गेम प्लेयर्स लर्न अबाउट स्टोरीज, कल्चर और अट्रैक्शंस जो इन जगहों को बहुत यूनिक बनाता है और जो यूजुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के से हटकर इन डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले. फ्रॉम कमिंग अप विद द आइडिया टू अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स और कैसे ये प्रोडक्ट को बिल्ड किया गया और कैसे ये कॉम्पीट कर रहे हैं इन, येस ये एपिसोड में आप सुनेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा है ऑफ ए न्यू जनरेशन कीवी बिजनेस माइंड्स, जो ये बात प्रूव करता है कि आपको अडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल. आप इस उम्र में भी ये कर दिखा सकते हैं. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर ए फुल ऑडियो और सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़बे ऑन रोवा और स्पॉटिफाई, और ये पॉडकास्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Pyare pyare gaane is ghante par bhi lekar aayenge. Ye hamara final hour hai of Night Cafe. 12 tak ye chalta rahega. Is ghante par back-to-back songs 30 minutes ke liye main lekar aaya hoon aapke liye. Amazing track hai Vishal Mishra. Nacha ke bhi aap sunenge, Arijit Singh, Tera Hoke Rahenge, Kumar Sanuwal ka Yagnik Pass, wo aane lage, Zara Zara, aur Hema Sardesai ki awaaz mein Dil Dil Dil. Aur bhi aise bahut gaane hai. Tujh Sang Lagi, KK, MM Cream Co. सुन पाएंगे, वन ऑफ सच अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो आप सुनेंगे. तो चलो ये गाने आपको सुनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रमोशंस जारी है जिस पर जानकारी इसी घंटे पर मैं आपको दूंगा. क्रिश के साथ है, वेलकम बैक.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू। आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं। थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल। आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे। रिव्यू में आप उनको इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ़ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7। आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रॉ में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है। टू लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा। 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: कैफे ऑन हम।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
6: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true.
8: Kogan Mobile. True Aussie value.
7: Terms and conditions apply.

0: कैफे ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। हम पर बॉलीवुड्स के बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हिट और हॉट गाने हर किसी को पसंद है, और ऐसे ही गाने के बाद एक आपके लिए पेश होता है। 26th August है, बिफोर द नाइट इज ओवर। हैप्पी बर्थडे जितने लोगों का जन्मदिन है। ऑनलाइन लिसनर्स आपको याद करते हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स आपको भी शामिल करते हैं। लगे हाथ ऊबर ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स आप हमेशा हमारा साथ देते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, वहाँ पर भी हम की गूंज चल रही है। स्वागत है आपका, सुनते रहो हम, मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ।

0: आए हाय।
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। हमारी मुलाकात होती है कल थर्सडे नाइट को, हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए अमेजिंग सॉन्ग्स और अमेजिंग ट्रैक्स, ये भी हमारे साथ होगा कल। रिदम एंड रोमांस रहेगा, रोमांटिक गानों का एक बहुत ही प्यारा जो टाइम हमारे साथ होगा। तो कल मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, कृष का बहुत सारा प्यार।

विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
8: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
10: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
11: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे। कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
0: Night Fly.

पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
2: Choice आपकी है at Winger Motors. Selected नए Omuda और JQ models पर पाइए 3.9% finance या $2,000 cashback. Premium design, technology और जबरदस्त value. Super hybrid system.

0: एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नीयत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ!
0: लिपट गई आके नशे में,

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Budget gaane.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ओ वेलकम है जी अपना ही गैराज है ट्रक्का वाला गीत है जी

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Amsterdam AM.
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
6: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with Q-Card. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, C's, fees and credit criteria apply.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: सिंह को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love, and Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.

0: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
1: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Hey, नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन-साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन-साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
4: Indelible Homes, your building expert.

0: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
1: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजीला लाल के पति यानी नावा फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कविनय लाल को 02105343177 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे, स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजीला लाल के पति यानी नावा फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कविनय को 02105343177 पर कॉल कर सकते हैं।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर, वेयर लर्निंग इज फन। कॉल 0800 462626।
3: 11 डिग्री टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं, आज कहा है 18, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्रीज। सुबह के वक्त फोगी कंडीशंस रहेंगे, बाद में बादल छाए रहेंगे, हो सकता है कुछ हल्की बारिश भी हो। सनसेट या सनराइज 6:48 AM पर, सनसेट 5:57 PM पर होगा।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 10 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर इस समय हमारे स्टूडियोज में और आज है थर्सडे 27th of August। आज की सुबह खास आप सभी के नाम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आपको।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो आपको। आज थर्सडे है, 27 अगस्त की ये सुबह, आज का ये मंगल प्रभात आप सभी को अनेक बार शुभ और मंगल में हो।
1: चलिए आज की सुबह की शुरुआत ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कैचअप में ऑफ कोर्स, जबकि हम शुरू कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, तो डेफिनेटली आपको पता है कैचअप तो करते रहेंगे आपके साथ, जहां पर खबरों के मामले में क्या कुछ हो रहा है, विल टॉक अबाउट दैट नो डाउट। बट ऑन द अदर हैंड आपके लिए आज की सनी साइड अप स्टोरी, आज की जो सबसे पॉजिटिव ब्यूटीफुल स्टोरी है, ये भी हम शेयर करेंगे इन अ वाइल, जिसके लिए बस आपका इंतजार है कि हमारे साथ आप जुड़े रहें और ये आपके लिए हम लेकर आए। एंड नॉट जस्ट दैट, आज थर्सडे है तो प्रोग्राम में आगे चलकर भी काफी कुछ आपके लिए रहेगा। विल ट्राई एंड कीप इट एज इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग फॉर यू एट द सेम टाइम, ताकि आप भी हमारे साथ बने रहे और आज की सुबह का और सफर का मजा जो है ये उठाए। तो 104.2 FM पर आप कहीं पर भी फिलहाल हमें सुन रहे हैं ऑकलैंड या फिर आउट ऑफ ऑकलैंड, आउट ऑफ न्यूजीलैंड, रोवा ऐप के जरिए हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ चुके हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
6: हे देखो हम आ गए।
7: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
8: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
7: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
8: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
7: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
9: Mike here from Novus Glass. Got squeaking wipers? There's nothing more frustrating, and it's not safe. Novus All-in-One Wiper Kits are now available online. These are the best wipers you will ever buy, and are quick and easy to install. There's no more of this, so you can focus on the road. So as soon as you notice it, Novus it. Visit novus.co.nz or drop into your local branch.
10: Ah, Novus.
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
12: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
13: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
2: The beat of Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Sunny side up.
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये है तो काफ़ी पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल एंड एनकरेजिंग लेकिन बहुत ही इमोशनल और ये जो स्टोरी है व्हेन आई रेड इट आई एक्चुअली फेल्ट वेरी बैड बट देन जब मैंने इसकी पूरी की पूरी यू नो बात समझी कि ये जो स्टोरी है इसके पीछे की कहानी जो है ये क्या है एंड व्हाट वाज द इंटेंशन देन आई वाज एट पीस कहीं ना कहीं एंड आई थॉट आज आई नो कि सुबह सुबह हम ज़्यादा इमोशनल हैवी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते हैं बट स्टिल आई थॉट लाइक कि ओके लेट्स शेयर दिस सनी साइड अप स्टोरी और इसके बारे में बातें जो है ज़रूर करें ताकि कुछ सीख हम भी लाइफ में हासिल कर सकें ना एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम चाइना चाइना में रेन जुन जो है जो एक 15 साल का स्टूडेंट है जो यूलोंग मिडिल स्कूल शिनशुआ में पढ़ता था और इनके कहानी जो है ये अगर हम देखें तो 2019 में सामने आई अपेरेंटली ये कहानी इतनी ब्यूटीफुल है कि 2019 में ये हुआ और इसके बाद में चलकर वी कैन से कि आज भी इसके बारे में काफ़ी बातचीत जो है ये होती है तो अपेरेंटली ये कहा गया है कि जब यूलोंग मिडिल स्कूल का ग्रेजुएशन टाइम आया और क्लास फोटोज जो है ये लेने की बारी आई तो अनफॉर्चुनेटली रेन जुन जुआ जो है इनकी फ़ोटो जो है ये नहीं ली जा सकती थी बिकॉज ही वॉज एडमिटेड एट द हॉस्पिटल जहाँ पर ये कैंसर जैसी बीमारी से फाइट कर रहे थे और उस वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी क्लास फोटो से बाहर हो जाते बिकॉज ही वॉज नॉट He would not have been able to be part of the photo shoot जो इनके स्कूल में होने को था लेकिन जब इनके क्लासमेट्स और इनके टीचर्स को ये सारी बातें पता चली कि यू नो ही इज़ फाइटिंग विद कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली वो एडमिटेड रहेंगे एंड ही वॉन्ट बी एबल टू बी पार्ट ऑफ दिस क्लास फोटो तो सब ने डिसाइड किया दैट वो ऑलमोस्ट 2 kilometers का जो डिस्टेंस था फ्रॉम देयर स्कूल टू द हॉस्पिटल वेयर रेन जो है ये एडमिटेड थे इन्होंने वो 2 kilometers का डिस्टेंस तय किया 50 क्लासमेट्स एंड द टीचर्स वेंट टू द हॉस्पिटल जहाँ पर इन्होंने रेन को उनके स्कूल यूनिफॉर्म में डाला और हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में हॉस्पिटल बेड पर ही ये थे विद हिज ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग इनके साथ पूरी की पूरी क्लास ने जो फोटो है ये ली दिस एक्चुअली शोड द फैक्ट कि जब हम कहते हैं ना कि इट्स अ थॉटफुल जेस्चर बिकॉज यू डोंट वांट एनीवन टू बी इन दैट सिचुएशन कि उनको ऐसी फीलिंग आई दैट दे हैव बीन मिस्ड आउट उनको इंक्लूड नहीं किया गया तो वही इस मामले में भी हुआ रेन फेल्ट एब्सोल्युटली लव्ड ही फेल्ट एब्सोल्युटली ब्लेस्ड कि उनके क्लास के टीचर्स ने और बच्चों ने 2 kilometers का डिस्टेंस तय करते हुए वहाँ पर वो पहुँचे एंड दे डिसाइडेड टू गेट द फोटो डन विद हिम क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकते थे टू गेट द फोटो डन एंड दैट पर्टिकुलर फोटो इन दैट ईयर इट वेंट वायरल फिर मैंने बाद में जाकर इनके बारे में पता करने की भी कोशिश की अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू डेज आई थिंक रेन जो है इनकी मृत्यु हो गई ही लॉस्ट हिज बैटल टू कैंसर पर ये फोटो आज भी सभी बच्चों के लिए बहुत मेमोरेबल है हु वर पार्ट ऑफ दैट फोटो इन दैट ईयर जब इन्होंने ये फोटो जो है ये ली थी
3: Yeah, exactly. It must be so special for each and every one of them.
1: Yeah. And they felt good about the fact ki, you know, unhone wo faisla kiya. Agar wo nahin jaate, तो शायद रेन के साथ उनकी क्लास फोटो कभी नहीं होती, बट व्हेन दे मेड द डिसीजन एंड दे वर देयर, तो डेफिनेटली एक ऐसी मेमोरी उन्होंने कैप्चर की है जो लाइफ लॉन्ग वो चेरिश करने वाले हैं। तो आज की सनी साइड अप स्टोरी, उम्मीद है कि इससे कुछ सबक जो है हम सभी को मिले, और इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे।
2: Hollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
16: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: तो मिर्जापुर द मूवी जो आने वाली है बहुत ही जल्द, और उसका ये बहुत ही खूबसूरत गाना इट्स ट्रेंडिंग लाइक क्रेजी रूमी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। लेट्स एंजॉय आज का बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड द फर्स्ट वन फॉर द शो।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Global Headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में चाइना और नेपाल में आए कैटास्ट्रोफिक बाढ़ के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई विदेशी टूरिस्ट समेत सैकड़ों लोग लापता हैं। नेपाल में कम से कम 157 लोगों की मौत हुई है, जहां बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं, जबकि चाइना के गिरोंग पोर्ट पर मडस्लाइड के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऑल आउट सर्च ऑपरेशन के आदेश दिए हैं। उधर कैलाश मानसरोवर के 133 भारतीय नागरिक जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, उनके साथ कई लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। नेपाल की टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक डिजास्टर के बाद 341 विदेशियों समेत कुल 403 टूरिस्ट का कोई पता नहीं चल पा रहा है, जिसमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। नेपाली प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह ने रिलीफ वर्क के लिए पूरी सरकारी मदद का ऐलान किया है और नेपाली रेस्क्यूअर्स मलबे के नीचे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। फिजी में नांदी में एक टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले और लूट के मामले में चार और आरोपी अब पुलिस की हिरासत में हैं। इस लूटमारी की कड़ी निंदा कल संसद में भी की गई थी। इस मामले की छानबीन फिलहाल की जा रही है। EFL कप के कुछ मैचेस आज सुबह खेले जाएंगे। अभी से तकरीबन 15 मिनटों बाद न्यूकासल और वेस्ट ब्रॉम का मैच होगा, जबकि ब्रेडफोर्ड सिटी बर्नली का सामना करेगा। और आज एक और मैच में टॉटनम हॉटस्पर्स चार्ल्टन से खेलेगा। सुबह 7 बजे प्रेस्टन और एवर्टन का मैच खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Switch to AMI car insurance.
6: Mostly cloudy today, some fog this morning, a high of 18. That fog has got restrictions at the airport, but no major delays or cancellations so far. Driving looking okay, northern 20 minutes in from Constellation Drive, slow Greville to Glenfield and at Esmond. Northwestern, slowing Greylin to the city, 20 minutes in from Massey is fine. And southern 24, Manukau to town, slow Papakura to Papatoetoe.
5: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
9: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes. Your

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: फिलहाल 30 मिनट हो रहे हैं इस समय हमारी स्टूडियोज में 6 बजकर और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज है थर्सडे 27th ऑफ सितंबर, सो इट मींस कि अगर आज आपका स्पेशल डे है, शादी की सालगिरह है या फिर आज आपका बर्थडे है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं 5599 पर मैसेज करते हुए, क्योंकि अगले घंटे हम आपको याद भी करेंगे और आपको विश भी करेंगे.
3: तो समय से पहले अपने मैसेजेस हमारे पास आप ज़रूर भेज दें. वैसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो हैं ये भी आप हमें भेजते हैं, सुबह हमें याद करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच. आपको हम कहना चाहेंगे बॉबी मान जी हैं साथ में, मिस्टर मटामटा, राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मैंडी जिम जा रही थी सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, आपको भी ये सुबह मुबारक हो. और विनीता जी आपको भी इस दिन और इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं.
2: थैंक यू सो मच. एक तो सुबह समय निकाल कर हमें याद करने के लिए और साथ में हर सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. यू नो वी माइट बी the only people जब हम आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए तो बिन कहे या बिन मांगे लोग हमें याद करते हुए हमको सुबह सुबह मैसेजेस भेजते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, एंड इट रियली फील्स वेरी स्पेशल. वी फील लाइक कि वी आर द स्पेशल वंस, क्योंकि आप ऐसा करते हैं हर सुबह विदाउट अ मिस. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. फिलहाल चलिए बारी है आज की मूवी ऑफ द डे जो है ये पहचानने की. और आज की मूवी ऑफ द डे We'll go back to the same method जहाँ पर आपको हम कुछ एक्टर्स के नाम बताएंगे और उसके हिसाब से आपको जो मूवी ऑफ द डे के गेस करना होगा. आज दो नाम एक साथ बताएंगे, फिर उसके बाद दो नाम एक साथ बताएंगे. सो द टू नेम्स दैट यू हैव टू फिगर आउट, जिसके बदौलत आपको बतानी होगी कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है. आफ्ताब शिवदासनी और शिवदासनी, हाउ डू यू से हिज नेम,
3: शिवदासनी,
2: शिवदासनी, ओके. एंड परेश रावल, ये दो नाम है आज के हमारे. आफ्ताब या आफ्ताब शिवदासनी एंड परेश रावल, ये दो नाम हैं. और देखते हैं इन दो नामों के जरिए क्या आप पहले ही ट्राई में अनुमान लगा लेते हैं कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी है. और अपना जवाब अगर आप हमारे पास भेजना चाहें 5599 पर तो जल्दी से अपने नाम के साथ आप सेंड कर सकते हैं. आप क्या कीजिए, बी सी लिखे, बी सी, और उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम और 5599 पर आप हमें भेज दीजिए. और देखते हैं हु विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट ट्राई में ही आज की मूवी ऑफ द डे जो की पहचान ले. अगर जो कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया या कुछ ज़्यादा गलत आंसर्स आए या आंसर्स आए ही नहीं, तो फिर मैं बाकी के दो नाम रिवील करूँगी, विच विल डेफिनेटली मेक इट ईजियर. बट लेट्स सी, आफ्ताब शिवदासनी एंड परेश रावल, कोई फिल्म आपके जहन में आ रही हो इन दो नामों से?
3: नहीं, आप आफ्ताब बता रही है, मेरे दिमाग में अक्षय खन्ना घूम रहे हैं.
2: क्यों, लेकिन इतना लाइक दे आर पोल्स अपार्ट.
3: हाँ, आई डोंट नो फॉर सम ओड रीजन, वो मेरे बाप की शादी समथिंग, कोई ऐसी कोई फिल्म आई थी ना,
2: मेरे बाप पहले आप,
3: मेरे बाप पहले आप. हाँ, मेरे
2: उसमें जेनिला डिसूजा थी.
3: अरे भाई, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि
2: वो फिल्म आपके जहन में आ रही है.
3: हाँ.
2: अच्छा, हाँ नहीं, बट वो फिल्म नहीं है आज की मूवी ऑफ द डे. तन्हा इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारे पास मैसेज किया है. तन्हा का जवाब आ चुका है, सही है या गलत थोड़ी देर बाद जरूर बताएंगे. लेकिन आफ्ताब शिवदासनी एंड परेश रावल, आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी फिल्म हो सकती है? बी सी स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर भेजे. लेट्स सी क्या कोई आज पहचान पाता है.
4: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
2: वैसे याद दिला दे, आज थर्सडे है, कल 28th ऑफ अगस्त फ्राइडे है और कल ड्रो होगा हमारे रक्षाबंधन प्रमोशन का.
3: हाँ, जिसमें बहुत सारे इनाम है, सोशल मीडिया पोस्ट जो है उसके ज़रिए इनाम आप जीत सकते हैं. और अगर लाइव ऑन आकर अपने सिबलिंग का आपने रिव्यू अभी तक कर दिया है तो आपका नाम तो ड्रो में चला ही गया होगा, और अगर नहीं तो आज भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फाइनल आपको मिलने वाली हैं.
2: बिल्कुल, तो जैसे ये मौके हम आपको दें, प्लीज़ बी स्मार्ट इनफ टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लॉट्स ऑफ कैश जीतने का मौका है आपके पास.

0: वैसे पैदाइश तो नाम जो इनकी कह सकते हैं हुई थी एज आशुतोष गांगुली, लेकिन ही इज बेटर नोन एज एश किंग, इस नाम से ये ज्यादा जाने जाते हैं। इज अ ब्रिटिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर, और इन्होंने अपनी प्लेबैक सिंगिंग की जो करियर की डेब्यू है ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 से की थी।
1: अच्छा,
0: और इनको दरअसल सबसे फेवरेट इनके सिंगर भी हैं और इनके रिलेटिव भी हैं कहीं ना कहीं, एंड ही इज नन अदर देन किशोर कुमार, जिनको ये काफ़ी पसंद करते हैं और रिश्तेदार हैं उनके। बट आशुतोष गांगुली बेटर नोन एज एश किंग एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ों में दम मारो दम 2011 में ये फिल्म आई थी, उसका ये गाना आज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे। टियामो का मतलब पता है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं आती, कौन सी भाषा है वो?
0: वो तो अभी पता चल ही जाएगा, बट आई एम लाइक कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं जो गानों के जरिए रहता, एंड वी आर लाइक कंफ्यूज्ड कि क्या मतलब क्या हो सकता है इसका, बट डू वी एक्चुअली गो एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड?
1: नहीं, मैं तो नहीं ढूंढता।
0: तो टियामो स्पेशली इसका मतलब होता है आई लव यू इन स्पेनिश।
1: अच्छा,
0: स्पेनिश भाषा है ये, एक शब्द स्पेनिश का और बाकी सारे हिंदी वर्ड्स मिलाकर इतना खूबसूरत गाना बन गया ना। इमेजिन,
1: ब्यूटीफुल,
0: राइट। सो समय की ओर देखें, इट्स 19 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 फॉर नाउ, और हमने बोला था बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस्ट करने के लिए,
1: और तो आपने कहा था तन्हा ने सबसे पहले अपना जवाब भेजा था। हरमिलाप हैं, प्रीतेश हैं, रोजलिन हैं, कैरल हैं, अश्मित सनीवेल से, और दिवनेश, इन्होंने भी अपना जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है।
0: बॉबी मान जी का भी आंसर जो है ये आया है। कमाल की बात ये है, विच आई थॉट विल हैपन विद दिस पर्टिकुलर क्लू, इज कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होकर हो सकते हैं, और शायद ज्यादातर लोग ये जवाब देंगे विच इज आवारा पागल दीवाना, एंड दैट इज द नेम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेंट इन, आवारा पागल दीवाना, क्योंकि इस फिल्म में आफ्ताब शिवदासनी और परेश रावल जो है इन दोनों ने एक साथ काम किया था एज फादर इन लो एंड सन इन लो, और ये ज़्यादातर स्क्रीन टाइम जो है इन दोनों ने शेयर किया था। बट आज की मूवी ऑफ द डे इज नॉट आवारा पागल दीवाना, और दो नाम और मैं रिवील कर देती हूँ टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। आपको याद है जब मैंने ये दो नाम बताए थे, आपने बोला पता नहीं क्यों आफ्ताब का नाम सुनकर मेरे जहन में कोई एक नाम आ रहा है, वट वॉज द नेम?
1: अक्षय खन्ना।
0: यस, सो दैट्स अनदर नेम।
1: अच्छा, अक्षय खन्ना भी है इस फिल्म में,
0: अलोंग विद रिमी सेन, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ। आफ्ताब शिवदासनी, परेश रावल, अक्षय खन्ना एंड रिमी सेन, ये जो फिल्म है ना, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज टू वॉच। अगर कभी कुछ देखने के लिए आपके पास ना हो एंड यू वांट टू एंजॉय वॉचिंग समथिंग ऑन स्क्रीन, वॉच दिस पर्टिकुलर मूवी। लेकिन क्या आपको पता चला कौन सी मूवी है ये?
1: मुझे तो बड़ी आसानी से पता नहीं चला है,
0: बिकॉज यू माइट हैव सीन द मूवी बट यू डोंट रिमेम्बर। लेकिन ये फिल्म जो है ना आइकॉनिक है, आई वुड से। लेट्स सी, क्या अब आपके लिए जवाब पहचानना या मूवी ऑफ द डे पहचानना आसान हो गया है या नहीं? अगर इजी हो चुका है तो जल्दी से अपना आंसर हमारे पास अब सेंड करो, और BC लिखो सबसे पहले, फिर अपना आंसर और नाम और 5599 पर भेज दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्या किसी का सही जवाब आता है या नहीं। सो आफ्ताब शिवदासनी, परेश रावल एंड अक्षय खन्ना प्लस रिमी सेन, ये चार नाम है आज के हमारे, इनके जरिए आपको कौन सी फिल्म याद आती है, जल्दी से अपना जवाब हमारे पास आप भेज सकते हैं।
1: तो देखेंगे आज, वैसे 27th ऑफ अगस्त, टुडे इज क्रेब सूप डे।
0: ओके, आई डोंट लाइक क्रेब सूप।
1: हैव यू एवर ईटन क्रेब सूप?
0: नहीं, आई प्रेफर क्रेब करी बट नॉट द सूप दो।
1: हाँ, करी में भी आप सूप कर सकते हैं।
0: नहीं, बट वो जो करी वाला टाइप होता है वही चाहिए मेरे को।
1: हाँ हाँ, उसमें हाँ। उसमें
0: अब आपने बोल दिया, अब ऐसे दिल कर रहा है क्रेब्स खाने का।
1: आज इंटरनेशनल लॉटरी डे है।
0: ओके,
1: ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसके अलावा आज आई थिंक ग्रेट ब्रिटेन में बर्गर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलीवुड में या इंडिया में अगर देखें, आज ही के दिन कई मशहूर लोगों का जन्म जो है ये हुआ था, जिनमें शामिल हैं जिम सार्ब।
0: ओह, आई लव हिम मैन।
1: और उसके अलावा शिवानी डांडेकर, ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1972 में आज ही के दिन जन्म हुआ था नेहा धूपिया का।
0: ओह वाओ,
1: हाँ, फिल्मों में इनका तो एकदम अलग ही रूप था, लेकिन जब से वो एक टीवी सीरीज है ना, 3 मेंटोस होते हैं, हाँ, उसमें जब मैंने इनको देखा,
0: टोटली डिफरेंट या
1: हाँ, ये
0: बट दैट इज द रियल नेहा जो रोडीज में देखने को मिलती है।
1: ओह, वेरी हार्ड टू हैंडल।
0: हां, दैट्स अ पर्सनालिटी, दैट्स गुड, दैट्स हाउ यू सपोज टू बी आजकल की दुनिया में। इफ यू आर, व्हाई डू यू वांट टू हैंडल हर बाय द वे?
1: I don't want to handle. I mean, जिस तरह से जन नेचर उनका.
0: So that's good. Then that's how you're supposed to be. अगर आप बहुत
1: not necessarily you have to you be have like to it. नहीं नहीं.
0: अगर आप easy to handle रहेंगे.
1: नहीं मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ कि ऐसे किसी एक person को handle करना मेरे लिए difficult होगा क्योंकि बात-बात पे झगड़ा करती है. ऐसा नहीं कि और बाकी जो लीडर्स हो सम जो है वो झगड़ा नहीं करते हैं बट मुझे तो वैसे भी रूडीज पसंद नहीं है. सो नेहा धूपिया आज और दिस पर्सन जो और अपना बर्थडे मना रहे हैं इनको भी हैंडल करना बहुत हम जैसे लोगों के लिए तो नामुमकिन है.
0: प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप क्यों लोगों को हैंडल करना चाहते हैं?
1: क्योंकि इनका नाम है द ग्रेट खली.
0: इनको हैंडल करके दिखाओ आप. सोचो इमेजिन करो कि आप
1: नहीं चटनी
0: आप ऐसा करना चाहते हैं. चटनी क्या चटनी?
1: चटनी बना देंगे चटनी.
0: वेरी ट्रू. तो आज इनका भी बर्थडे है. वेरी नाइस यार. तो इनके साथ अगर आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वी विल डेफिनेटली विश यू अगले घंटे क्योंकि दैट्स द टाइम जहां पर हम आपको आराम से समय लेकर विश करेंगे. सो मेक श्योर अपनी ग्रीटिंग्स आप सेंड कर दें हमारे पास. एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू शेयर?
1: हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं.
0: अच्छा थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का जो सोशल मीडिया प्रमोशन हमारा इसमें आप कैसे पार्ट ले सकते हैं एंड बदले में $300 जीत सकते हैं. एंड वी गोना टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी यू नो क्या बोलते हैं इन डेप्थ क्योंकि ये ड्रॉ कल होगा एंड वी डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस. सो स्टे ट्यून फॉर दैट.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ. Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: हम accurate traffic.
6: Need a mortgage? Get Buddy.
7: A high of 18, cloudy today and some fog this morning. Fog restrictions in it to the airport, but we don't see major cancellations or delays so far. If you're driving Southern Motorway, 28 minutes Manukau to town, slow Papakura to Papatoetoe, then Princes Street to Mount Wellington. Northwestern, 24 in from Massey, slow at Te Aratu and Grey Lynn to the city. Northern, 20 in from Constellation, heavy there to Sunnynook, then slow to Glenfield.
6: Expert mortgage advice without the stress. Whatever your property plans, start with Buddy Mortgages.
8: Father's Day bus aane hi wala hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
9: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
10: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
11: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: अभी 11 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. रक्षाबंधन ये कल सेलिब्रेट किया जाएगा और ऐसे में अगर आपको $300 कैश जीतना है तो भाई आपके और आपके भाई या बहन के बीच कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही स्पेशल है. वो एक तोहफा जो शायद आपने एक दूसरे को दिया था या फिर कोई एक चीज़ जो आपके मम्मी पापा ने बचपन में आपको खरीद कर दी थी. कोई टॉय, कोई खिलौना, कुछ भी हो सकता है जो आपने बहुत संजोकर बहुत संभाल कर रखा है. अब वक्त है कि उस चीज की फोटो जो है आप हमारे फेसबुक पेज पर शेयर करें और उसके पीछे 2-3 लाइन की एक कहानी जो है ये आप हमें बता दें. 2-3 सेंटेंसेस आर गुड इनफ और अपने भाई या बहन को टैग कर दें. इतना करेंगे आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो होगा हम सभी के पास जो हम भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है.
0: बिल्कुल. और अभी तक जैसे कि हमने आपसे शेयर भी किया था दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड डिफरेंट थिंग्स. सारिका जो है इन्होंने जाकर शेयर किया है और एक नेकलेस जिस पर सिस्टा लिखा हुआ है ऑन द पेंडेंट. तो हाँ. ये इसकी फोटो इन्होंने शेयर की है. अपने भाई को इन्होंने टैग किया है. और कल हमने आपको बताया था ना कुछ लोगों ने घड़ियाँ, हैम्पर्स, शर्ट और बेल्ट ऐसी ऐसी चीज़ों की जो फोटो ये शेयर की है. बट दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन बाई मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो सबसे ज़रूरी है. एंड ऑन द अदर हैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एटलीस्ट दे हैव पार्टिसिपेटेड और $300 कैश जो है ये जीतने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना. बिकॉज अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे एंड देन यू लाइक कि अरे जीतना था पर क्या करें, तो बिना ट्राई किए कैसे जीतोगे. इसीलिए आज रिमाइंड करा रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि कल ड्रॉ हो जाएगा. टुमारो इज रक्षाबंधन और कल ड्रॉ हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप अपनी एंट्रीज आज रजिस्टर कर लें. कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास दैट इज गॉट अ स्पेशल मेमोरी इन बिटवीन यू एंड योर ब्रदर और योर सिस्टर, अपने सिबलिंग के साथ आप शेयर करते हैं तो उसकी फोटो जो है जरूर फेसबुक पर डालें कमेंट सेक्शन में हमारे इस रक्षाबंधन पोस्ट में. और उसके बाद 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करें क्यों स्पेशल है आपके लिए और अपने सिबलिंग को टैग कर दें. बस इतना ही आपको करना है.
1: सारिका की स्टोरी जो है ये मैं पढ़ रहा था
0: जी.
1: ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड थैंक यू सो मच सारिका जी अपनी जो ऑब्जेक्ट की फोटो है ये शेयर करने के लिए. सो इतना ही आपको करना है. आपके पास भी कोई एक चीज़ है जो आपके और आपकी बहन के लिए या भाई के लिए बहुत ही स्पेशल है, उसकी फोटो आपको हमारे फेसबुक पेज पर जाकर शेयर करनी है कॉम्पिटिशन पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में.
0: राइट. फिलहाल मूवी ऑफ द डे गेस्ट करने के लिए प्रीतेश, विधि, फिजा, साथ में कुछ लोगों ने अपने आंसर भेजे, नाम नहीं लिखा है. तन्हा ने एक बार फिर कोशिश की है. फंगपुरोवा से सल्लू का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सल्लू एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज. सनी है, साथ में नितिका है, राकेश है, क्राइस्टचर्च से सुबह सुबह रैश का मैसेज आया है, साथ में पपकुरा से अविनाश है और विमलेश एंड प्रिया अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए. तो आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपके लिए जो हम लेकर आ रहे हैं ये 2003 में फिल्म आई थी. प्रिया दर्शन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी. नीरज बोरा ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे और द फिल्म इज हंगामा. सो हंगामा मूवी अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. इट्स एन अमेजिंग फिल्म टू वॉच. और इस फिल्म का ये गाना शान और साधना सरगम की आवाज़ों में आपके लिए लेकर आ रही हूं. क्या आपको पता है कि ये जो गाना है इसकी कहानी ये है कि इसी गाने का एक और एक वर्जन है. दिस इज द हैप्पी वर्जन.
1: एक एस बाला सुब्रमण्यम ने गाया.
0: हाँ, बट वो फुटपाथ फिल्म के लिए. फॉर अ डिफरेंट मूवी बट द सेम सॉन्ग डिफरेंट वर्जन.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम ज्यादातर कहा गया है मॉर्निंग फोग हम एक्सपीरियंस करेंगे अलग अलग इलाकों में, बाद में चलकर बादल छाए रहेंगे। चांसेस ऑफ शावर्स भी आज बताए जा रहे हैं। सनसेट होगा 5:57 PM पर। राइट नाउ टेम्परेचर 11.5 डिग्रीज है, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड लेटर टुडे, एंड ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर आज रहने वाला है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
4: तीन मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस घंटे भी तमाम चीज़ों के बारे में बातें जो हैं ये तो होंगी ही, लेकिन सबसे पहले स्विट्जरलैंड का एक बंदा है, ये बाली गया था घूमने के लिए और उसे 1 साल की जेल की सजा दे दी गई है।
1: घूमने के लिए?
4: हाँ, घूमने के लिए नहीं, वहाँ गया था तो मार्च में ये गया था और अभी आई थिंक 4-5 डेज पहले ही ये खबर आई है। और एक आइलैंड पर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उन पर चार्जेस जो है ये लगाए गए और उनको अदालत में भी पेश किया गया। लूसियन एड्रिन इनका नाम है, इन्होंने अपना एक वीडियो जो है ये पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। एक खाली बीच पर वो चल रहे थे और उसने सीन को बताया क्रेजी। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडोनेशिया का जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस लॉ है उसको उन्होंने वायलेट कर दिया था।
1: कैसे?
4: कोई सीक्रेट ओकेजन था आई थिंक उस आइलैंड का, किसी को शायद बाहर नहीं जाना था उस टाइम पर, एंड ये साहब निकल गए घूमने के लिए। और जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो बड़ा हंगामा हुआ और वहाँ पर नेपी कोई फेस्टिवल है उसकी छुट्टी थी और ये बाहर निकल गए थे एंड लोगों ने मांग की कि उसको अरेस्ट किया जाए। व्हाट द डिफेंडेंट डिड ऑफेंडेड द बेलिनीज पीपल, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा और जज जो है उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ द सेंटेंस को बताया ये, और इसके लिए डिफेंडेंट को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहना होगा। नेपी क्या होता है आपको बताएं, इसको जाना जाता है एज द डे ऑफ साइलेंस।
1: डे ऑफ साइलेंस,
4: हाँ, वहां पर
1: okay.
4: नेपी एक सेक्रेट हिंदू हॉलीडे है।
1: अच्छा
4: मैंने तो कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। और बेलिनीज न्यू ईयर के मौके पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है जो टिपिकली मार्च महीने में होता है। हॉलीडे जो है इज ऑब्जर्व्ड ऑन द मेन आइलैंड ऑफ बाली और साथ में आसपास के छोटे आइलैंड्स पर। नेपी जो है 24 घंटों के लिए होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मान लो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, फॉर एग्जांपल। एंड इसे लिंक किया जाता है मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। ड्यूरिंग नेपी द आइलैंड प्रीटी मच शट्स डाउन एंटायरली, शॉप्स, बिजनेसेस, एयरपोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स विल बी क्लोज्ड एंड पीपल स्टॉकिंग अप ऑन कैश एंड फूड अहेड ऑफ द फेस्टिवल। इस दौरान इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर पीपल टू गो आउटसाइड, यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट एक्सेस इवन मे बी रेस्ट्रिक्टेड इन सम एरियाज। ये रूल अप्लाई होता है हर किसी पर ऑन द आइलैंड, जो लोग वहाँ के हैं और टूरिस्ट सभी पर। और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट जो है इस ऑब्जर्वेंस को पुलिस करते हैं। जिनको भी इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा विल बी आस्क्ड इमीडिएटली टू रिटर्न टू देयर होम और अकोमोडेशन। और विजिट इंडोनेशिया के मुताबिक मोस्ट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स विल मेक श्योर कि टूरिस्ट जो हैं उनको नेपी के बारे में पता हो और उस हॉलीडे के दौरान टूरिस्ट को अल्टरनेटिव एक्टिविटीज जो है ये दें। और ट्रायल के दौरान जो आदमी है उन्होंने बताया कि ही हैडन्ट मेंट टू ऑफेंड लोकल्स, मुझे गलती का एहसास है, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, एंड उसे भूख लगी थी एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट फूड जब उन्होंने ये पोस्ट किया था।
1: तो बेसिकली ही न्यू कि ये एक यू नो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, जिसके दौरान मूवमेंट नहीं अलाउड है.
4: Maybe.
1: But just because he was hungry, he was frustrated and he couldn't find food and उस चक्कर में ये निकल गए और फिर घूमने भी लगे, फिर वीडियो बनाकर डाल भी दिया. अगर जानने के बावजूद भी इन्होंने ये किया तो ऑफकोर्स गलत किया, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ पर होता है, जो बनाए जाते हैं फॉर एवरीवन टू फॉलो. और क्लियरली यहाँ पर बताया गया कि टूरिस्ट को भी एजुकेट किया जाता है जहाँ भी वो रहते हैं,
4: होटल्स एंड रिसॉर्ट्स वो करते हैं. जब मैंने ये पढ़ा शुरू में, जब मैंने देखा कि ये इंडोनेशिया का कोई फेस्टिवल है नियपी, तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसे मैंने पढ़ना शुरू किया. आई कुडंट कंप्लीट इट, तो आपके साथ मैंने भी इसे कंप्लीट किया, तब मुझे जाकर पता चला कि ये एक हिंदू ऑब्जर्वेंस है.
1: ओके,
4: तो चलो भाई, आपने कभी सुना था नियपी के बारे में?
1: कभी नहीं, फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मुझे नहीं पता, पर ये हो सकता है फॉर द इंडियंस हु आर बोर्न एंड हु आर रेज्ड इन इंडोनेशिया, उनके लिए हो, बिकॉज दे वुड अंडरस्टैंड कि उसका ऑब्जर्वेंस क्या है.
4: ऐसे और भी यू नो ऑब्जर्वेंस होंगे, ऐसी और भी चीजें होंगी जो हम सेलिब्रेट करते हैं या जिनको हम फॉलो करते हैं. अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, किसी एक जगह से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, जरूरी नहीं कि इस तरह से हो, बट कोई एक फेस्टिवल जिसे वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि शायद पता ना हो लोगों
1: को, तो वो आप हमें जरूर बता सकते हैं. शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस एंड वी'd लव टू टॉक अबाउट इट मोर. 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं. 8 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. गुड मॉर्निंग, ब्यूटिफुल थर्सडे मॉर्निंग की सुबह आप सभी के नाम हम कर रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पर. ये के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप. सबसे पहले मेष यानी एरीज आज आपके लिए बताया जा रहा है कि जिनके साथ आप काम करते हैं आपके कलीग्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं आपकी लाइफ में, ये आपको सही सलाह देंगे जिसकी वजह से आज आपके काफ़ी बिगड़ते काम बन सकते हैं. अटका हुआ रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है जिससे कि फाइनेंशियली आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे.
3: वृष यानी टॉरस, आज काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा इसीलिए पेशेंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बिजनेस में लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहें. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह से सोच समझ कर करें. लाइफ पार्टनर के साथ कुछ पीसफुल मोमेंट्स बिताने का टाइम भी आपको मिलेगा. अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करें.
2: वैसे मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए कहा गया है कि आज एक ऐसा दिन है जहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कुछ प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है. आज ऐसा दिन आपके लिए बताया गया है. साथ में आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में आपसी समझ बढ़ेगी, रिश्ता और भी मजबूत होगा और भी लव आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने रिलेशनशिप में. ऐसा आज आपके लिए कहा गया है.
3: करके यानी कैंसर, जल्दबाजी में ऑफिस में आज कोई भी डिसीजन ना लें, हो सके तो फोकस करके काम करें. आज पुरानी प्लान्स जो हैं, पुराने प्लान्स जो हैं पर फिर से आप काम शुरू कर सकते हैं अगर वो काम रुका पड़ा था. वैसे आज तो आप थोड़े इमोशनल भी रहेंगे.
2: और इसके बाद सिंह यानी लियो, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज फायदे के बहुत से मौके मिलने वाले हैं जिससे कि आपका भविष्य बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा साबित हो सकता है. तो इसीलिए ये दिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उन पर काम करें और उनसे फ़ायदा भी हासिल करें. हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा. यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पर हेल्थ वाइज आप अपने हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं इसका अच्छा रिटर्न इन अ फ्यू वीक्स आप ज़रूर नोटिस करोगे.
3: आज मेंटली आप काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकेंगे. आज किसी खास इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन आप कर सकते हैं जिससे रिश्तों में मजबूती आप नोटिस करेंगे. और उसके अलावा बैलेंस्ड डाइट जो है इसका ये ले इसका ख्याल रखें और अपने डाइजेस्टिव की आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बहुत प्रेशर ना पड़े.
2: वैसे तुला यानी लिब्रा, आपके लिए कहा गया है कि जोड़ों में यानी कि आपके जॉइंट्स में दर्द जो है ये आप आज महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से फिजिकली यू'd बी लिमिटेड टू अ सर्टेन थिंग्स. मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, आपसी समझ भी आपकी बढ़ेगी, यू'd बी एट पीस. ऐसा आज आपके लिए कहा गया है. नौकरी करते हैं तो आपके जो कलीग्स हैं इनके साथ तालमेल बिठा कर चले क्योंकि वाद विवाद से यानी कि आर्ग्यूमेंट से आपके लिए चीज़ें खराब हो सकती हैं.
3: वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, काम में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, समझदारी से आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. कोई रिस्क भरा काम ना करें और डिसीजन भी ना लें. गलतफहमी को आप अच्छी तरह से डायलॉग यानी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें.
2: और उसके बाद धन यानी सेक्रेटेरियस, आपके लिए आज बताया गया है कि आज बिजनेस के मामले में फिर बिजनेस पर्सन आपका खुद का बिजनेस है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और मुनाफा यानी कि जो प्रॉफिट है इसे कमाने के लिए. तो अच्छा दिन है. इफ यू हैव गॉट एनीथिंग इन लाइन गेट थिंग्स डन और आप अच्छी शुरुआत जो है आज कर सकते हैं. बजट में काम करने के लिए आज आपको सफलता मिल सकती है. यू'ड फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. आज
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज ऑफिस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको और कठिन समय में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा. और जो प्रॉपर्टी है या लंबे समय से जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसका अच्छा खासा रिजल्ट आज आपको मिल सकता है.
2: और इसके बाद कुंभ यानी अक्वेरियस, आपके लिए आज कहा गया है कि नौकरी में आपकी जो पॉजिटिविटी है ये कुछ नए आइडियाज को आपके कलीग्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है और इन आइडियाज को डिस्कस करते हुए काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल हो सकते हैं इसमें. आपके लिए ये भी बताया गया है कि देयर बी अ लॉट ऑफ positivity, a lot of sweetness, a lot of happiness around you today. तो दिन आज आपका बहुत अच्छा बीतेगा. emotionally, mentally आप बहुत अच्छा फील करेंगे. एंड साथ ही साथ आपके लिए कहा गया है कि आज अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं इस मामले में, सो गेट ऑल द थिंग्स डन, ऑल द थिंग्स सॉर्टेड और फिर अपना पहला कदम जो ही आप रखें.
3: मीन यानी पैसेस, काम पर आपका एंड वर्क एनवायरमेंट जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा. अपने लाइफ पार्टनर के आपके इमोशंस का सम्मान करें। ऐसा करने से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा।
2: तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स। 20 मिनट हो रहे हैं 7:00 इस समय मॉर्निंग मैडनेस में, ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म, ये भी हम लेकर जरूर आएंगे।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
1: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स सिलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक प्रीमियम डिजाइन टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ रोज के सफर

0: Plus. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Celebrity Alarm. Hit it.
5: Worked it. आज का सेलिब्रिटी अलार्म जो है ये हम आपके लिए लेकर आए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज देखें आप में से कितने लोग हैं जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, उनको पहचान पाते हैं, सही सही बता पाते हैं या नहीं. लेकिन उससे पहले एक मैसेज जो है ये आया है. अच्छा, ये शायद
6: गलती से भेजा उन्होंने,
5: गलती से किसी ने भेजा.
6: वही तो मैंने तो पहले ही पढ़ लिया था ना, अंडरस्टूड की गलती से यहाँ पे आ गया है. आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं.
5: नहीं, मुझे लगा किसी ने नहीं, किसी फेस्टिवल के बारे में.
6: नो, मैंने भी पढ़ा था, दैट्स हाउ आई न्यू. बट नेवरदलेस ये शायद कहीं और कोई भेज रहा था, हमारे पास आ गया गलती से, एज वी सेड. बट राइट नाउ आज के सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई, तो आज की जो सेलिब्रिटी है इनकी आवाज पहले आपको सुनाते हैं.
7: It is me and Siddharth Malhotra. This is actually, it was called Fresh Face by Times of India. This photo was in 2014. This is actually, this really marks the beginning of my career.
6: तो ये जो आवाज़ हमने आपको सुनाई है, ये किसकी आवाज़ है आपको बतानी है. आज हमने सेलिब्रिटी अलार्म में आपको एक आवाज़ सुनाई, और आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है इनको आपको मतलब इनके बारे में आपको बताना कि कौन हो सकती है. और आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू वुड एक्चुअली आइडेंटिफाई हर बाय हर वॉइस. एक चीज़ मैं तो आपको बता सकती हूँ, ये उभरता सितारा है.
5: अच्छा,
6: हाँ, ये कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है हु इज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और इन्होंने एक मुकाम हासिल किया हुआ है. दैट्स हाउ पीपल विल नो हर. आई वुड से कि यस, पीपल नो ऑफ हर, बट ये अभी अपना नाम बना रही है. एंड शी इज डूइंग क्वाइट गुड फॉर हरसेल्फ, दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं लोग इनको पहचान सकते हैं.
5: ओके, तो अब कोशिश आप करें आइडेंटिफाई करने की कि ये कौन है, और इनका नाम आपको हमारे पास भेजना है. बीसी लिखें, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और 5599 पर उसे हमें भेज दें.
6: किसी ने कियारा अडवाणी टेक्स्ट किया है हमारे पास, 4123. नहीं, इट्स नॉट कियारा अडवाणी. तो एक बार फिर से आप ये आवाज सुने, आज की हमारी सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म.
7: इट इज मी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. This is actually, it was called Fresh Face by Times of India. This photo was in 2014. This is actually, this really marks the beginning of my career. So
3: Bollywood's most wanted.
8: Kundi ghad gao, ya seedha andar aao.
9: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में न्यूजीलैंड फेस्ट के पापाकुरा कैंडिडेट जोर्त गताई ने कैंडिडेट अनाउंस होने के एक महीने बाद ही स्टेप डाउन कर दिया है, जब ये कंफर्म हुआ कि उन्होंने दूसरी पार्टी से भी संपर्क किया था। लीक्ड मैसेजेस में गताई एक्ट पार्टी और द अपॉर्चुनिटीज पार्टी के लीडर्स के पास जाते दिखे, जिस पर एक्ट लीडर डेविड सिमो ने कहा कि गताई पार्लियामेंट पहुंचने के लिए किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार थे। क्राइस्टचर्च के कंपनी डायरेक्टर पर इंडिया और सऊदी अरेबिया से आए 11 माइग्रेंट वर्कर्स के साथ धोखाधड़ी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट एक्सप्लोटेशन के 35 चार्जेस लगाए गए हैं। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आरोपी ने वर्कर्स को फुल पे का झूठा वादा करके बुलाया, मिनिमम वेज से कम दिया, पब्लिक हॉलीडेज के पैसे नहीं दिए और बिना वीजा अप्रूवल्स के काम करवाया। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चार्जेस लगाए हैं, जहां एक विक्टिम को 54 घंटे काम करवाने के बावजूद सिर्फ 36 घंटे का ही पेमेंट दिया गया था। एनपीसी के एक मैच में आज रात 7 बजे साउथलैंड होक्स बे का सामना करेगा। वैसे कल रात 7 बजे ऑकलैंड और बे ऑफ प्लेंटी का मैच खेला जाना है। उधर ईएफएल कप के कुछ मैचेस फिलहाल खेले जा रहे हैं। अभी प्रथम हिस्से में न्यूकासल और या हाफ टाइम पर न्यूकासल और वेस्ट ब्रोम एक एक गोल से बराबर हैं। हाफ टाइम पर ब्रेडफोर्ड सिटी नील, बर्नली नील, टॉटनम हॉटस्पर्स की जीत चार्ल्टन के खिलाफ 2-0 से हो रही है, जबकि एवर्टन अभी प्रेस्टन से 1-0 से आगे है। इन मैचेस पर और भी अपडेट्स आपको बारी बारी से हम पर हम देते रहेंगे।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Get ready.
4: Passengers, stand by. The next hum boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
3: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week.

0: non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Hum. Accurate traffic.
1: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
2: Cloudy today, got a high of 18. Bit of fog with restrictions at the airport, but haven't got too many delays and cancellations due to that so far. Driving, not too bad. Southern Motorway, 36 minutes, Manukau to town. Slow from Papakura on and off to the city. Northwestern, slow Massey to Te Aratu, and then from the causeway with some heavy spots, 27 minutes in from Massey. Northern, 24 from Constellation. Slow from there, heavy at Silverdale.
1: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
3: Professional Financials has saath aapke loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट.
6: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: Boat plus ute equals butte. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera bhi birthday, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
14: A very very happy birthday आपको अगर आज 27th of August को आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह हमारी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं हम ज़रूर आप तक पहुंचा रहे हैं. आज सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैसेज हमारे पास आया था इन्होंने कहा कि हाई इट्स मी शीना फ्रॉम पापा टोई टोई सेलिब्रेटिंग माई पार्टनर्स बर्थडे अमित शर्मा गॉड ब्लेस यू एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स अपॉन यू. सो अमित आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं शीना की ओर से और साथ में हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से भी.
15: रोसलीना लीजिए हैं माउंट रॉस्किल में आज आप भी अपनी सालगिरह मना रही हैं. खुशी के इस मौके पर तमाम परिवार वाले शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
14: और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रही है नन अदर देन ट्रेश. आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज आपके जन्मदिन के मौके पर आपको वेरी हैप्पी बर्थडे आपके हस्बैंड विकास की ओर से बेटा है आर्यन बेटी है अमाया और जितने भी आपके परिवार वाले हैं सभी की ओर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम विश कर रहे हैं.

0: expertise true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: सो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आज का जो है ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपको सुनाने से पहले हम देख लेते हैं क्या हाल हुआ है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म का. लास्ट दैट वी हैड सीन द मैसेज जो आया था कियारा आडवाणी, हमने कहा था गलत है. उसके बाद काजोल ने हुमा कुरैशी कहा, आलिया भट्ट किसी ने जवाब जो है ये भेजा, राधिका का आंसर आया है, रोहिणी जी है अपहट से, परिणीति चोपड़ा इन्होंने कहा है, मिथुन का कहना है आलिया भट्ट, हार्डी ने कहा है डायन पेंटी, एंड राहुल पांडे आपका भी आंसर आया है, नितिका आपने भी कहा है परिणीति चोपड़ा. गुड मॉर्निंग विजय, पूजा सुकर कुश की ओर से मैसेज आए, थैंक यू सो मच आप दोनों के मैसेज के लिए. तो आज की हमारी जो सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी अलार्म में, अभी तक ज्यादातर लोग परिणीति चोपड़ा आलिया भट्ट ये कह रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि नहीं, ये उनकी भी आवाज नहीं है. और आपको एक आखिरी बार इनकी आवाज हम सुना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा.
2: इट इज मी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. This is actually, it was called Fresh Face by Times of India. This photo was in 2014. This is actually, this really marks the beginning of my career.
1: तो ये कौन है? एक चीज तो आपको बता सकते हैं कि ये एक एक्ट्रेस है. और मैंने ये भी कहा था कि शी इज़ समवन जो उभरता सितारा, वी कैन से लाइक शी इज़ मेकिंग अ प्लेस इन द इंडस्ट्री, शी इज़ वर्किंग क्वाइट हार्ड, शी इज़ गॉट डन सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बाय द वे. और दूसरी ओर मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से नहीं है ये इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस. पहले ये आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ तो या असिस्टेंट डायरेक्टर का काम इन्होंने किया हुआ है, पर शी हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री एज एन एक्ट्रेस सिंस 2021.
3: 5 साल ही हुए.
1: हाँ, 2021 में इनकी पहली फिल्म आई थी, एंड उसके बाद इन्होंने काफी अच्छी लाइन ऑफ मूवीज भी की है. अगर मैं आपको एक और एक क्लू दूं तो इस साल इनकी एक नहीं दो दो फिल्में आई हैं.
3: ओके, 2021 में इनकी पहली फिल्म आई, इस साल दो फिल्में आई हैं. कौन ये हो सकती हैं? अपने आंसर्स हमारे पास आप भेजिए, BC लिखे उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, एंड देखेंगे थोड़ी देर बाद सही जवाब क्या है. लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखें, लाइफ कभी कभी बहुत यू नो चैलेंजिंग हो जाता है हम सभी के लिए, मुश्किल लगने लगता है, तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं, इसका ख्याल रखें. पिछले 28 ईयर्स से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा है. उनकी एक्सपीरियंस टीम आपके लैंग्वेज और कल्चर को अच्छी तरह से समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. और अभी उन शुरू हो चुका है उनका रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका टारगेट है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करना या बात करने को बढ़ावा देना. दिस इज समथिंग जो नहीं होता है उतनी अच्छी तरह से शायद हमारी कम्युनिटी में, तो अब जहां तक हो सके खुलकर मेंटल हेल्थ को लेकर बातें करने की जो कोशिश है ये की जा रही है. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं. नंबर आप याद कर लें, 0800-862-342, 0800-862-342. यहाँ पर आप फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं या एशियन फैमिली सर्विसेज .nz विजिट करें, वहाँ से भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर. Accurate traffic.
1: Need a mortgage? Get buddy.
2: High of 18, a cloudy one today, a foggy start as well, and it has started to impact flights at the airport with domestic services being delayed and a few cancellations. Into the city, Northern Motorway 26 minutes from Constellation Drive, heavy at Silverdale, slow from Constellation with some heavy spots. Northwestern 31 Massey to town, slow from there, heavy at Te Aratu and Point Chef to Grey Lynn. Southern 42 from Monaco, slow all the way from Papakura.
1: For expert mortgage advice without the stress, start with Buddy. Call 0800 Buddy M.
3: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly bogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
4: Sorry, officer. I'm running late for work and I didn't realise I was speeding. I can't have been that much over, though. I mean, everyone's going that fast. And I'm the one that gets pulled
5: over the centre lane and crashed into an oncoming vehicle. She was going too fast, lost control. The fire team's attempting to remove the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
6: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
7: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all 4 weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
8: Get the Skinny!
9: Zabardast hits.
10: Shuru ho jaye to rukte nahi.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Hum.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
9: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: 8 मिनट रह गए हैं 8 बजे में. याद रखें, डेट्स AI अपग्रेड. अपने डेट को अब एक AI अपग्रेड दे थ्रू आवर कॉम्पिटिशन. फेसबुक पेज पर जाएं और अपने डेट का एक जो सुपर हीरो फोटो है ये क्रिएट करें यूजिंग AI और उस फोटो को वहां पर पोस्ट करें कॉम्पिटिशन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एंड टैग योर डेट. और ड्रॉ में शामिल होकर नेक्स्ट वीक $300 कैश आप जीत सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड फादर्स डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो गेट योर एंट्रीज इन एज क्विकली एज पॉसिबल.
14: वैसे कनाडा से हमारे पास संजय दांगे जी का मैसेज आया है. आज के सेलिब्रिटी अलार्म को इन्होंने सुना और आइडेंटिफाई किया करने की कोशिश की सेलिब्रिटी को. इन्होंने मृणाल ठाकुर जो है ये कहा है, वी हैव गॉट सम मोर आंसर्स. जहां पर राशा ठडानी ये प्रिया ने कहा, लोकेश ने कहा भूमि पेडनेकर. मोहित का आंसर आया फ्लैटबुश से. रवि ने मैसेज किया है. मोनिशा का आंसर आया है किसी ने रकुल प्रीत कहा है. अनिश्मा इन्होंने अपना जवाब दिया है. मिश्का ने कहा है कृति सनोन. रश्मिका मंदना ये किसी का मैसेज आया है. सोम ने भी आंसर भेजा और शबनम ने भी कहा है अपना जवाब. एंड द करेक्ट आंसर जो सम ऑफ यू गॉट इट राइट आफ्टर द फ्यू क्लूज जो हमने दिए थे. एंड द करेक्ट आंसर आज की हमारी सेलिब्रिटी इज शार्वरी वाघ.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City Auckland में आज के मौसम के लिए कहा गया मॉर्निंग फोग जरूर रहेगा, लिटिल बिट ऑफ क्लाउड्स हियर एंड देयर विद चांसेस ऑफ शावर्स एज वेल. सनसेट 5:57 PM पर होगा. टेम्परेचर फिलहाल 12.6 डिग्रीज है, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. एंड ओवरनाइट टेम्परेचर भी 12 डिग्रीज रहेगा.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
4: आज की जो ट्रेंडिंग स्टोरी है बड़े ध्यान से आप सुने. सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन जो है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर एक बहुत ही हेल्थी डिबेट भी चल रहा है लोगों के बीच. और ये जो डिबेट है इज ओवर द एडवांटेजेस ऑफ अ वर्क स्केड्यूल. हाँ
1: ओके.
4: आप जो हम शिफ्ट आमतौर पर बोलते हैं ना, जो शिफ्ट आपका होता है, कुछ लोगों का कहना है कि 8 to 5, 9 to 5 जो नॉर्मल डे होता है वो बढ़िया है. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम 2 to 10 PM इज बेटर.
1: 2 PM to 10 PM.
4: हाँ
1: इंटरेस्टिंग.
4: दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक काम अगर आप करते हैं. कई लोग कहते हैं कि 9 to 5 बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है.
1: right.
4: अब उस तरह से देखा जा रहा है, वेकिंग अप, रशिंग थ्रू ब्रेकफास्ट, फाइटिंग ट्रैफिक, 8 hours अपना काम जो है ये आप करते हैं, देन स्पेंडिंग द इवनिंग वंडरिंग व्हाई यू हैव बीन एब्सोल्युटली यू नो कि शरीर में क्यों
1: एनर्जी नहीं है,
4: एनर्जी बाकी नहीं रहेगी है आपके. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो व्हाट इफ द प्रॉब्लम इजंट योर जॉब,
1: देन इट्स द टाइमिंग.
4: हाँ, इट्स द आवर यू आर वर्किंग.
1: ओके.
4: एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने एक डिबेट छेड़ दिया है और जो एम्प्लॉई है बिहाइंड द वायरल पोस्ट उनका दावा है कि वर्किंग फ्रॉम 2 to 10 PM अलाउड देम टू अवॉइड द क्लासिक पोस्ट वर्क ज़ॉम्बी मोड, जो काफी लंबे दिन के बाद आपको हिट करता है. इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग एट 5 or 6 PM कमिंग होम एग्जॉस्टेड और फिर उसके बाद बैठकर अपने फोन पर स्क्रॉल करना, देर में अगर आप शुरू करते हैं इसका मतलब सुबह यू आर फ्री. सो वांट टू डील विद सम बोरिंग गवर्नमेंट पेपर वर्क दैट रिक्वायर्स यू फिजिकली शो अप, आप जाकर वो कर सकते हैं सुबह जो बाकी का काम है. एंड सडनली वर्क स्केड्यूल जो है आपके फेवर में काम करने लगता है. एंड वो सारी चीजें तो काफी बहस चल रही है अपनी अपनी तरफ से. लोग बता रहे हैं कि क्या उन्हें पसंद है, क्या वो 9 to 5 इट्स अर्ली मॉर्निंग है. एक आप 4, 5, 6 बजे शुरू करते हैं, फिर दूसरा होता है कि आप 8 to 5 या 9 to 5, 9 to 6 वो करते हैं, तीसरा जो है एक आफ्टरनून शिफ्ट और एक लेट नाइट शिफ्ट होता है.
1: राइट.
4: तो 2 शिफ्ट्स के बीच अभी डिबेट चल रहा है, एक है 9 to 5, दूसरा है 2 to 10.
1: राइट. तो इंटरेस्टिंग है यार. इनफैक्ट अगर ये आप शायद व्हाट्स इट टेक वाले टॉपिक के दौरान पूछते तो
4: यही होगा.
1: ओ यही होगा.
4: हाँ.
1: अच्छा तो चलो अभी क्यों बताया फिर आपने.
4: आई मीन इट आल्सो गिव्स यू एन आइडिया, आप भी सोच रहे होंगे ना इसके बारे में.
1: एग्जैक्टली. तो या आई हैव गॉट सम थिंग्स टू टॉक अबाउट द टॉपिक टुडे. और अगर आपके पास भी अभी सुनने के बाद कुछ आइडियाज है, कुछ चीजें हैं दैट यू'ड लाइक टू शेयर, तो याद रहेगा क्योंकि थोड़ी देर बाद वी विल ओपन आवर लाइंस फॉर यू टू डिस्कस इन डेप्थ और हमारे साथ शेयर जो है ये भी आप कर सकते हैं. बाय द वे याद रहे हमारा हम बोर्डिंग कॉल ये अभी तक प्ले नहीं हुआ है. इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसी घंटे ये प्ले होगा और इसी घंटे इनफैक्ट 8 to 9 के बीच में ही प्ले होगा. Any time, you just have to hear out carefully, clearly, एकदम ध्यान से, because जैसे ही ये play हो, वैसे ही आपको क्या करना है?
4: वैसे ही आपको जाना है रोवर पर और एंटर करना है बोर्ड नाउ जो कंपटीशन पेज है वहां पर आपको दिखेगा एंटर कोड नाउ और वहां पर आपको बस टाइप करना है बोर्ड नाउ और सबमिट पर क्लिक करना है, आप ड्रॉ का हिस्सा हो जाएंगे.
1: इतना आसान है ये. ये याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, जिसके लिए आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं. पर ऑन द अदर हैंड टू रिटेन योर टिकट्स और अगर $1000 स्पेंडिंग मनी आप जीतना चाहते हैं टू वन वातु, तो इसके लिए आप हमारे साथ हम बोर्डिंग कॉल का हिस्सा जरूर बने। सुनते रहिए बोर्डिंग कॉल कब आपके लिए हो, और जैसे ही आपको ये मिले सुनने को 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास अपनी अपनी एंट्रीज जो है ये सबमिट करने के लिए। थैंक्स टू सॉल्मन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतू। विजिट flysolmans.com फॉर द डिटेल्स के लिए।

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
5: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin.
6: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
7: Oh, hey. If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
8: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: आज व्हाट्स अ टेक के बारे में काफ़ी कुछ आपको पहले ही पता चल चुका है कि एक एम्प्लॉई हैं, इन्होंने कुछ पोस्ट किया जाकर सोशल मीडिया पर और अब एक ये वायरल डिस्कशन बन चुका है अबाउट शिफ्ट वर्क, कि कौन सा शिफ्ट सबसे बढ़िया है। इनका दावा है 2 से रात 10 बजे तक अगर आप काम करते हैं ये बेस्ट होता है, आप जो पोस्ट वर्क ज़ॉम्बी मोड है उससे बच सकते हैं। और आपको कुछ ऑफिशियल वर्क करना है जहाँ पर्सनली आपको दिन में जाना पड़ता है, वो भी आप कर सकते हैं, आपके काम के लिए भी आपके पास टाइम होगा और वो सारी चीजें, ट्रैफिक से बचेंगे जो डेली हसल होता। तो हमने सोचा कि आज आपसे पूछते हैं आपके नजरिए से विच इज द बेस्ट शिफ्ट टू डू। सिंपल एकदम, आई लाइक अर्ली मॉर्निंग्स।
14: आई थिंक आई हैव बीन डूइंग अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज कि एक सर्टन टाइम तक, शाम होते होते प्रॉब्ली 3 PM और 4 PM तक, यू डोंट हैव इनफ एनर्जी इन योर बॉडी। आप जहाँ बैठते हो ना, ऐसा दिल करता है कि बस बैठे रहो, और अगर आप 10 मिनट से एक्स्ट्रा बैठ लेते हो तो फिर आप स्लीप मोड में चले जाते हैं।
13: अच्छा,
14: दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस पास्ट ईयर्स। सो आई वुड से कि कहीं ना कहीं आई हैव नॉट डन एनी अदर शिफ्ट अभी इतने सालों से, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट आई थिंक अगर मॉर्निंग शिफ्ट नहीं हो तो अच्छा है, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम।
13: आप ये बताइए कौन सा शिफ्ट अच्छा है,
14: पर वही तो प्रॉब्लम, मैंने किया ही नहीं कुछ अभी अलग।
13: नहीं, बाकी जो कुछ भी किया, फील क्या आपको होता है, व्हिच शुड बी द बेस्ट शिफ्ट टू डू शिफ्ट?
14: बेस्ट आई थिंक आफ्टरनून शिफ्ट,
13: लाइक
14: अगर हमारे रेडियो में देख लिया जाए जो केतन का है 12 बजे से हाँ दैट्स लाइक अ वेरी गुड टाइम. आप एकदम एनर्जी आपकी जो है ये कम भी नहीं होती है ज्यादा भी नहीं होती है. यू आर देयर यू कैन मैनेज योर एनर्जी अगर यू नो कुछ भी हो एंड देन यू फिनिश एट अ गुड टाइमिंग एंड देन यू हैव इनफ टाइम. सुबह आपके पास इनफ टाइम है
13: अगर आप 12 बजे काम शुरू करते हैं 8 आवर्स आप काम करते हैं सो यू विल बी फिनिशिंग 8 बजे भी रख लो.
14: हाँ बहुत अच्छा है. इट्स अ गुड टाइमिंग. या
13: तो आओ 800-00 हम आओ 800-00-4866 ये हमारा नंबर है. आज टाइम बहुत ही कम है क्योंकि थोड़ी देर में गुरु से भी हमें बातें करनी है.
14: गुड मॉर्निंग.
12: हाय गुड मॉर्निंग पूजा. गुड मॉर्निंग विजय भाई.
13: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
12: आई हैव वर्क अभी करती हूँ 9 to 5 बेटी को छोड़ के जाना पड़ता है. पहले मैंने एक शिफ्ट मेरी एक दोस्त करती है 6 to 2 which I'd love to do. I'd rather pick up my daughter and have her all the afternoon with her after school. But जैसे अभी मैं 5:30 finish करके आती हूँ and then by the time I'm home it's like 6:45. हाँ तो I would love the shift जो जैसे morning में होती है because I'm already awake. So yeah, after evening shift is I used to do 11 to 8 when I was in the bank as well. नहीं अच्छा 6 o'clock के बाद अच्छा नहीं लगता.
14: किसके बाद?
13: 6 o'clock के बाद.
14: 6 o'clock के बाद. ओके ओके. किसी ने मैसेज किया है और इन्होंने कहा है इट इज एब्सोल्युटली राइट आई यूज्ड टू वर्क 3 PM to 11 PM यू विल नॉट गेट टायर्ड ये इन्होंने कहा है.
13: वेल डन. चलो गुड मॉर्निंग. हेलो
15: गुड मॉर्निंग
13: जी परविंदर आपको क्या लगता है?
15: मुझे तो वैसे आफ्टरनून की अच्छी लगती है.
13: आफ्टरनून एज इन कितने बजे?
14: टाइमिंग टाइमिंग बताइए.
15: 11
13: से अराउंड 6-7.
15: बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं सुबह की कर लूं.
14: अरे
15: हालांकि मैं सुबह उठ नहीं सकती. बड़ा
14: स्ट्रगल है सुबह उठना. ये कहना क्या चाहती हो परविंदर?
13: वो कह रही है कि उनको पसंद है
14: पर फिर बोल रही क्या है हालांकि मैं प्रेफर करूंगी सुबह की शिफ्ट कर लूं.
13: हाँ वो पसंद नहीं है बट
14: शी प्रेफर्ड. अच्छा
15: हाँ क्योंकि फिर उसकी बात क्या होता ना जैसे अभी मैं करती हूँ अराउंड 8:30 पहुँचना होता है मुझे तो ऑफिशियल टाइम तो 3 बजे तक है बट बाय 4:30 फिनिश कर लेते हैं. तो आई स्टिल हैव टाइम कि मैं थोड़ा मार्केट चली जाऊं थोड़ा देख लूं
14: ओके
15: थोड़ा मत बहला लूं यू नो.
14: तो मिल जाता है इनफ टाइम आपको इस शिफ्ट में भी. चलो जी.
15: और अगर आप आफ्टरनून की शिफ्ट होती ना तो मुझे लगता है कि सुबह भी गया और रात भी गई. मुझे वो ना मतलब वो रेस्टफुल है पर वो यूजफुल नहीं लगती मुझे कि सुबह भी बर्बाद रात भी बर्बाद.
14: चलो थैंक यू परविंदर हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. आई वर्क 9 AM to 3 PM मंडे टू फ्राइडे. लव इट. गुड वर्क लाइफ बैलेंस ये इन्होंने कहा है. नाम नहीं है इनका. फिर इन्हीं ने मैसेज भेजा है मंडे टू थर्सडे 4 days.
13: लेकिन कौन सा शिफ्ट करते हैं?
14: 9 AM to 3 PM.
13: कितने घंटे होते हैं? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे का.
14: Nice. और 3 AM till 7 PM है
13: डेली
14: 3 AM to 7 PM
13: और 3 PM होगा शायद.
14: आई डोंट नो 3 AM to 7 PM तो बहुत बहुत ज्यादा यार. बहुत हार्ड भी साउंड कर रहा है मुझे.
13: या ओके तो आप भी हमें बता सकते हैं चाहे तो कॉल करके. अभी कॉल करने का तो टाइम उतना नहीं रह गया है. 5599 पर आप टेक्स्ट करो कौन सा शिफ्ट आपको लगता है इज द बेस्ट वन टू डू. मुझे लगता है सुबह 6 बजे काम शुरू करो इज परफेक्ट. इनको लगता है कि
14: 12 बजे
13: से शुरू करें तो बढ़िया होगा. आपको क्या लगता है? हर किसी का अपना नजरिया हर किसी की अपनी पसंद आपकी भी होगी तो वही हमें आपको बताना है 5599 पर.
14: बरखा ने कहा है आई वॉक 7 PM to 7 AM मंडे टू थर्सडे. नोट शो से उन्होंने मैसेज किया है.
13: ओके मंडे टू थर्सडे देन फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी 3 दिन छुट्टी 4 days वर्क 3 days छुट्टी. दैट्स नाइस.
14: बाय द वे जो मैसेज इन्होंने भेजा था 3 AM वाला वो सच में 3 AM शुरू करते हैं. उन्होंने कहा आई एम अ ट्रक ड्राइवर एंड इट्स ट्रू 3 AM till 7 PM. आई डोंट नो हाउ डू यू मैनेज. विनय ने मैसेज किया है. विनय आई हैव नो आइडिया हाउ डू यू मैनेज इट मैन. 3 AM अगर आपको शुरू करना होता है तो आप कितनी सुबह जागते होंगे? मतलब आप 1:30 टू 2 AM के बीच में जागते होंगे जस्ट टू स्टार्ट वर्क एट 3 AM. और 7 PM अगर आप फिनिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 7 PM घर पहुँच कर 7 PM घर पहुँच जाते, बिकॉज यू फिनिश एट 7, राइट? इट टेक्स यू अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा टाइम टू रीच होम, नहाना धोना, खाना पीना, देन जाकर सोना, एंड देन अगेन उतनी बजे जागना. ओ माई गॉड.
13: ओके, तो आप भी हमें 5599 पर टेक्स्ट करके अपनी पसंद जो है ये बता सकते हैं.
11: Hollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 27 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और हमने कहा था कि गुरु से भी आज हमारी बातें जो है ये होनी है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. तो गुरु आगे हैं लाइंस पर. गुड मॉर्निंग गुरु.
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हो?
0: मैं तो बढ़िया हूँ. और आज एक खास मेहमान भी हैं हमारे साथ ऑन द शो और इनका नाम भी विजय ही है. गुड मॉर्निंग विजय, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई आप कैसे हो? थैंक यू गुड.
0: तो सबसे पहले गुरु आपसे हम जानना चाहेंगे विजय के बारे में कि कौन है विजय और कैसे ये आपको मिले.
1: विजय भाई आपके थ्रू ही हमें मिले. विजय ने विजय को सुन के गुरु को याद किया और बेसिकली काफी आई थिंक अभी वन एंड हाफ ईयर्स पुरानी बात हो चुकी है. आई थिंक मोर देन टू ईयर्स. और उस टाइम हमने इनका रीफाइनेंस करके वी डिड कंसोलिडेटेड, वी सेव्ड हिम सो मच मनी इन द इंटरेस्ट. एंड उनका एक सपना था कि मैं अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ गुरु भाई, तो अगर आप मुझे इसमें सपोर्ट भी कर सकते हैं तो सोचा जब जिस दिन आपका मन होगा उस दिन बताना है, 100% उसको करेंगे. तो इनका वो बिजनेस वाला जो मन था अभी रिसेंटली पूरा खुल के बाहर आया. तो नाउ गॉट हिम द ट्रक रन, जो खुद ही भी ये ड्राइविंग करते थे पहले भी, तो अभी अभी उसी ट्रक को ये खुद एज ए ओनर चलाएंगे, विच वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. तो अब इनके पास एज ए बिजनेस ओनर ट्रक भी हुआ विद 100% फंडिंग. तो ही जस्ट वॉन्टेड टू कम आउट एंड शेयर हिज एक्सपीरियंस की कैसा इनका रन रहा हमारे साथ और ऐसी इनको सर्विस लगी गुरु की लॉजिक फाइनेंस की.
0: ओके या तो विजय आप बताइए आपकी जो जर्नी, आपने पहले भी बातें की थी गुरु से एंड रिसेंटली जो कुछ अभी ट्रांसपायर हुआ उसके बारे में आप हमें बताएंगे.
2: भाई वे शुरू में लाइक आपके रेडियो में गुरु भाई सुनता था बहुत ना. आफ्टर कोविड लाइक सबको पता है होम लोन कितना हार्ड था, लाइक इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर गया था. बस मैं मेरा क्या होता था, बैंक से कॉल आता था कि ओ यो फाइनेंस इज अबाउट टू ब्रेक ना, देयर रीफाइनेंस है और यू वांट टू जस्ट स्टे विद अस एंड वी विल गिव यू 3-4,000 कैश बैक. बस हम रुक जाते उधर से ना, फिर एक साल दो साल बचते थे. गुरु भाई को मैंने कॉल किया लाइक टू यू गाइस, गुरु भाई ने इतने अच्छे मुझे हेल्प किया. आई हैड अ गुड कैश बैक लोन इतने अच्छे से दूसरे बैंक के साथ किया, एवरीथिंग सो पीसफुली. They started saving me $3,150 a month from repayment only. Insurance मेरा लिया, मेरा insurance भी support किया like 3 years back. अभी भी देखो मेरा था. फिर अभी ट्रक का लोन था मेरा, it was a good hefty amount, छोटा amount नहीं था. गुरु भाई ने 100% funding से साथ किया. तो like गुरु भाई तो like मेरे लिए तो भगवान जैसा है. To be honest, like if he takes your case, इतना help करेगा, वो है ahead जाकर वो help करेगा. शाम भी हो जाएगा, चाहे कॉल करके इसके टीम्स ओ टू गुड लाइक ही टेक्स लाइक लाइक अपने आप से दिल से काम.

0: करता गुरु भाई, इट हेल्प्स अ लॉट. फाइनेंसिंग में आपको पता इंटरेस्ट रेट सब को खा जाता है, पर अगर गुरु भाई का साथ तो ओ माय गॉड, इंटरेस्ट रेट से पैसा कितना बचता है. चिंता नहीं करो, और किसी फाइनेंस कंपनी के साथ नहीं, बैंक के साथ किया,
1: डायरेक्ट बैंक के साथ.
0: मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ आज यहाँ पर है थ्रू गुरु भाई.
1: अरे वाह गुरु, दैट्स अमेजिंग. एंड अभी विजय को सुनकर गुरु, अभी विजय को सुनकर कुछ और लोग शायद होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अगर यू नो ही इज टेकन अ स्टेप एट अ टाइम, रीफाइनेंस करवाया, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह भी आपने इनका सॉर्ट आउट किया, नाउ यू हेल्प हिम गेट इनटू हिज ओन बिजनेस एंड वो सारी चीज़ें, तो कोई जो सोच रहा है कि भाई शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो कि उनको करना क्या चाहिए?
2: विजय भाई पहले तो देखो, एक जो सबसे बड़ी बात होती है फोन उठा के बात करना, बिकॉज वो एक, मेरी अभी कल ही एक कस्टमर से बात हो रही थी, वो मुझे अचानक मिले, कहते हैं यार गुरु आपसे, आप गुरु हैं? मैं कहा हाँ मैं गुरु हूँ. तो कहते हैं ओ शिट, मैं आपसे बात, आपके आपसे काम करवाना चाहते थे, लेकिन फिर हम बहुत घबराते रहे कि आपको फोन करें, कभी मिले नहीं हैं. तो मिले हैं कि नहीं जा, लेकिन आपको जो फोन उठा के वो जो पहला स्टार्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही वहीं से वो जर्नी स्टार्ट होती है. तो वैसे ही जर्नी है विजय की भी, वहीं से स्टार्ट हुई. और वहां से वो शुरू हुआ. तो कॉल करने के लिए आपको बेसिकली लॉजिक फाइनेंस सर्च करना है गूगल पे, 0800 लॉजिक जी फ्री नंबर है, 0800 लॉजिक जी, वो नंबर सीधा मेरे पास आता है, विच इज 0800-564-424 इज द नंबर जो मेरे से आप सीधी बात कर सकते हैं. और डेफिनेटली सी इंटरेस्ट रेट एक चीज है, बट उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसके इंटरेस्ट सेविंग करनी है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जल्दी से लोन खत्म कर सकते हो, प्लस अगर कोई आपका बिजनेस एस्पिरेशंस हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड, और उसको चलाया जा सकता है कि कैसे पाथ में उसको चलाना है. तो वैसे ही जैसे भी विजय के साथ हुआ, तो थैंक यू विजय फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक विद अस, एंड वेरी गुड लक
0: फॉर
2: योर बिजनेस जर्नी.
1: ऑल राइट, थैंक यू विजय, ये आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे. एंड गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आप भी लोगों को आगे बढ़ाते रहे. नेक्स्ट वीक आपसे और बातें जरूर करेंगे.
2: थैंक यू
1: सो मच.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
5: Accurate traffic.
6: Got an unreliable outboard?
7: Cloudy all day today, a high of 18. Fog restrictions at the airport this morning. A number of domestic services delayed and cancelled so far. Northern, 28 minutes, Constellation Drive to town. If you're driving, heavy at Silverdale. Slow from Constellation with heavy spots. Northwestern, 33 and from Massey. Slow there, fine to Partiki, but then heavy on and off. Southern, 48 Manukau to town. Slow Takanini through to the city, heavy from Otahuhu.
6: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's fees and credit criteria apply.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
10: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
11: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here. Ladies and gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rover and enter board now.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: Let's go.
3: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your local

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Megan Turbo stores nationwide.
7: Mostly cloudy today, got a high of 18 degrees. Coming in on the northwestern motorway, got a crash between Pointshev and St. Luke's coming in, blocking the fifth lane, far right lane. Find a Pointshev, but heavy from there, 26 minutes in from Massey. Southern 42, Mataco to town, slow at Takanini, then heavy on and off from Papatoetoe. Northern 25 from Constellation, slow from there with heavy spots. Fog at the airport impacting domestic flights.
6: Megan Turbo, home of the 80k tyre kilometre warranty nationwide.
0: Father's Day bus aane hi wala hai, and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories, plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
8: Bunnings has great value nailed across the store.
9: Get your garden sorted for less with a Moda 15cm charcoal self-watering Oslo pot, only $360, or Dalton's premium 10-litre indoor plant mix, just $12.88. Head in store or online for even more great value.
10: Since 96, Rebel Sport has been getting Kiwis off the sidelines and into the game. And to celebrate our 30th birthday, we have $30,000 up for grabs. To enter, jump online to tell us why you or someone you know deserve to have their sport covered for a year. But hurry, entries are closing soon. This is our way of giving back to the players, teams and supporters who love sport as much as we do. Don't miss out. Go to rebelsport.co.nz for your chance to win a share of $30,000 now. Only at Rebel Sport.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
12: Breakfast Show with Weejay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: बस 8 मिनट ही बाकी हिस्से में हमारे स्टूडियोज में, वैसे देखा जाए तो 9 बजने में, और अभी हम आपको देना चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी टू विन $500 कैश. अगर आप एक डैड है, तो अगर आप एक पिता हैं, आपके पास है 2 मिनटों का समय और आप हमारे पास कॉल कीजिएगा राइट नाउ 0800-00-4866 पर. द फर्स्ट डैड हु गिव्स अस अ कॉल दिस मॉर्निंग, आपके लिए हमारा आज का डैड्स रिवर्स ग्रिल प्रमोशन जो है ये हम लेकर आए हैं, और आपका नाम जो है ये हम उस ड्रो में शामिल करेंगे जहां पर आप जीत सकते हैं $500 कैश. बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम, उसका जवाब आपको देना होगा, और उसके बाद आप ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे. जैसे कल हमने शशि जी से पूछा था TBH का मतलब.
14: हाँ.
13: और उसका मतलब था
14: To be honest,
13: right. तो आप ऐसे ही कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम आपसे पूछ सकते हैं. अगर आपने जवाब दे दिया तो आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे एंड विनर बनने के चांसेस है आपके पास. गुड मॉर्निंग. हम हेलो, गुड मॉर्निंग.
15: गुड मॉर्निंग पूजा, हाउ आर यू?
13: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
15: बस एकदम.
13: तो सबसे पहले तो आप अपना नाम हमें बता दीजिए, ताकि आपका नाम हम ड्रो में शामिल करने के लिए रेडी रहे. एकदम
15: आलोक.
13: आलोक, ओके. आलोक जी, कितने बच्चे हैं आपके पास?
15: दो हैं जी.
13: दो बेटियां हैं?
15: छोटे छोटे. हाँ जी, दो बेटियां हैं जी, छोटी-छोटी.
13: मुझे ऐसा लगा था कि आप आलोक भाई, बट बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है तो थोड़ी आवाज आपकी समझ में नहीं आई मुझे शुरू शुरू में.
15: नहीं सुनता तो रोज हूँ लेकिन बिजी रहते हैं तो इसलिए बस नहीं हो पाती बात।
13: चलो आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि आपने आज कॉल किया और आपसे फाइनली बात हुई।
15: मेरी किस्मत अच्छी थी।
13: तो आलोक भाई आज आपसे सवाल विजय पूछेंगे और देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं।
16: अच्छी बात है। तो बस आज बहुत सिंपल चीज आपको बतानी है आलोक जी कि व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर।
13: है ईमेल का भी
15: इलेक्ट्रॉनिक मेल।
16: इलेक्ट्रॉनिक मेल बिल्कुल सही नाम रो में शामिल कर दो भाई इनका।
13: अरे वाह क्या बात है।
16: ईमेल जो है इसका जो एक्चुअल फॉर्म है या जो वर्ड है इज इलेक्ट्रॉनिक मेल।
13: वेरी नाइस थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली आपका नाम रो में शामिल कर रहे हैं
15: एंड थैंक यू पूजा।
13: अगर होप आप जीत जाए, अगर जीत जाए तो अपनी बेटियों के लिए इस्तेमाल करेंगे कि खुद के लिए।
15: नहीं नहीं बच्चों के लिए। हम क्या हमारा हो गया।
13: हमारा हो गया।
15: बच्चे कम पहले हैं बार बार में।
13: But father's day is for you.
15: बच्चे और वाइफ। हाँ मैं उन्हीं का ही तो हूँ ना फादर भी तो।
13: हाँ वो भी बात है। चलो थैंक यू हैव अ नाइस डे।
15: थैंक यू।

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Wardrobes Direct. Options to suit all budgets.
3: A high of 18, cloudy all day, a foggy start. Restrictions at the airport seen a lot of delays and a number of cancellations to domestic flights. Driving not too bad. Southern 42 minutes in from Manukau. Slow at Takanini, then heavy on and off from Papatoetoe. Northwestern, a crash between Point Chev and St. Luke's sorted, but still quite heavy on and off from Point Chev. 26 minutes in from Massey. Northern 25 from Constellation. Slow from there, some heavy spots.
2: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
4: Farmers has the best gifts for Dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
5: You won't be able to resist these Meat Week deals. Ah, smell that. Ah, hang on. Do you have the smell on your radio turned up? Ah, that's okay. I'll describe it. It is yum. Smell it yourself at Meat Week. On now at Pack and Save.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
0: हम टाइम चेक
10: गुड मॉर्निंग इसमें ठीक 9 बज रहे हैं
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Five New Zealanders are reportedly missing in deadly floods which have hit the Nepal-Tibet border. Former Honorary Council of Nepal to New Zealand, Dinesh Kartika, has posted the news on social media. More than 150 people are dead and hundreds more are missing, including tourists. MFAT says New Zealanders in Nepal should let their family and friends know they are safe. Two people have died in a crash east of Kaitaia last night. Another is in a critical condition and a fourth serious. Westpac's latest overview paints a cautiously optimistic picture for the rest of the year. Economist Kelly Eckold says the country has weathered Iran war disruptions to shake off recent uncertainty. He forecasts the economy will grow by 2%.
12: And just under 3% next year, which would be associated with a falling unemployment rate.
11: Acting legend Tim Curry, who starred in cult classics like the Rocky Horror Picture Show, has died aged 80. The British singer and actor was known for iconic roles such as Frankenfurter. And more delays at Auckland Airport as fog restrictions remain. 21 domestic regional flights and departures have been pushed back with 18 cancelled. In sports, Springboks great Victor Matfield remains confident heading into Sunday's second test against the All Blacks in Cape Town. The legendary lock told SuperSport in South Africa he saw enough in the first test defeat to think the box will bounce back.
13: I still think we dominated them. There was no time in the game where I felt, this is a team that's going to beat us 2-3 times in a row.
11: The All Blacks name their team at 10 o'clock tonight. Rugby with All Blacks travel and hospitality.com. Exclusive Bledisloe Cup packages selling now.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
10: अभी कुछ कुछ इलाकों में अच्छी खासी खूबसूरत धूप खिली हुई है, लेकिन there are some areas जहां पर morning fog experience किया जा रहा है अभी तक. लेकिन बाद में चलकर कहा गया है cloudy periods रहेंगे, chances of little bit of showers. Northwesterlies आज हम experience करेंगे as far as the wind is concerned. Sunset 5:57 PM पर होगा. Temperature फिलहाल के लिए 12.9 degrees है और हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है आज बाद में, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहेगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
14: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
15: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो,
16: अरे कहना क्या चाहते हो.
10: आज की क्या बकते हो स्टोरी, आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी यस्टरडे जब हमने शो फिनिश किया उसके बाद. एंड आई वाज लाइक यार, आई नो कि कई लोग शायद इस स्टोरी से वाकिफ हो जाए, पर देयर माइट बी अ फ्यू पीपल जिनको शायद नहीं पता हो. तो मैंने ये स्टोरी आज क्या बकते हो के लिए ही बचा कर रखी थी. ग्वालियर इंडिया की ये कहानी है, जहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है, इन्होंने अपनी गाड़ी को डेकोरेट कराया था. उनकी गर्लफ्रेंड ने इनफैक्ट उनके लिए डेकोरेट किया था
17: जी,
10: लिपस्टिक लगाई और फिर इनकी गाड़ी पर उन्होंने 3400 लिपस्टिक के मार्क्स, बेसिक लिप मार्क्स जो है ये छोड़े थे. गाड़ी को चुमा होगा ना उतनी बार उन्होंने, दैट्स हाउ द मार्क्स वर देयर.
17: कितनी बार?
10: 3400 टाइम्स. बिकॉज 3400 लिपस्टिक मार्क्स थे गाड़ी पर. आई वंडर किसने काउंट किया होगा. या सेम क्वेश्चन मैं भी सोच रही हूँ कि किसने काउंट किया होगा. तो मध्य प्रदेश ग्वालियर की ये कहानी है, जहाँ पर जब ट्रैफिक पुलिस ने इनको देखा, इस शख्स को, कि ये गाड़ी जो ये ड्राइव कर रहे थे, इनकी गाड़ी पर लिपस्टिक मार्क्स थे. कोई वेरिफिकेशन मेरे पास नहीं है किसने काउंट किया, बट टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली गिवन दिस नंबर 3400 लिपस्टिक मार्क्स. तो उन्होंने उनकी गाड़ी के इस न्यू डेकोरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, उनको 5500 रुपीस का फाइन जो ये दिया. एंड उनको बाद में ये भी बताया गया, गाड़ी साफ करो.
17: अच्छा, गाड़ी साफ भी करवाई.
10: हाँ, एक वीडियो भी सामने आई है जहाँ पर जो लड़का है उसके हाथ में एक कपड़ा जैसा है और ही इज ट्राइंग टू रब ऑफ द लिपस्टिक मार्क अपनी गाड़ी पे से. वे डेफिनेटली लुकिंग वेरी अपसेट बट स्टिल डूइंग इट. तो फाइन भी मिला, लिपस्टिक का मार्क भी उनको खुद साफ करना पड़ा, और उसके बाद ये कहानियों में भी आ गए, मतलब इंटरनेट पर वायरल भी हो गई इनकी ये स्टोरी. तो ये है आज की क्या बकते हो.
17: बस थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारियां भी हम आपको हम पर देंगे.
10: तैयार रहेगा क्योंकि इस घंटे आपके लिए रक्षाबंधन का जो मौका है, कल खास यू नो स्पेशल त्यौहार जो है ये मनाया जाएगा. बहुत सी जगह पर लोग जो है इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आप भी शायद कल रक्षाबंधन जो ये मनाने वाले हैं अपने भाई और बहन के साथ. तो रक्षाबंधन के इस ब्यूटिफुल से मौके पर आज का हमारा जो रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन, द फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑन ब्रेकफास्ट शो, क्योंकि कल हम एंट्रीज नहीं इनवाइट करेंगे.
17: कल
10: हम सिर्फ विनर्स का नाम बताएंगे जी. तो कल ड्रॉ होगा, कल पता चलेगा हु द विनर इज. लेकिन अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की है हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने की, तो याद रहे ये मौका आपको इसी घंटे हम देंगे, और रक्षाबंधन कंपटीशन सिब्लिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में भाग लेने का, जहां पर दो विजेता हमारे साथ हो सकते हैं और इनके हाथ लग सकता है $250 ईच. सो कब होगा, तैयार रहिए क्योंकि इसी घंटे ये अपॉर्चुनिटी आपको हम देंगे.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: कहाँ कहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा आने वाले दिनों में दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी कई 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ में ये रहेगा और इसी शनिवार से लेकर अगले शुक्रवार तक.
3: और इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 ओंसलोएव मेनिकाउ यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये मनाया जाएगा सैटरडे 29 से लेकर फ्राइडे 4 अगस्त तक और आप इसका हिस्सा हर रात 7:30 PM से बन सकते हैं.
2: न्यूजीलैंड संगम द्वारा डेको ऑफ एलिगेंस 16 लेम्बी ड्राइव मेनुकाउ में ये कल से लेकर 4 सितंबर तक मनाया जाएगा और हर दिन रात 7:30 बजे से पूजा आरम्भ होगी और इसके बाद प्रसाद और भोजन का प्रबंध रहेगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू.
3: श्री राम मंदिर 11 हेंडरसन यहां पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा सैटरडे 29 से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक या सैटरडे 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक आप इसमें जरूर भाग ले सकते हैं. वैसे थर्सडे 3 सितंबर तक यहां पर हर रात 6 बजे से पूजा जो है शुरू होगी लेकिन फ्राइडे 4 सितंबर को जो अंतिम रात है यहां पर प्रोग्राम जो है ये शुरू हो जाएगा 5 PM से और देर रात 12 बजे तक ये चलता रहेगा.
2: इसके अलावा श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन भाग मंडली द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एव पापाटोई टोई में और हर रात 7:30 बजे से कथा होगी जिसमें जाकर आप हिस्सा ले सकते हैं.
3: आउतियरोवा सनातन संगम संस्था द्वारा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जो है ये मनाया जाएगा 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच और हर रात 7 से 9 बजे के बीच आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. वुमेन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग 2 Sutton Crescent पापाटोई टोई जो है ये आप पहुंच सकते हैं यहाँ पर इसमें भाग लेने के लिए. वैसे आपके आसपास आपकी कम्युनिटी की कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं जो आप चाहते हैं कि हम पहुँचाएं लोगों तक इनकी जानकारियाँ तो आप हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर buzz@humfm.com पर और इसके डिटेल्स जो है ये हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे. कमिंग अप वेरी शॉर्टली याद रहे आज का हमारा रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू ये आप कर सकते हैं और बदले में ड्रो में शामिल होकर दो लोग हमारे साथ जीत सकते हैं $250 कैश ईच.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, the coma again.
0: Driving you home. Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं है उसको.
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या. रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया अभी वो.
6: अभी ब्रांड हो गया ना.
5: रुस्बे के बाल लगे उससे.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए.
9: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
10: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
11: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते.
12: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
13: अब हमारा क्या होगा.
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
15: तो क्या करें.
16: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
2: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और Breakfast Show में आज हमने कहा था मौका आपको देंगे रक्षाबंधन कंपटीशन में पार्ट लेने का. Now आपको हमने ये भी रिमाइंड कराया है कि this is the final opportunity, the last opportunity on the Breakfast Show रक्षाबंधन के कंपटीशन में शामिल होकर siblings performance review में पार्ट लेते हुए अपने अपने नामों को ड्रो में शामिल कराने के लिए और साथ में जीतने के लिए $250 each. So, अगर आप इस आखिरी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, तो बस हमारे पास आपको कॉल करना है. सवाल हम आपसे पूछेंगे जरूर, मतलब कोई एक टॉपिक देंगे आपको जिस पर आपको अपने भाई या बहन को रिव्यू करना होगा. एंड वंस यू डू दैट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ जहां पर आप जीत सकते हैं ये कैश इनाम.
5: और आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग. हेलो
4: हेलो हेलो जी. गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग पूजा, आप कैसे हो?
4: बढ़िया बढ़िया जी. आप कैसी हैं?
6: All good. Haven't heard you in a while for some reason. But अच्छा लगा आपको सुनके.
4: अच्छा, हम तो यहीं पर थे, आप शायद कहीं बिजी होंगी.
6: Yes, you're right. I was just busy.
4: We are glad कि you could join us this morning and you could take part in the competition too.
6: I am happy. Yes, shoot.
4: तो आज आपके लिए जो हम यू नो कंपटीशन का सवाल लेकर आए हैं, इसमें आपको अपने भाई को रिव्यू करना होगा.
6: यार पता है मेरे को ना ये वाला, सॉरी आई एम गोना क्विकली से समथिंग, मेरे को ये सैंडी और रिजवान भी सेम कर रहे हैं ना कंपटीशन. एंड आई थिंक केतन का भी मैंने सुना, मैंने जानबूझ के नहीं पार लिया बिकॉज मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये.
4: क्यों?
6: आई एम डिस्टर्ब्ड अवे लाइक I don't know.
4: Okay. See, I think you're the second person जिनसे हमने रक्षाबंधन के मौके पर बातें की. Spoken about the fact कि उनका relation उनके भाई के साथ उतना strong नहीं रहा. And they're not even on talking terms. In fact, ये उन्होंने mention किया था. So we do. हाँ, but उतना गहरा नहीं होगा relationship as you've said it. But then in the other case, they are not even talking to each other. And it's quite sad. We do understand. But It's only, you know, it's a thing जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर कंट्रोल नहीं होता. But you know, we can only do the least is कि we hope and pray things work out. And कभी कभी रिश्ते थोड़ा गड़बड़ हो भी जाते हैं, फिर बाद में सही भी हो जाते हैं. कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होता एक दूसरे के लिए, एंड देन कम्स अ टाइम दैट यू गेट दैट फीलिंग बैक. सो इट डज हैपन. इट्स वेरी नॉर्मल, सैड बट नॉर्मल. So, सबसे पहले वी ट्रूली अप्रिशिएट फॉर यू टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन टूडे. अभी शायद आप अपने भाई से उतना क्लोज नहीं होंगी, सो अभी का सिचुएशन ना सही, बट द टाइम व्हेन यू गाइस वर यू नो टुगेदर, लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस और एनीथिंग, उस हिसाब से भी आप ये कर सकते हैं. ठीक है?
6: Sure.
4: तो सबसे पहले आप हमें बताइए आपका नाम, ताकि आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर सके.
6: आकृति.
4: आकृति. एंड योर ब्रदर्स नेम? आकृति.
6: आशीष प्राशर.
4: अच्छा, दोनों ए हैं
6: जी. आशीष आकृति.
4: ओके आकृति, वन मोर रिक्वेस्ट आईड लाइक टू मेक टू यू टुडे इज कि आप हमारे साथ लाइंस पर ही ठहरे रहिएगा, बिकॉज फॉर सम ओड रीजंस आपका नंबर हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे. दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू नोट डाउन योर नंबर. सो आई रिक्वेस्ट अगर आफ्टर द कॉम्पिटिशन जब गाना बजे तो आप लाइन पर रहिएगा, ताकि ऑफे आपसे आपका नंबर ले सके. ठीक है?
6: Sure, absolutely.
4: Right. आज आपके लिए siblings performance review में आपको review करना है आपके भाई को as a roommate. यू गाइज आर नॉट रूममेट्स 100% श्योर, बट ऐसा आप एवेल्युएट कीजिए या सोचिए कि अगर आपके भाई आपके रूममेट होते जिनके साथ आप एक रूम शेयर कर रहे होते, तो उस हिसाब से आपके भाई कितने अच्छे रूममेट होते।
6: I think he would be a good roommate. He was. जब हम बड़े हो रहे थे तो he used to stay with me in the room. हमारे पास एक ही room था तो अच्छा था. He was good. हमारे पास अपनी अपनी कबर्ड थी, दो कबर्ड. And even though उसके कबर्ड मैसी होती थी but वो room मेरे हिसाब से रखता था. Yeah, he was a good roommate. हमारा toilet share था तो maybe थोड़ा बहुत इधर उधर काम हो जाता था but साफ कर देता था.
4: So you can definitely say your brother would be a good roommate.
6: Yeah.
4: और अगर आपको उनको रेट करना हुआ out of 10 then?
6: Honestly, I would rate him 8. As I said, he's a good. He was a good roommate, and wow. I think he still will be.
4: That's nice.
6: Better than my husband.
4: अरे ये कही ना आपने काम वाली बात. But thank you so much, Akriti. Thank you so much for calling in and definitely for you to take part in the competition. आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं. And as requested, please stay on the line so हम आपका नंबर नोट कर सके, ठीक है? तो आज का फाइनल अपॉर्चुनिटी जो हमने ब्रेकफास्ट शो पर दिया, आकृति ने इस मौके का फायदा उठाया. इन्होंने सुना हम पर ये कॉम्पिटिशन होते बट शी डिडंट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन, लेकिन टुडे शी मेड अ पॉइंट टू टेक पार्ट. हु नोज, ये उनके लिए वो मौका हो ना
5: सबसे लकी वाला.
4: एब्सोल्युटली. सो रिमेंबर, आज आखिरी दिन है रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का. एंड वेन वी से रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन, वी मीन बोथ द कॉम्पिटिशन जो आपके लिए हम रेडियो पर सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, और फेसबुक पर हमारा जो रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन है, वन ऑब्जेक्ट वाला जो कॉम्पिटिशन, जहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो जो है ये डालनी है, और हमने पोस्ट किया हुआ है फीचर्ड फोल्डर में, आपको मिल जाएगा रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन पोस्ट. उसी कॉमेंट पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में आपको किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की फ़ोटो डालनी है जो आपके और आपकी भाई या बहन के लिए काफ़ी मेमोरेबल है. यू शेयर अ स्पेशल मीनिंग विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. उसकी फोटो डाले, दो तीन लाइन में एक्सप्लेन करें क्यों वो आपके लिए स्पेशल है, और अपने भाई या बहन को टैग करें,
5: और आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे. कल जो ड्रो सुनेंगे उनमें $300 कैश जीतने का मौका है आपके पास.
1: Bollywood's most wanted.
7: Gundi ghad dao. Ya seedha andar aao.
8: Main laun apna A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

23 minutes away from 10 for now on the breakfast show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा ये What's Going On का प्रोग्राम, जहां पर थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का डेली राउंड अप ये भी रहेगा. By the way, 100 years of resilience, migration and identity.

0: से न्यूजीलैंड में जो पंजाबी कम्युनिटी है उन्होंने मॉडर्न न्यूजीलैंड को शेप करने में हेल्प किया या ओवर द लास्ट सेंचुरी उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अनफिल्टर्ड का रीसेंट एपिसोड जो ये चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हरजोत सिंह प्रेजेंटर रिसर्चर और गगन संधु डायरेक्टर द क्रिएटर्स बिहाइंड द ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू आउटरेवा, ये इन्होंने तैयार किया है, इनसे बात हुई है। दे शेयर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ करेज सेक्रीफाइस एंड ऑफकोर्स बिलोंगिंग फ्रॉम generations of Punjabis जिन्होंने अपने dreams और अपनी जो मेहनत है ये लेकर यहाँ New Zealand आए और फिर यहाँ से उन्होंने अपनी जिंदगी जो है ये वापस से शुरू की। तो the 100 year history of Punjab migration to New Zealand, ये सब कुछ आपको सुनने को और जानने को मिलेगा। If you need details, all you need to do is drive, text कर सकते हैं आप 5599 पर, और आप Rover या Spotify पर Unfiltered with Sandy and Roozbe जो है इसे सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट the latest episodes जो ये यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है।
1: तो हमारे बहुत सारे म्यूजिक स्टेशन पॉडकास्ट वगैरह जो है ये भी आप चेकआउट करते रहें रोफा पर, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की अपनी ओर से हम कोशिश करते रहते हैं।

0: please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
2: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
3: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
2: Really?
3: Yep, and they can deliver in as little as 8 weeks.
2: Zelo. I like the sound of that.
3: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
4: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
8: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
7: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
9: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: What's going on?
15: 17 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 10 बजने में डेली राउंडअप में सबसे पहले तो कम से कम 5 न्यूजीलैंडर्स जो हैं ये गायब बताए जा रहे हैं नेपाल और चाइना के सरहद पर आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से इसमें अभी तक कम से कम 160 लोगों की मौत हो चुकी है न्यूजीलैंड हाई कमीशन जो न्यूजीलैंडर्स जिन पर इसका असर पड़ सकता है उनसे जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है जो लोग फिलहाल नेपाल में हैं उनसे मांग की गई है कि वो लोकल अथॉरिटीज साथ में एमफेट का जो एडवाइस है उसे फॉलो करते रहें और अगर कोई न्यूजीलैंडर है जिनको तत्काल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो 649 9202020 पर संपर्क कर सकता है। और अभी तक अगर देखें जानकारियों के मुताबिक वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं बुद्धिस्ट थे, जैन थे और अलग अलग जगह से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। और पिलग्रिम्स ऑफन वॉक अराउंड द डिस्टिंक्टिव पिरामिड शेप माउंटेन, लगभग 30 माइल एल्टीट्यूड ट्रेल है। लेकिन इसके अलावा कई जगह पर कहा जा रहा है कि बाढ़ से घर और संपत्ति जो है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने एक्स पर जाकर कहा है कि एक स्टेटमेंट जो है ये इशू किया है, जिसमें कहा है वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड इन नेपाल रसुआ डिस्ट्रिक्ट और नेपाल चाइना बॉर्डर एरिया में। न्यूजीलैंड एक्सटेंड्स इज कंडोलेंसेस टू ऑल दोज अफेक्टेड। We are in touch with the authorities in Nepal, including about New Zealanders who may have been affected by the disaster.
16: वैसे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ये घटना जो है घटी कैसे, what's the actual cause जिसकी वजह से ये हुआ। तो साइंटिस्ट जो है ये फिलहाल अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन जो सामने आया है इज़ बेसिकली ऑफ अ ह्यूज लैंडस्लाइड इन्वॉल्विंग आइस एंड रॉक। ये जो लैंडस्लाइड है इट मे हैव स्टार्टेड इन द माउंटेंस, हाई इन द माउंटेंस पॉसिबली, जिसमें पार्ट्स ऑफ द ग्लेशियर जो है ये भी शामिल है। एज द एनॉर्मस मैस ऑफ आइस एंड रॉक जो है क्रैश डाउन द माउंटेन साइड, जिसके बाद चलकर वहाँ पर कुछ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वेट सोइल और डिब्रीज वगैरह जो है ये भी इसमें पिकअप हुआ। And it sent a powerful torrent rushing into the river below. Interestingly, what was initially reported as a 4.4 magnitude earthquake, इसे बाद में चलकर पाया गया कि it was not to be an earthquake at all. Scientists ने कहा है कि ये जो landslide itself created the ground shaking, जो इतनी जोर से shake हो रहा था, which was equivalent to about a 5.2 magnitude earthquake. तो कोई earthquake नहीं था, it was just the लैंडस्लाइड जिसकी वजह से वैसी फील जो है ये आई कि 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हो। अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो सामने आया है इज अ ग्लेशियल लेक जो सडनली बर्स्ट हुआ, बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस करंटली सजेस्ट करते हैं देयर वाजंट अ लार्ज लेक अपस्ट्रीम, जिसका मतलब है कि ये लेस लाइकली है। हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो कंसिडर्ड लेस लाइकली टू बी मेन कॉज, ऑल्दो ये करंटली मानसून सीजन है, सो रिवर्स जो है वो ऑलरेडी कैरिंग मोर वाटर। और साइंटिस्ट ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज कुड हैव प्लेड अ रोल बाय वार्मिंग अप द हिमालयस, मेल्टिंग द ग्लेशियर्स और वीकनिंग माउंटेन स्लोप्स, बट ये स्ट्रेस कर रहे हैं दैट इट्स स्टिल टू अर्ली टू से वट एग्जैक्टली ट्रिगर्ड दिस डिजास्टर। इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं टू डिटरमिन द फुल स्टोरी कि असल में ये घटना घटी कैसे।
15: अन्य खबरों में अगर देखें, दो लोग घायल हुए जब कल एक एक्सीडेंट के बाद साउथ ऑकलैंड में मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर एक गाड़ी पर गोलियां भी चलाई गई। अलेज्ड ऑफेंडर्स फ्लेड द सीन और अभी तक पुलिस उनकी तलाश में है। पुलिस को कल शाम 5 बजे के वक्त रॉनवुड रोड मैनुकाव बुलाया गया, जब एक टोयोटा और वोल्क्स वैगन के बीच एक दुर्घटना घटी। सीनियर सर्जेंट अजीत बसरा ने बताया कि एक व्यक्ति जो टोयोटा में था उन पर वोल्क्स वैगन के जो ऑक्युपेंट्स थे उन्होंने हमला किया। दो लोगों को कुछ चोटें आई और उनमें से एक जो है इनको अस्पताल जाना पड़ा। ऐसा समझा जाता है कि टोयोटा पर एक गोली भी चलाई गई थी, जिससे गाड़ी को कुछ क्षति पहुंची है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
1: आज की पहली बात कहते हैं कि आजकल लोग जरूरत पड़ने पर रुई की तरह नरम हो जाते हैं और जरूरत खत्म होने पर सुई की तरह चुभने लगते हैं।
2: अरे वाह।
1: और दूसरी बात, घाव से भी अधिक कुछ दुखदाई होता है, वो है लोगों से झूठा लगाओ।
2: ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होती है अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आज है थर्सडे द 27th of August, रिमाइंडर कि टुडे इज द फाइनल डे टू टेक पार्ट इन आवर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन। तो ज़रूर मौका मिले, पार्ट लीजिएगा ताकि आप इसका हिस्सा बन सके, इसमें भाग ले सके और विजेता जो है ये हो सके। पर ऑन द अदर हैंड ये भी याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हम लेकर रहे हैं ताकि आपका फायदा हो। हमारे साथ आप इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसे और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज से भी फायदा जो है उठाते रहे। चलिए, टेक केयर, एंजॉय योर थर्सडे, सी यू ऑल टुमारो।

जीवन में सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो होता है समय, क्योंकि जो समय सिखाता है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। और इसी नोट पर मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक ये बताते हुए कि टाइम इज मनी आ चुकी हूँ स्टूडियोज में, 12 बजे तक आपका और मेरा साथ बना रहेगा। कशिश फूड्स के सौजन्य से मैं कशिका आपका साथ निभाती हूँ 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। वैसे कशिश फूड्स भी आपको रक्षाबंधन के मौके पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जाइएगा जाकर कुछ स्पेशल जो हैं कशिश फूड्स के वो ज़रूर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रोसरी इंडियन स्टोर्स में जाके आपको वो भी मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज क्या होने वाला है, देखो मेरी ओर से मैं फाइनली एक कॉलर लूँगी, एक नहीं तो भी ले सकती हूँ, डिपेंडिंग कि आप $250 यानी कि $500 अपने और अपने भाई या बहन के लिए जीतना चाहते हैं कि नहीं। बहुत ही इजी होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग सब वेट करते रहते हैं कि राखी भेजी कि नहीं भेजी, मिली कि नहीं मिली, राखी आएगी कि नहीं आएगी भाई बहन की। तो ये एक एंग्जाइटी हमारे दिल में रहती है, उसकी वजह से लगता है क्या हमारे साथ हमारे भाई बहन का रिश्ता इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। खुद को रिव्यू करेंगे अगर आप, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है। कल तो राखी का दिवस है, तो चलिए इसी नोट पर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर के बाद राखी से रिलेटेड गाना सुनने के बाद मैं टेलीफोन लाइंस भी खोलने वाली हूँ। वेलकम ऑन माय टाइम, मेरे साथ काशिका के साथ। बजाओ क्या? हाँ चलो बजाओ क्या। याद रहे कि हमारी हम बोर्डिंग कॉल का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, जैसे ही वो हो तो समझ लीजिए कि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है रोवा पे जाके सबमिट करने के लिए बोर्ड नाउ योर एंट्री इन ऑर्डर टू गेट इनटू द ड्रॉ ऑफ टू रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 कैश।

0: That's a dub.
1: I know this song is so emotional and I'm very sure बहुत से भाई बहन जो मुझे सुन रहे होंगे वो इस समय emotional ज़रूर हो गए होंगे. हमें सारी उम्र साथ रहना है लेकिन कभी कभी ये जो रिश्ते होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए कई ठंडे पड़ने लग जाते हैं, है ना. और ऐसे में जब ये रिश्ते ठंडे पड़ने लग जाते हैं उस समय आपने अपने हिसाब से राखी भेजी, आपको लगा राखी नहीं मिली अब तो और प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कुछ और यू नो एक एंग्जाइटी फीलिंग आने लगती है. आपका रिश्ता अच्छा भी हो सकता है और आपको फिर भी एक एंग्जाइटी होती है, राखी मिली कि नहीं मिली, ठीक है ना. अच्छा ये एक तरफ, एक ये बहन के नज़रिए से, भाई के नज़रिए से होता है कि यार मेरी बहन की राखी नहीं आई तो मैं बिल्कुल अधूरा फील कर रहा हूँ. आप तो मैं यहाँ रह रहा हूँ और देखो मेरी बहन ने मुझे राखी भेजी कि नहीं भेजी, पता नहीं पोस्ट एनजेड पोस्ट ने कहाँ पे ऐड कर दी, किसी के थ्रू राखी भेजी, क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में कि वाया राखी आई. मेरे साथ तो हुआ है तो इसलिए मुझे पता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा. तो मुझे आपको अभी कॉल करना है 0800 00 हम पर एंड इंश्योर दैट आप अपनी कोई बात मुझे ज़रूर बताएं, अपनी फीलिंग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें क्योंकि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करने वाली हूँ. कल सुबह ब्रेकफास्ट शो में ये ड्रॉ भी होगा तो याद रहे आपने कुछ भी आपके मन में चल रहा है एक अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए, अपने भाई बहन की परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए. वो राखी भेजना भूल गए आपको मगर आप उनको गिल्टी महसूस नहीं कराना चाहते, है ना. और आप या ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि हुआ हो, ठीक है. तो चलो आई विल वेट फॉर योर कॉल. 0800 00 4866 इज़ द नंबर जिस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं. याद रहे कल एक और ड्रॉ होने वाला है और वो हमारे फेसबुक का ड्रॉ है जहां पर विनर $300 कैश लेके जाएगा. बस सिंपली आपको अपने भाई या बहन की कोई ऐसी मेमोरी जो आपने अभी तक रखी है संजो के संभाल के अपने दिल के पास रखी है, बस आपको क्या करना है उसकी फ़ोटो उतारनी है और हमारे फेसबुक के पेज पर उसे पोस्ट कर देना है. एंड दैट्स अबाउट इट. आप मेरे अपने भाई या बहन को टैग कीजिए और साथ में अपनी कहानी लिख डालिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. दैट्स अबाउट इट. आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा एंड ये कल ड्रॉ जो है शाम को निकलने वाला है. सो टाइम नाउ टू प्लीज कॉल मी 0800 00 हम 0800 00 4866 पर जब आप फोन करेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए आपकी एंट्री के लिए रास्ता खुल जाएगा. ऐसे मैं बार बार तो नहीं कहती हूँ लेकिन हाँ ये आखिरी बार राखी के लिए डेफिनेटली कहना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं ये कॉल आपको यू नो करने का मौका नहीं देने वाली हूँ. ओके तो चलो ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए. बाय द वे हाउ इज़ एवरीबडी फीलिंग नाउ. आई एम श्योर बहुत सारे लोग अब रिकवर कर रहे हैं फ्लू से. आपके साथ क्या चल रहा है बताइए.
0: माय टाइम विद कशिका
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में. आप ही तो नहीं
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो खुश करो.
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया इंडियन किचन एंड बार PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
6: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोयतोय. सोना संसार, संसार रिश्तों का.
7: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट. एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
10: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: Office shout out.
1: So, office shout out में इस समय आप टीना मुझे सुन रही हैं माउंट रॉस्किल से. From your, you know, you do some kind of a business, a Vagar Kitchen. ओके, टीनाज वगार किचन से आप मुझे मैसेज कर रही हैं एंड आप गाने सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं. और भाई बहन से रिलेटेड आपने कुछ बताया नहीं, ना कॉल आया किसी का, कोई बात नहीं. बट एक बात बता देती हूँ, स्टारशिप हॉस्पिटल अब ये बता रहे हैं कि कुछ जो लेस अर्जेंट केसेस हैं ना, वो थोड़े से डिफर कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ फ्लड ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं स्टारशिप हॉस्पिटल में विथ फ्लू सिम्टम्स. डॉक्टर्स ने कहा है कि एक फ्री अंडर 5 का फ्लू वैक्सीनेशन जो है लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था एंड प्रॉब्ली दैट कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प. तो ये एक रेस्पिरेटरी खास तौर पे स्पेशलिस्ट जो हैं उनका ये कहना है, जो बच्चे हैं अराउंड द कंट्री उन लोगों को एक बहुत बड़ा वो जिसे कहते हैं ना कैच कर लेते हैं फ्लू, तो उसके बाद एक उनका इन्फ्लक्स हॉस्पिटल्स में बढ़ता चला जा रहा है. देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस वायरस इटसेल्फ, बट बच्चे जो होते हैं कई बार उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है इनकेस देर इज़ अ सीरियस सिम्टम. और ये जो कुछ होता है कहीं पे लाइक यू नो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग विद द ऑक्सीजन इंटेंसिव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हेन द पेरेंट्स गेट स्केयर्ड. और ये आउटब्रेक जो है अभी उन लोगों को खास तौर पे लिया जा रहा है जो इस सिचुएशन में ज्यादा हैं, तो उनको अटेंड ज्यादा किया जा रहा है स्टारशिप.
10: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वैसे हमारी तो कोई ब्रांच है ही नहीं, लेकिन आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, रुवा ऐप के जरिए सुन रहे हैं. हमारे डिफरेंट म्यूजिक स्टेशंस को भी आप उसके जरिए डेफिनेटली सुन सकते हैं, चाहे वो हम रिवाइंड हो, जूक बॉक्स हो, फीजी कीर्तन, फीजी कीर्तन संग्रह, या फीजी भजन, चढ़दी कला यानी पंजाबी हिट्स, या राहत फतेह अली खान के गाने. तो आपको हम बिल्कुल ये रुवा ऐप के जरिए सुनाते चले जा रहे हैं. वैसे हमारे एक पॉडकास्ट जो है जहाँ 100 ईयर्स ऑफ रेजिलियंस, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी, ये तैयार है, जहाँ पे हमारे अनफिल्टर्ड मिस सैंडी एंड रुस्बे ने बातचीत की है विद गगन संधू एज वेल एज हरजोत सिंह, और इन्होंने बताया कि किस तरह पंजाब की कम्युनिटी जो है मॉडर्न न्यूजीलैंड में हैज बीन देयर फॉर ओवर अ सेंचुरी. चलिए आपको इसका डिटेल बता देती हूँ, 5599 पे ड्राइव लिख के भेजें और आपको ये लिंक मिल जाएगा. आपने गाना सुना तुम्हारी सुल्लू का, एंड ऑफकोर्स रिमेंबर इस फिल्म में नेहा धूपिया थी, जिनका आज बर्थडे है, अलॉन्ग विद समबडी जिन पर यह गाना पिक्चराइज किया गया, बिनते दिल, एंड ही वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस, जिम सरब एंड पद्मावत मूवी.

0: सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी ड्रीम कौन सी आपको परेशान कर रही है, क्या क्या हो सकता है आपकी ड्रीम का एक इंटरप्रिटेशन. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एंड प्रोबेबली गेट इनटू इट. और साथ साथ जब मैं बातें कर ही रही हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, जहाँ पे एक अमेजिंग सा कमाल का आई थिंक एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है न्यूजीलैंड में, जहाँ पे वहीदा रहमान जी कहा जा रहा है तीसरी कसम फिल्म लेकर अपनी आने वाली हैं. इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग. और साथ में जीवन बीमा योजना ट्रेलर जो है अरशद वारसी, जहाँ पे डबल रोल अदा करने वाले हैं वे संजीदा शेख. ये एक डार्क कॉमेडी है, कहा जा रहा है कि ये भी अपने वर्ज पर है रिलीज होने के लिए. ओके, चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, सपनों तक भी लेके चलते हैं. ओके, चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया.
1: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में. उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
6: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए

0: packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hump boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with two return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: Dream Diary.
3: Now, this dream is definitely related to your subconscious mind, because you have मुझे कॉल किया. यू हैव बीन इमोशनल बिकॉज आपको आपके भाई या बहन जो भी हैं बहुत ज़्यादा आप उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो आपका ड्रीम आता है उनके बारे में, तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इसका एक ही मीनिंग जो है जो मुझे समझ में आता है, यू नो, योर फैमिली कनेक्शन. किस तरह से आप पीसफुली आप अपनी हार्मनी के साथ, यू नो, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं. शायद आपसे वो बहुत दूर हैं और आपको पता नहीं कि कैसे आप उसे एक्सप्रेस करें. हमारे गाने सुन के, हमारे सारे प्रमोशंस को सुन के शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई, ऐसा कुछ आपके यादें जो हैं वहाँ आपको लेके जाती हैं. सो एट द बैक ऑफ योर माइंड यू बीन हियरिंग द सॉन्ग, यू बीन हियरिंग अस टॉक, तो शायद वही ड्रीम में आपके आता है. इसी तरह से आप अपने आप को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके भाई या बहन आपसे कुछ दूर हैं, है कि नहीं. शायद ये दिल से दिल तक की बात अब तक मैंने समझ ली है.
2: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: एक बात तो है, थैंक यू सो मच सपना फॉर रिमाइंडिंग मी. लेटली जिम सरब इज नोन फॉर मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी. अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो दिस इज़ अ हिंदी लैंग्वेज एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो एक टेलीविजन सीरीज है विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक ऑफ विनय कामत टाइटन इनसाइड इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड. और ये जो है उस पे बेस्ड है ये सीरीज जो है. इसमें स्टार कर रहे हैं जिम सरब, नसीरुद्दीन शाह अलोंग विद वैभव ताटवाड़ी, नमिता दुबे एक्सेट्रा. और कहा जा रहा है कि इट वॉज सेट इन 1978 और बॉम्बे में और मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी. ये जो है टाइटन जो है जर्क्सिस जो देसाई है और आकाश दीक्षित इनका एक एक वो विजन है जहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया में लोग स्मगल करके घड़ियों को ला रहे थे वेरियस अदर ब्रांड्स और क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ये पूरी कहानी है और इसमें जो दो रोल अदा कर रहे हैं जेआरडी टाटा का रोल अदा कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, जर्क्सिस देसाई का रोल जिम सरब करने वाले हैं. एंड आज वो बर्थडे बॉय जो है अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सपना फॉर रिमाइंडिंग मी.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 18 overnight, temperature of 12. आज का forecast बताया जा रहा है. सुबह के समय fog जरूर आपको नजर आया था. Cloudy day के साथ साथ कुछ showers कहीं ना कहीं जरूर पड़ी हैं. Northerlies के साथ इस समय आप 17 degree temperature महसूस कर पा रहे हैं. 5:57 पर sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: Kia ora, namaskar and a very very good morning to you people. How are you? 11:04 hone wale hain as I speak and saath मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए 12 बजे तक स्टूडियोज़ में हाज़िर हूँ. 10 से 12 का ये जो सफ़र होता है आपके लिए ये आनंददायक करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करती हूँ. बतियाती ज़्यादा हूँ है कि नहीं, लेकिन अ बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स, जिनके सौजन्य से ये मंडे टू फ्राइडे आपके लिए मुमकिन हो जाता है. प्रोग्राम की शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने एक ही बात कही थी. मैंने कहा था जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जब समय सिखाता है वो हमें कोई और नहीं सिखा पाता. और समय के साथ साथ बहुत लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं. ऐसा ही होता है. अब देख लीजिए ना, थर्सडे हो गया, फादर्स डे का मौका आ रहा है. समय के साथ साथ ये भी समय जल्दी निकल जाएगा, कल रक्षाबंधन का मौका है. और आप लोगों की बहुत सारी बातें मुझे समझ में भी आई, पता भी चली, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल्स आई. तो अब पारी है उस फादर की या उस सन की या उस डॉटर की जो अपने फादर के बारे में कुछ बताना चाहेगी. तो क्या बताना चाहेगी? क्या आपने अपने फादर को कुछ सिखाया, कुछ बताया? बहुत कुछ होता है ऐसा, है ना. और इन सब बातों को समझने के लिए ये जेन ज़ी, ये अल्फा, इस तरह के मिलेनियल बच्चे ये जो हैं कुछ नई नई भाषाएं लेकर आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लेकर आते हैं. जैसे कि कल मैंने आपको रीमा के बारे में बताया था और रीमा और नील के बारे में बताया था कि उन लोगों के उनसे मैंने भी कुछ सीखा है कि नहीं. तो चलो थोड़ी देर बाद आपकी एंट्रीज हम डेफिनेटली लेने वाले हैं. एंड बजाऊं क्या, चलो बजाती हूँ.
0: बजाओ क्या,

0: से है।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Eat better, live better. Okay, here we go. अभी आपने मुझे कॉल करना है और मुझे 800 हम पर कॉल करके बताइए कि क्या आपको लगता है, क्या आपके फादर जो हैं बिंदास हो चुके हैं, क्या आपके फादर जो हैं माफ़ कीजिएगा वो जो मॉडर्न स्लैंग है, जो पॉप कल्चर है, जो टेक्स है, टेक यू नो टू बी अ टेकी, हैज़ ही बिकम लाइक दैट और नॉट। 800-4866 पर मुझे कॉल कीजिए एंड देखते हैं, आपका नाम है ड्रॉ में ऐड भी कर सकती हूँ। $500 कैश अगले फ्राइडे जीतने का ये सुनहरा मौका है। तो चलो डैड्स, अगर आप सुन रहे हो, आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉल करके डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप समझ सकते हैं। बाय द वे, जब ये डैड इतने हाईटेक हो जाएंगे तो आप अपने डैड को एक सुपर हीरो भी बना सकते हैं। आई सॉ अ कपल ऑफ पोस्ट जो फेसबुक के पोस्ट जो आप लोगों ने बनाई है, AI जनरेटेड आपने एक अपने डैड की इमेज बना के पोस्ट किए, इट्स रियली लवली, ऑनेस्टली इट्स वेरी नाइस। तो अब आपने अगर अभी तक नहीं किया ये तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगले फ्राइडे के दिन ये ड्रॉ होने वाला है और आपको ये सुनहरा मौका मिल रहा है जहाँ पे आप अपने फादर की फ़ोटो को AI जनरेटेड एक सुपर हीरो की यू नो रूप में रेडी करें, फिर अपने डैड को टैग कीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना है, अपने भाई बहन बंधु ऑफिस वाले पड़ोसी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके हैं उनको बोलिए कि इस पोस्ट को जो आपकी है उसको लाइक करें। जब वो लाइक करेंगे, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको बोलिएगा कि हम के पेज को भी उन्हें लाइक करना पड़ेगा, तो आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ये ड्रॉ 4 सितंबर को हो रहा है, इसके लिए भी $300 कैश हम देने वाले हैं। तो चलो भाई, हम किसी डैड को या कौन है ये इनको कॉल पर लेते हैं। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
3: गुड मॉर्निंग, पूजा बोल रही हूँ।
2: हेलो, मैं ठीक हूँ। पूजा आप बताओ कैसे हो?
3: बढ़िया बढ़िया। फादर्स डे का कॉम्पिटिशन, मेरे तो फादर है नहीं बट फादर इन लॉ हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: हाँ तो हाँ, मैं उनको उनमें देखती हूँ चेंजेस काफी हो गया जी अब।
2: अच्छा, जैसे
3: काफी लाइक जैसे कि भाई वो अब ही 79 तो वो अभी, लेकिन फिर भी उनको हर चीज में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में मोबाइल में हर चीज सीखने में करने में, और मोबाइल में तो काफी चीजें उनको ऐसी आदत आती है देख के, जो उनको लगता है कि हाँ भाई वो सीख रहे हैं।
2: अच्छा।
3: कोशिश करते हैं सीखने की। हाँ, एडवांस हो रहे हैं। जैसे अभी इंडिया में थे तो फिर मैनुअल गाड़ी चलाते थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाने लग गए हैं अब।
2: ओहो, क्या बात
3: जी। कार्ड वगैरह सब यूज कर लेते हैं, फोन ऐप लाइक काफी चीजें वो एडवांस हो रहे हैं।
2: अरे वाह,
3: कोशिश कर रहे हैं जेन जी के माहौल में आने का।
2: अरे वाह, क्योंकि
3: ग्रैंडसन है ना जेन जी।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो सिखाता होगा ना आपका बेटा?
3: हाँ, मेरा बेटा। हाँ जी हाँ।
2: तो आपके फादर का नाम अगर आप बता सकें तो, फादर इन लॉ का?
3: उनका नाम है सुरेंद्र मल्होत्रा।
2: सुरेंद्र मल्होत्रा, ओके जी
3: जी।
2: मैंने उनका और आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया है फॉर द जेन जी फादर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कॉल, बाय
3: बाय।
1: योर अटेंशन प्लीज, वी आर नाउ इनवाइटिंग ऑल पैसेंजर्स बुक्ड ऑन फ्लाइट हम 104.2 टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस टू बिगिन बोर्डिंग इमीडिएटली। Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉ
0: लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
9: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
7: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
10: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकि तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
12: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
13: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Ladies and gentlemen. Okay.

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Six-word story.
2: I understand how emotional it gets when it comes to a father. और जब ये father की बात कर रहे हैं तो इन्होंने message किया कि yes, इनके father की इनको याद आने लगी जब I think पूजा आपका call आया था and उन्होंने कहा कि He cried silently, holding my hand. This is my six-word story. And it is really, really emotional. So, thank you so much. And aap jab is tarah likhte hain, to bahut achha lagta hai. And I'm sure you must be missing your father. Father's Day ke mauke pe ek kaam karo. Ek surprise kar do, video call kar do. Kuch unke liye yahan se aisi gift bhej do, jo aapko lagta hai, agar wo yahan nahi hai to... तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं सपना थैंक यू सो मच ये आपका मैसेज है ये सपना वो सपना नहीं है जिन्होंने टाइटन स्टोरी वाले में के बारे में बताया था आई एम 100% श्योर क्योंकि वो दो टेलीफोन नंबर्स मोबाइल नंबर्स अलग अलग ही हैं चलिए यहाँ तक हम पहुँच ही चुके हैं फाद सिक्स डे की स्टोरी पर तो आपने अभी अभी क्या सुना आपने अभी अभी सुना है हम बोर्डिंग कॉल का अनाउंसमेंट सो 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ आप जाइए रोवा ऐप पर जाकर फटाफट अपनी एंट्री कीजिए बोर्ड नाउ फटाफट कीजिए और 5599 पे बीसी लिख के भेजिए अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा जल्दी करो टाइम ना चला जाए वरना फिर ये जो दरवाज़ा खुला था बोर्डिंग गेट आपके लिए बंद ना हो जाए ठीक है याद रहे दो रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 पेंडिंग मनी कैश आपको मिलने वाला है एंड इसके साथ साथ ये खूबसूरत मौका है जब वनुआटू को आप जाकर देख सकते हैं एंड साथ में यू नो सॉलोमन एयरलाइंस के बारे में बता दूँ आपको फ्लाइंग फोर टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू ये करते हैं और अगर आपको ज़्यादा जानकारी इनकी फ़्लाइट्स के बारे में चाहिए तो flysolomons.com के ज़रिए आप कर सकते हैं हमारी कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि आपको इस पैराडाइज में जाना है लेकिन क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं तो आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं आप डेफिनेटली हमारे वेबसाइट के ज़रिए या फिर रोवा ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं एंड 4281 I love it too. Thank you so much. Dad's love makes every day brighter. Dad's love makes every day brighter. Ab ye maine kaha boarding call BC, not BD. BC likhe. Ye link aapko mil jayega. Jaldi karo. Aadha ghanta hai. Bhago.
1: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
2: मिर्ज़ापुर मूवी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक

तो आपका टेक्स्ट आया है, इट इज बीसी बोर्डिंग कॉल. बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म है बीसी. तो अगर आप, मैंने अनाउंस कर दिया आपके लिए 9498 एंड 6463 रॉन्ग कोड, 6463 अगेन बी एन इज नॉट द कोड. झरना व्यास आपने बिल्कुल सही लिखा, 7101 आपने बिल्कुल सही लिखा, 9498 आपने भी सही लिखा, 6226 आपने सही लिखा. अभी पहले आपने बीडी लिखा था, फिर उसके बाद बीसी लिखा, परफेक्ट. यानी बोर्डिंग कॉल का बीडी बीसी हो जाता है.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: क्या बात है 6463 आपने बराबर लिख के भेजा मुझे एंड इट्स ग्रेट. अच्छा अब ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा होता है और हम चाहते हैं कि हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बने. ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी अगले हफ्ते है और ऐसे में ये सैटरडे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है एट द केव कैवेंडिश ड्राइव मैनकाओ में 7:30 बजे से आप यहाँ पहुँच सकते हैं. रामकृष्ण मंदिर ऑन स्लो एवेन्यू में भी ये प्रोग्राम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है. इसके साथ साथ श्री राम मंदिर में भी सिमिलरली एंडरसन में भी ये जन्माष्टमी का महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाने वाला है. आउटरोआ सनातन संगम संस्था यहाँ पर भी आपके लिए सबको वेलकम किया है. आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, पधार सकते हैं एंड दिस इज़ एट द सटन क्रिसेंट पापा टोईटोए. और खाली एक ही जगह जहाँ पे प्रोग्राम कल से शुरू होने वाला है और वो है न्यूजीलैंड संगम. यहाँ पर आप 16 लैम्बी ड्राइव डेकोर ऑफ एलिगेंस वेन्यू जो है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और कथा जो है वो नलिश नायडू जी भी करने वाले हैं. तो डेफिनेटली हम भी आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बनना चाहते हैं. जब अगर आपको कोई मैसेज भेजना है जो फ्री आपका इवेंट है कम्युनिटी के लिए, हम ज़रूर फ्री में उसको आपके लिए अनाउंस करेंगे. buzz@hamfm.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं.
4: Drive show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं उसको.
6: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया
6: अभी ब्रांड हो गया ना
5: रुस्बे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City.

0: ओमुड़ा जेकू।
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा,
9: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
14: Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
15: Flooring Extra. Adore your floor.
16: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.

हफ्ते हम आलू को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल आपने मुझे कॉल करके बताया कि ये बॉम्बे पोटैटो ऑमलेट, अच्छा इसमें आपने बताया, मैं लिख तो लिया था कि आपने कहा था पहले ऑयल गरम कीजिए, उसमें फ्राई कीजिए अनियंस को, और 10 मिनट तक जब तक वो कैरमलाइज नहीं हो जाते, उसके बाद उसमें जो पोटैटो बचा हुआ है, आलू बचा हुआ है, उसको फ्राई कीजिए और उसको भूनते चले जाइए। जब वो क्रिस्प होने लग जाता है, अपना ऑयल छोड़ने लग जाता है, तो उसमें कोई भी करी पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, कलौंजी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा मार सकते हैं, कुक कीजिए उसको लगभग यू नो इस मिक्सचर को 1 से 2 मिनट तक, और फिर प्लेट पर आप ले आए। अब पैन को उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से किचन पेपर से, पेपर टॉवल से क्लीन कर दीजिएगा। अब गैस को बढ़ाने के बाद उसमें तेल डालें, उसमें अंडा डालें, और जो भी आपको अंडे के अंदर आपको ऐड करना है वो आपने नमक काली मिर्च वगैरह डालने के बाद, फेंटने के बाद आपने लिया और उसको आपने उसमें ऐड कर दिया। उसे करीब 30 सेकेंड्स तक आपने पकने दिया। फिर उसमें आपने ये जो फिलिंग आपने तैयार की है, ये आपने उसके ऊपर अच्छी तरह सॉफ्टली बिछा देनी है, और फिर आपको जब आपका अंडा रेडी होने लगता है उसको पलट दीजिएगा आप। जब आप पलट देंगे तो आप इसको बिल्कुल, आपका ये रेडी हो चुका, आपका ये एक तरह से बॉम्बे पोटैटो ऑमलेट तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको सर्व करना, तो इस पर हल्का सा रायता या कुछ चिली सॉस या कुछ जो भी आपको ठीक लगे इसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और एक अलग किस्म का ये ऑमलेट तैयार होगा, उसको आप पराठे के साथ ज़रूर खा सकते हैं। I am quite loving the idea. Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलो भाई, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन अभी आपको एक चीज़ बतानी है. जो जेनेसिस जो है एनर्जी, इनका नेट प्रॉफिट जो है वो हाफ पे हो गया टू 85 मिलियन इन द ईयर टू जून. और ये इन्होंने बताया कि 11% लिफ्ट हुआ इन अंडरलाइंग अर्निंग्स और रेस्ट डिविडेंड्स की वजह से. तो चलो भाई, ये तो जेनेसिस की बात मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दी है, बट अभी के लिए चलती हूँ. कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ और कह सकती हूँ के कीचु स्वीकार कर शिकार कर. नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, जो भी से कहना चाहें. मेरी मुलाकात होगी आपसे, वो दिन कहलाएगा, अरे भाई, रायता फैलाने वाला TGIF, यानी कि शुक्रवार. कीप स्माइलिंग, कीप हमिंग, एंड दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज. लुक आफ्टर योरसेल्फ्स.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
7: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
8: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
7: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
8: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
7: Elite Bathroomware.
8: A reflection of you.
9: One in three New Zealanders will get cancer. Support the Cancer Society this Daffodil Day. All money raised helps provide care services and supports research. Daffodil Day supported by the Doctors Medical Centres. Enroll at thedoctors.co.nz.
0: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho, nzc.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है